मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि तदनुसार 20 जून सन 2026 प्रातः के 5:56:45 हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी दोस्त तुलिका शर्मा। आप सभी को हमारा नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं समाचार, अब दिल्ली से होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं ये देशगान।

समूह सुर में अभी आपने ये देश गान सुना। वंदना में आइए अब आपको सुनवाते हैं बिजन घोष दस्तेदार और साथियों का गाया ये भक्ति गीत।

समूहस्वर में अभी आपने ये देश गान सुना। वंदना में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं लक्ष्मी शंकर का गाया ये भक्ति गीत।

जगजीत सिंह और साथियों से अभी आपने ये भक्ति गीत सुना। वंदना में आइए, अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की गाई ये भक्ति रचना।

0: नीना मेहता और राजेंद्र मेहता के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज की वंदना संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुभाष चंद्र अरोड़ा से उनके विचार।
1: भारतीय जननायक राम की गाथा देश के कोने कोने में हर वर्ष होने वाली रामलीलाओं में दोहराई जाती है। समाज की पथ प्रदर्शक इस गाथा से दर्शक अपने अपने अनुकूल आदर्श सबक लेते हैं। मानव हृदय पर इसका परोक्ष व अपरोक्ष रूप से गहरा प्रभाव पड़ता है। आओ हम सब इस विषय पर जरा सूक्ष्मता से विचार करें। सीता हरण उपरांत राम की मानसिक स्थिति की कल्पना मात्र से हम सब दुखों से भर जाते हैं। ऐसे में राम स्वयं को सब्र से संभाले संभाले लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में जुट जाते हैं। जंगल में संसाधन विहीन वनवासी राम धैर्य और विवेक से वानर सेना का सहयोग अर्जित कर समुद्र बांध लंकेश रावण को युद्ध में परास्त कर अपनी पत्नी सीता को वापस लाते हैं। हर वर्ष विजयदशमी के दिन बुराई के पर्याय रावण का विशाल पुतला फूंका जाता है। हम अच्छाई रूपी राम की विजय का पर्व मनाते हैं। राम गाथा जीवन में सब्र से कामयाबी की अद्भुत मिसाल है। धैर्य विवेक और संकट का गंभीरता से सामना करने की सीख हर रामलीला दर्शक को सहज ही मिल जाती है। सितारों को सब सिखाने वाली स्वाति नक्षत्र की नारद गाथा भी भारतीय मानस में रची बसी है। स्वाति नक्षत्र दौरान आकाश की आभा निहारते बनती है। नारद सभी सितारों को समझाते हैं संसार में उसी की ख्याति होती है जिसमें धैर्य होता है। सब्र और निरंतर प्रयास सफलता का मार्ग बताने वाली ऐसी ही एक कहानी किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर शायद सबने बचपन में अवश्य पढ़ी होगी। किंग ब्रूस बार बार की अपनी शिकस्त से निराश होकर जब गुफा में जाकर छिपता है तो गुफा में उसे एक स्पाइडर अथवा मकड़ी दिखाई देती है जो बार बार गिरते और हर बार उठकर अपने काम को पूरा करने में जुटते और अंत में कामयाब होते दिखाई देती है। और इस कामयाबी से प्रेरित होकर किंग ब्रूस अपनी नए सिर से तैयारी करता है और पुनः युद्ध के लिए अपना प्रयास करता है और अपना राज्य पाने में कामयाब होता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है। दरअसल जीवन में आकांक्षाओं व प्राप्ति के बीच की खाई को सब्र से पाटने वाला ही सुखी रह सकता है। कुछ न कर पाने अथवा धीरे धीरे आगे बढ़ने की स्थिति में सब्र अवलंब का काम करता है। अवरोधों का निराकरण मनुष्य को सब्र से काम लेना सिखाता है। उतावले को सब्र विलोमानुपाती प्रतीत होता है, परंतु हकीकत में ठीक इसके उल्ट सब्र उतावले जुझारूपन को संयमित कर अनर्थ होने से रोकता है और सही कदम उठाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार सब्र सफलता की संभावनाओं में वृद्धि कारक सिद्ध होता है। अपात्र मन वांछित लक्ष्य अर्जित करने के लिए तरह तरह के प्रपंच और छल कपट का मार्ग अपनाता है। वह स्वार्थ सिद्धि के लिए अनुनय विनय साम दाम दंड भेद आजमाने से भी बाज नहीं आता। बहुत हाथ पैर मारकर थोड़ा बहुत पा जाने पर भी वह अपनी उपादेयता सिद्ध करने में असफल ही रहता है। वहीं सुपात्र जो अपने सहज कर्म और धैर्य से बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य को अर्जित कर लेता है। धैर्यवान विवेकी को हमेशा सब्र का मीठा फल नसीब होता है।
0: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे सुभाष चंद्र अरोड़ा का आलेख। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

पिता दक्ष के यज्ञ में पति के निरादर से अपमानित होकर सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला। देवाधिदेव महादेव ने जब ये समाचार सुना तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उनसे आदेश पाकर अनुचर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करके सभी देवताओं को दंडित किया। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। मरते समय सती ने हरि से यह वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव चरणों में उनका अनुराग बना रहे। इस वरदान के फलस्वरूप सती ने पर्वतराज हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा जन्मी तब से ही पिता के घर सारी सिद्धियों और संपत्ति की भरमार हो गई। चहुं ओर सुख तथा समृद्धि का साम्राज्य फैल गया। पर्वतराज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होने लगे। पार्वती के जन्म का समाचार सुन नारद मुनि एक दिवस हिमाचल के घर पधारे। आदरपूर्वक मुनि के चरण धोकर पर्वतराज ने पुत्री को मुनि चरणों में डाल दिया तथा त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ नारद जी से उन्होंने कन्या के गुण दोष बताने का निवेदन किया। मुनि ने मंगल वचन कहे, तुम्हारी कन्या स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। लोग उमा, अंबिका तथा भवानी के नाम से इसकी वंदना करेंगे। ये अपने पति को अत्यंत प्रिय होगी तथा इसका सुहाग अचल रहेगा, किंतु इसकी हस्तरेखाएं संकेत करती हैं कि इसका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेशधारी होगा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज की जानकारी का विषय है कैसे बढ़ाएं भूमि की उर्वरा शक्ति। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देव नारायण।
1: आजकल किसान भाई भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सघन खेती करते हैं, जिसमें कि एक साल में 2 से 3 फसलें लेते हैं, परंतु भूमि का उचित प्रबंधन ना होने के कारण धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। भूमि की उर्वरा शक्ति का अर्थ है भूमि में पोषक तत्वों की उपलब्धता, जिससे कि पौधों की वृद्धि अच्छी हो पाए और अधिक उत्पादन मिले। अगर भूमि उर्वर होगी तो उसमें फसल की बढ़वार अच्छी होगी, जिसके फलस्वरूप खेत से अच्छी पैदावार प्राप्त हो सकेगी। भूमि पौधों के भोजन का भंडार है, परंतु जब हम बार बार फसल लेते हैं तो उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति घटने लगती है और उसके फलस्वरूप उत्पादन भी घटने लगता है। अतः भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि किसान को जो मृदा परीक्षण है उसको करवाना चाहिए। तो इससे पता चलेगा कि खेत में जो उपजाऊपन है वो कितना है। तो इससे है कि उसमें जब हम मिट्टी का परीक्षण कराएंगे तो मिट्टी में जीवांश की मात्रा कितनी है, मिट्टी का पीएच मान कितना है और मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता है वो कितनी है, इस बात का पता चल सकेगा मृदा परीक्षण से। तो हर किसान को अपने खेत की मिट्टी का मृदा परीक्षण कराना चाहिए। और इसके बाद जो है खेत में ली जाने वाली फसलों की आवश्यकता तथा खेत में विद्यमान पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर भूमि में जैविक एवं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग, फसलों की बढ़वार और विकास के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें जिनके नाम है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये जो पोषक तत्व हैं इनको अलग से देने की आवश्यकता नहीं होती, ये पोषक तत्व पौधों को वायु से प्राप्त होते हैं। इसके बाद आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये मुख्य पोषक तत्व हैं और ये अधिक मात्रा में पौधों को चाहिए। इसके बाद आते हैं गौण पोषक तत्व, जिनके नाम हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक। इसके पश्चात फिर हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनमें लोहा, तांबा, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन एवं निकिल। और जो दलहनी फसलें हैं उनको कोबाल्ट की जरूरत पड़ती है, परंतु जो ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इनकी बहुत कम मात्रा पौधों को चाहिए, परंतु चाहिए जरूर। परंतु हमारे किसान भाई हैं क्या करते हैं कि मुख्यतः यूरिया और DAP का प्रयोग करते हैं। यूरिया से केवल नत्रजन मिलती है और DAP से नत्रजन तथा फास्फोरस तत्व प्राप्त होते हैं, परंतु पौधों को चाहिए कि पूरे 17 पोषक तत्व हैं वो संतुलित मात्रा में उपलब्ध हों। धीरे धीरे किसान भाई केवल रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति घटने लगी है। अतः किसान भाइयों को सड़ी हुई गोबर की खाद, नाडेव कंपोस्ट, बायोगैस की सलरी, केचुआ खाद या बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। ये खादें भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ भूमि की जल धारण क्षमता है उसको भी बढ़ाती हैं, जिससे अपवाह व मृदा क्षरण में कमी आती है। भूमि में जैव पदार्थों की उपलब्धता बढ़ने से उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने व भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में मदद करते हैं। अतः किसान भाइयों को रासायनिक खादों के साथ साथ जो जैविक खादें हैं उनका प्रयोग करना नितांत आवश्यक है। अन्य फसलों के साथ साथ वर्ष भर में कम से कम एक दलहनी फसल को अवश्य उगाना चाहिए। दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में संग्रहित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में संग्रहित करते हैं तथा भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। फसलों की जो बुआई है वो ढाल के आड़े करें, जिससे कि मिट्टी का कटाव कम हो। इसके अलावा किसान भाइयों को खेत की अपनी गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर आए और

उसमें उपलब्ध पोषक तत्व पौधों को प्राप्त हो सकें। तो अतः भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए, उसके अनुसार संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए।

0: आइए सुनते हैं सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
1: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

0: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़ो ही नोनो गीत गा रही हो। और जो तो वही गीत है जाकी हम फरमाइश की चिट्ठी लिखकर भेजा था थे, और हमारी पसंद को लोक गीत हमारी जिज्जी हमें लोक माधुरी में भी सुनवा देती थी।
1: हाँ, खूब ही सही चीज ना तुमने, जो वही लोक गीत है और आज हम जी को जासे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही उल्लास में है।
0: काय ऐसो का होगा जिज्जी?
1: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सभी सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 7:21 से 8 बजे के बीच।
0: जिज्जी जाके लाने अपने को चिट्ठी कैसे भेजनी होगी?
1: अरे चिट्ठी विट्ठी छोड़ो, अब हम हो गए डिजिटल, सो अब हम लिख के भेजेंगे अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पे।
0: तो जीजी जाको व्हाट्सएप नंबर का है?
1: डायरी तनक खोलो और जल्दी से लिख लो 9425702768। तो याद भाओ कि नहीं, तनक बताओ तो जल्दी से
0: 9425702768।
1: तो आप अपनी पसंद को लोकगीत के बोल और कलाकार को नाम हमें जा नंबर पे व्हाट्सएप करो, को आपकी पसंद को लोकगीत लोक माधुरी कार्यक्रम में जरूर ही सुनवाएं।
0: तो सुनना न भूलें हर सोमवार शाम को 7:21 से 8 बजे के बीच लोक माधुरी।
2: रक्तदान जीवन का उपहार है, आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है, महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।
3: सूचना पर कार्यक्रम दर्पण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। संस्कृत में समाचार अब दिल्ली से होंगे, उसके बाद हिंदी में समाचार दिल्ली से ही हम अनुप्रसारित करेंगे।
4: वार्ता हा श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झाः। अथ वार्ता हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य ओडिशा पश्चिम बंगयोः प्रवासे भविष्यति। ओडिशायाः मयूरभंज मंडले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः 68वें जन्मदिवसोत्सवे प्रधानमंत्री तया सह पहाड़पुर ग्रामे सम्मिलितो भविष्यति। तदनन्तरं तौ नेतारौ ओडिशा राज्ये मोहन चरण माझी प्रशासनस्य वर्षद्वयस्य कार्यकाल पूर्त्यवसरे एकां विशाल जनसभां संबोधयिष्यतः, यत्र हि 47,000 कोटितोप्यधिकरूप्यकाणां विकासात्मक परियोजनानां शुभारम्भो भविष्यति। पश्चिमबंगे प्रधानमंत्री पश्चिमबंग दिवसावसरे भागं ग्रहीष्यति, यत्र हि अनेकासां प्रणालीनां शिलान्यासम् उद्घाटनं च विधास्यति। अस्मिन्नेव अवसरे प्रधानमंत्री पीएम कृषि सम्मान निधिं प्रसारयिष्यति, येन देशस्य 9.44 कोटि कृषकेभ्यः 80.88 लाख कोटि रूप्यकाणि साक्षात् तेषां वित्तकोशेषु स्थानांतरितानि भविष्यन्ति। एनटीए इति राष्ट्रीय परीक्षा संघटनेन प्रख्यापितं यत् श्वः आयोज्यमानायाः नीट यूजी 20-26 पुनः परीक्षायाः निष्पक्षं पारदर्शं च संचालनाय वयं पूर्णरूपेण सज्जाः। परीक्षेयं भारतस्य 150

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और

0: ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमेरिका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं, लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंककर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इसे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। 7:20 पर हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर अवधेश चंचौलिया से उनकी वार्ता, सामाजिक सरोकार के कवि रहीम। 7:30 फिल्म संगीत सुना जा सकता है।

8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, ये दो समाचार बुलेटिन हैं। इन्हें हमारे दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करते हैं। आज शनिवार है, 8:30 आप सुनते हैं पॉडकास्ट। आकाशवाणी ग्वालियर के 90 वर्ष पूर्ण होने से के क्रम में आज के इस पॉडकास्ट का विषय है योग, शिक्षा और कल्याण। इस विषय पर जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. राजकुमार आचार्य से डॉ. विभूति सिंह की बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। 9 बजे

सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग ग्वालियर। 9:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए सुहास व्यास का गाया राग बिलास खानी तोड़ी।

10 बजे जिले की चिट्ठी भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे। 10:05 पर होगा हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। इस कार्यक्रम में डॉक्टर पुनीत रस्तोगी से आभा गुप्ता की बातचीत आप सुनेंगे, जिसका विषय होगा क्यों होता है हृदयाघात, इससे कैसे बचें। इसके ठीक बाद 10:50 पर आप फिल्म संगीत सुनेंगे। 11 बजे से सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: श्रोताओं, 3:55 पर हम अपनी विशेष सभा में आपको सुनवाएंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुगली के तारकेश्वर में पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त के भुगतान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। सायंकालीन सभा आरंभ होगी 5:00 से, जिसमें 5:00 आप सभा के आरंभ में ही युवाणी कार्यक्रम सुनेंगे, जो रीवा की प्रस्तुति होगा। 6:00 विशेष पॉडकास्ट सीरीज आपको सुनवाई जाएगी। 7:20 पर हमारे केंद्र से चौपाल कार्यक्रम सुना जा सकता है, जिसमें चर्चा होगी विश्व शरणार्थी दिवस पर। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना विषय पर भी चर्चा होगी। ग्रामीण बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम फूल बगिया। बच्चों से चर्चा का विषय होगा अनुशासन और समय पालन। माधवी माहौलिया से बच्चे वार्ता भी सुनेंगे, जिसका विषय होगा बच्चों के जीवन में योग का महत्व। 8:00 से सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। 7:10 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार अब भोपाल से होंगे।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा बंगाल दौरे पर, रायरंगपुर में 47,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, बंगाल में किसानों को सम्मान निधि की मिलेगी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में विकसित भारत रोजगार योजना के तहत बांटी 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज इंदौर के सावेर में देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात। और प्रदेश में मानसून 8 से 10 दिन लेट, आज भोपाल इंदौर समेत 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे और दोनों संथाली जहरा तथा हो जहरा के पावन स्थलों पर प्रार्थना करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में 47,000 करोड़ रुपये के से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल दौरे में प्रधानमंत्री आज हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे और पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करते हुए 9,44,00,000 किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवा आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70,00,000 जॉब सृजित हुई है। करीब 20,00,000 युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज इंदौर जिले के सावेर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 42,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की आवास स्वीकृतियां प्रदान करेंगे। इसके तहत 38,000 से अधिक परिवारों को नवीन पक्के आवासों में गृह प्रवेश कराया जाएगा। इस दौरान वे 2,935 करोड़ रुपये की लागत वाली करीब 48 किलोमीटर लंबी इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन परियोजना का भूमि पूजन भी करेंगे। वहीं कल केंद्रीय मंत्री ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के साथ ऊर्जा और स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक भी की। भोपाल में एमपीआईडीसी मुख्यालय में रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को लेकर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय के उप महानिदेशक सुशील कुमार सतपुते ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तभी साकार होगा जब उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप और शिक्षण संस्थान साझा मंच पर आकर नवाचार आधारित रक्षा विनिर्माण को आगे बढ़ाएंगे। कार्यशाला में देशभर के 40 से अधिक प्रमुख उद्योगों और शोध संस्थानों ने भाग लिया। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए कुल 32 केंद्र बनाए गए हैं और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। पुलिस ने परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों और वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया है। परीक्षार्थियों से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुँचने की अपील की गई है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बताएंगे।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
1: राज्य शासन ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिला, विकासखंड और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। भारत सरकार ने इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी है।

पासपोर्ट आवेदनों के पुलिस सत्यापन में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रदेश पुलिस को विदेश मंत्रालय द्वारा 5 लाख से कम आवेदन श्रेणी में देश में प्रथम स्थान दिया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश पुलिस को इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस से सम्मानित किया। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने बताया कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच प्रदेश में कुल 3,35,000 से अधिक पासपोर्ट सत्यापन समयबद्ध तरीके से पूरे किए गए। प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भोपाल मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों पर अब ड्राइव इन सिनेमा की शुरुआत की जाएगी। साथ ही यहां स्टार्टअप्स और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित होगी। इस योजना का उद्देश्य स्टेशनों को आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित बहुआयामी शहरी केंद्र के रूप में विकसित करना है, ताकि वे व्यापार, पर्यटन और रोजगार सृजन के प्रमुख केंद्र बन सकें। आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर आकाशवाणी के उद्घोषकों द्वारा लिखी गई अनाउंसर्स डायरी पुस्तक का विमोचन आज भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगा। पुस्तक के प्रधान संपादक पुरुषोत्तम श्रीवास ने बताया कि इसमें 21 राज्यों के 41 उद्घोषकों के आलेख शामिल हैं। समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ पांडे होंगे, जबकि अध्यक्षता विविध भारती मुंबई के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक जी श्याम करेंगे। पुस्तक पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल और डॉक्टर श्रीकांत पांडे भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देशभर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अब बात मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि सामान्यतः मानसून 15 जून के आसपास प्रवेश करता है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मेजबान भारतीय टीम पहले ही 2-0 की बढ़त के साथ श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में तुलसीनगर पुलिया से निपानिया तक सड़क और सीवर लाइन निर्माण कार्य का भूमि पूजन एवं शुभारंभ किया। खंडवा के कृषि महाविद्यालय में आज किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों से परिचित कराने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। आगरमालवा के ग्राम गाता में 750 बीघा शासकीय गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए सीमांकन किया गया। राजगढ़ में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष पंजीयन शिविर आयोजित किया गया। बैतूल में कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवणे और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने नीट परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। और इंदौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में रेशम समृद्धि योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए नवीन कृषकों का ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं वार्ता सामाजिक सरोकार के कवि रहीम। वार्ताकार हैं डॉक्टर अवधेश चंसौलिया।
1: रहीम दास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं। इनका जन्म लाहौर में सन 1556 में 18 दिसंबर को हुआ था। इन्होंने अपना जीवन संतों की तरह व्यतीत किया, इसलिए इनको संत रहीम दास जी भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इसका कारण यह है कि भक्ति युग की कविताओं ने विशाल मानवीय बोध जगाया। इसी आधार पर लोगों ने इसे हिंदू नवजागरण काल की संज्ञा से विभूषित किया। लेकिन आज जब हम इस काल के कवियों की काव्य रचनाओं का विशद अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि यह तो संपूर्ण मानव के जागरण का काल है। इस काल के कवियों ने भक्ति की वास्तविक भूमिका अच्छी तरह से समझी। यही कारण है कि रहीम तथा रसखान जैसे शासक वर्ग के लोगों में समतामूलक भावना जागी और भक्ति से प्रेरित होकर वे पूर्ण रूप से भारतीय हो गए। रहीम ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसमें कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, हरिराम व्यास जैसे महान कवियों का व्यक्तित्व समाहित है। तुलसीदास जी के साथ तो उनकी मित्रता देह से, मन से, भाव से एवं भाषा शैली सभी से बहुत ही गहरी है। तुलसी और रहीम के इन दोनों दोहों का साम्य इस दृष्टि से अवलोकनीय है। तुलसीदास जी का दोहा है, पात पात को सींचिबो, बरी बरी को लोन, तुलसी खोटे चतुरपन, कल डहके कहु कौन। अब रहीम का दोहा देखिए, पात पात को सींचिबो, बरी बरी को लोन, रहीमन ऐसी बुद्धि को कहो डरेगो कौन। इन दोहों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि रहीम का साहित्य भक्ति युग का संगम है, जहाँ भक्ति युग की समस्त काव्य धाराएँ आकर मिल गई हैं। भक्ति काल में रहीम एक अद्भुत व्यक्तित्व थे। उन्होंने 16 वर्ष से लेकर 72 वर्षों तक निरंतर युद्ध लड़े और युद्ध के मैदानों से भक्ति और सामाजिक सरोकारों वाली कविता भी प्रस्फुटित करते रहे। वे जीवन भर कविता को प्रोत्साहित करते रहे। किसी भी कवि ने अपनी कैसी भी कविता उन्हें सुनाई, उसको भरपूर दान देकर सम्मानित करते रहे। किसी कवि ने कहा है कि मैंने कभी भी अपनी आँखों से 1,00,000 असरफियाँ नहीं देखीं, तो उसे 1,00,000 असरफियाँ दे दीं और विनम्रता इतनी कि किसी एक कवि के ये कहने पर कि देते समय रहीम का हाथ ज्यों ज्यों उठता है त्यों त्यों उनकी नज़र नीची होती जाती है। इस पर रहीम की विनम्रता देखते ही बनती है। वे कहते हैं, देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर धरें याते नीचे नैन। अर्थात वे कहते हैं, मुझे लज्जा इस बात पर आती है कि भ्रमवश वे मुझे देने वाला समझ लेते हैं, जबकि सच तो यह है कि देनदार तो कोई और ही है, वही दिन रात लोगों को देने के लिए मेरे पास यह धन दौलत भेजता रहता है। रहीमदास जी की दानशीलता समाज की सुख समृद्धि, समानता एवं कल्याण की भावना से ओतप्रोत है। इनकी दानशीलता, लोकप्रियता और काव्य प्रेम की प्रशंसा समकालीन कवियों, शायरों तथा इतिहासकारों ने मुक्त कंठ से की है। हिंदी काव्य रचना के प्रति वे पूरी तरह से समर्पित थे। उन्होंने जितना काव्य फारसी में लिखा उसका कई गुना हिंदी में लिखा। रहीम को भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, पूजा पाठ परंपराओं और वाङ्मय की गहरी समझ है। वे कृष्ण भक्त हैं, श्री राम जी में भी उनकी बहुत आस्था है। दोनों आराध्यों पर उन्होंने काव्य का सृजन किया है, क्योंकि वे जानते हैं कि ये दोनों ही भगवान भारतीय समाज के पथ प्रदर्शक हैं। उनका कृत्य सामाजिक सरोकारों से आप्लावित है। रहीमदास जी बड़प्पन को श्री कृष्ण जी से जोड़कर समाज को कितना बढ़िया उपदेश देते हैं, इस दृष्टि से यह दोहा उल्लेखनीय है। जो बड़ेन को लघु कहें नहीं रहीम घट जाहें, और गिरधर मुरलीधर कहे कछु दुख मानत नाहीं। रहीम बड़प्पन की पहचान इसमें मानते हैं कि उसमें सहन शक्ति कितनी है, उसको कोई छोटा भी कहे तो वह घटता नहीं है। जैसे गिरिधर को कोई मुरलीधर भी कहे तो वे उससे नाराज नहीं होते। रहीमदास जी कहते हैं कि सभी के दिन एक से नहीं रहते, जिंदगी में कभी अच्छे और कभी बुरे दिन आते जाते रहते हैं। इस बात को वे बहुत ही सहज और सरल भाषा में बड़ी सुगमता से कह देते हैं कि रहीमन चुप हुए बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आए हैं बनत न लग है देर। स्वयं रहीमदास जी को अंत में बहुत बुरे दिन देखने पड़े। जहांगीर ने उन्हें कैद कर लिया और सारा राजसी वैभव उनसे छीन लिया, लेकिन वे इन सभी विपरीत परिस्थितियों से विचलित नहीं हुए। कैद से छूटने पर वे आम आदमी की तरह गरीबी में भी प्रसन्नता पूर्वक चित्रकूट में रहने लगे। जब याचक उनके पास धन की लालसा लेकर आते तब वे कहते थे, ए रहीम दर दर फिरे, मांग मदकुरी खाए, यारो यारी छोड़िए, बे रहीम अब नाए। रहीम समाज को जोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि वे यह भली भांति जानते हैं कि जब परिवार, समाज और राष्ट्र मानवीय मूल्यों के माध्यम से आपस में जुड़े रहेंगे तभी मानव सभ्यता का कल्याण होगा। वे जुड़ाव के कवि हैं और इस हेतु उनका मंतव्य है कि टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोहिए, टूटे मुक्ता हार। समाज में मान मर्यादा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। हम ऐसा काम न करें जिससे हमें अपमानित होना पड़े। इस बात को वे अपने ही अंदाज में सूक्ति के माध्यम से इस प्रकार कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरें, मोती मानुष चून। रहीमदास जी ने संस्कृत में भी काव्य रचना की है। भारतीयता उनके रोम रोम में बसी हुई है। वे अपनी विदग्धता को सहजता से जोड़ते हैं, पराक्रम को क्षमा के साथ और राजसी ठाटबाट को फकीरी के साथ सहज में ही जोड़े रहते हैं। ऐसी अद्भुत क्षमता और कला हर किसी में नहीं होती। वे मुसलमान के रूप में जन्मे, मुसलमान के रूप में दफनाए गए, धर्म नहीं बदला, कर्म नहीं बदला, लेकिन अपनी पहचान में भारतीयता जोड़ी। दिनकर के शब्दों में अकबर ने अपने दीन ए इलाही में हिंदुत्व को जो स्थान दिया होगा उससे कई गुणा अधिक स्थान रहीम ने अपनी कविताओं में दिया है। रहीमदास जी का काव्य जन भाषा में लिखा गया जन के इर्द गिर्द ही घूमता प्रतीत होता है। उसमें जीवन का सत्य और यथार्थ चित्रण है, साथ ही जीवन को सुंदर बनाने के लिए उपयोगी नुस्खे भी उसमें हैं। इसलिए उनका काव्य सदैव प्रासंगिक बना रहेगा और लोग उससे हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अवधेश चंसौलिया से उनकी वार्ता, सामाजिक सरोकार के कवि रहीम। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त तुलिका।

किशोर कुमार को अभी आपने सुना फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में। अनजान के गीत को संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। आइए अब सुनते हैं मजरूह की लिखी ये गीत रचना। किशोर कुमार ने इसे आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में फिल्म अनामिका के लिए गाया है।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं मजरूह सुल्तानपुरी की गीत रचना, आवाज़ किशोर कुमार की, संगीत राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम जहरीला इंसान।

किशोर कुमार को आइए अब सुनते हैं फिल्म कुदरत में। गीत मजरूह का, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: किशोर कुमार को अभी आपने फिल्म मिली में सुना। गीत योगेश का था, संगीत सचिन देव बर्मन का।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारे ना
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना,
3: और ये
4: मेरी बड़ी
5: के नाम। पर दादी, आपके नाम?
6: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
5: क्या
6: आरबीआई कहता है?
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: किशोर कुमार को आइए अब सुनते हैं फिल्म कथा में। गीत इंदु जैन का, संगीत राज कमल का है।

और आइए कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं अमित खन्ना की ये गीत रचना, राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में। इसे हमने फिल्म स्वामी से लिया है। आवाज़ एक बार फिर किशोर कुमार की।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
4: पीएम किसान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
6: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

0: रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दास गुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: We have been able to achieve that in the first.
5: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें NVIDIA और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
4: They are all designed in India now.
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
6: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
3: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of the series in Chennai this afternoon. In a rare confluence of constitutional leadership and developmental vision, Prime Minister Narendra Modi is visiting Odisha this morning, where he will join President Draupadi Murmu in her home district of Mayurbhanj. The visit coincides with the President's 68th birthday and the celebrations marking 2 years of the Odisha government. Our correspondent reports from Rairangpur.
3: In a rare and significant engagement, the President and the Prime Minister will jointly offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves and visit local educational and skill development institutions, underscoring the nation's commitment to the empowerment of tribal communities. Later, the two leaders will participate in a grand public program at Rairangpur, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led Odisha government. Development projects worth more than 47,000 crore rupees will be inaugurated by the Prime Minister and foundation stones laid across key sectors including energy, transportation, health, education, irrigation and industrial infrastructure. President Murmu and Prime Minister Modi are also scheduled to address a massive public gathering. Prakash Das from Rairangpur, Akashvani News.
2: Prime Minister Modi has extended greetings to President Murmu on her birthday. Mr. Modi said that the President's journey marked by courage, simplicity, humility and an unwavering commitment to public service that continues to inspire people.

0: across the country. Later in the day, Prime Minister Modi will release over 880 crore rupees to the bank accounts of 9 crore 44 lakh farmers nationwide under the PM Kisan scheme from Hooghly in West Bengal. This also includes over 900 crore rupees to the accounts of more than 45 lakh farmers of West Bengal. We have more details on the Prime Minister's visit from our correspondent.
1: Prime Minister Narendra Modi is arriving in West Bengal today on a 2-day visit for the first time since the BJP formed the government in the state. During his stay, he will attend the West Bengal Day celebrations in Tarakeshwar in Hooghly, lead the International Yoga Day program in Kolkata's Red Road, and dedicate 3 indigenously built warships, INS Dunagiri, INS Sanshodhak, and INS Agrah, to the nation. He will also inaugurate and lay foundation stones for several key projects. These include railway initiatives worth nearly ₹590 crore, a new 300-bed railway hospitals in Howrah, and a rail overbridge in East Midnapore. He will also launch 49 rural road projects under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, strengthening connectivity across more than 315 kilometers. In agriculture, Mr. Modi will formally introduce the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in West Bengal, providing insurance coverage to nearly 50 lakh farmers. He will also unveil new initiatives under the Digital Agriculture Mission, including AgriStack and the Dhanodhan Krishi Yojana. The Prime Minister's program extends to fisheries and animal husbandry with projects such as modern fishing harbour at Fraserganj, a fish market in Birbhum, and Eastern India's first goat semen research laboratory in Nodia.
2: Sandeep Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
0: Prime Minister Modi has extended greetings to the people of West Bengal on the occasion of Paschim Banga Divas. Mr. Modi said this day celebrates a state that has made immense contributions to the country's history through literature, music, art, spirituality, science, trade, commerce, and social reform. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal has been appointed as the next vice president of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of the United Kingdom. Mr. Agrawal, currently serving as secretary in the Ministry of Culture, earlier headed the Indian delegation to the FATF and played a key role in India's engagement with the global anti-money laundering and counter-terror financing watchdog. The Ministry of External Affairs has termed Mr. Agrawal's selection a major win for India. In a social media post, the ministry said, "The appointment reinforces India's commitment to combating terrorism financing and illicit financial networks." The National Testing Agency, NTA, will conduct a nationwide mock drill today ahead of the NEET UG re-examination 2026. It is part of the preparations to ensure smooth, secure, and transparent conduct of the examination. More from our correspondent.
3: The National Testing Agency has said that it is fully prepared for the smooth, fair, and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled tomorrow. In a statement, NTA said that exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The agency noted that more than 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces, and administrators, have been deployed. The NTA noted that multi-layered security framework has been put in place to ensure a fair and transparent examination. It includes CCTV surveillance, Aadhaar-based biometric verification, and GPS-enabled vehicles with police escort for movement of examination materials. The re-examination will be conducted from 2 p.m. to 5:15 p.m. in pen and paper mode. Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
0: The Securities and Exchange Board of India, SEBI, has approved a series of reforms aimed at improving market efficiency, easing compliance requirements, and strengthening regulatory frameworks across the financial sector. At the 214th meeting held in Mumbai yesterday, the SEBI board simplified the transmission of securities for legal heirs and claimants that are in the name of deceased investors. SEBI chairman Tohin Kanta Pandey shared the details after the crucial board meeting.
4: The key decisions relates to simplifying and standardizing the framework for easier transmission of securities to legal heirs and claimants of deceased investors. Now we are creating a new category of quick transmission processing for small value claims. Simplified documentation, which already exists, the limit is being increased from 5 lakh to 10 lakh for physical holdings per listed company and from 15 lakhs to 30 lakh for dematerialized holdings per beneficial owner.
0: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. Akashvani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke Vikas Ke Jan Kalyan Ke. Today we focus on the government's transformative initiatives driving the vision of an empowered India. A report.
5: Over the last 12 years, the government has driven a structural transformation in India's high-tech landscape. Two of the most significant pillars of empowered India are the development of a semiconductor ecosystem and the explosive growth of space startups. The India Semiconductor Mission was launched in December 2021 with a massive outlay of 76,000 crore rupees, offering fiscal support of up to 50% for silicon fabs, compound semiconductor facilities, assembly and testing units, and chip design. By 2026, the government launched Semiconductor Mission 2.0 with a provision of 1,000 crore rupees, laying emphasis on industry-led research and training centers to drive technology development and create a future-ready skilled workforce. Speaking about the Semiconductor Mission 2.0, Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav highlighted that while Mission 1.0 successfully established the foundational building blocks for this complex industry, Mission 2.0 will focus on deepening the ecosystem.
6: The first mission was to start the industry in a country. It's extremely complex industry. We have now talent, more than 75,000 engineers are trained in this. More than 300 universities are teaching the students to design chips. 2 nanometer chips are designed in India, the most advanced chips in the world, including NVIDIA chips, including Intel chips. They are all designed in India now. The world today recognizes India as a country which will become a major semiconductor designing and manufacturing country in the coming years.
5: The Indian Space Policy 2023 enables and permits the private entities to carry out end-to-end space activities, including undertaking launches, satellite realization and operations, data acquisitions and dissemination, and ground station. India's space economy is now valued at about $8.4 billion and is expected to grow 4 to 5 times over the next 8 to 10 years, potentially reaching $40 to $45 billion. Talking to Akashvani News, Anil Prakash, Director General of the Space Industry Association of India, said that the country is currently home to more than 400 space tech startups.
3: In the last 12 years, India's space sector has undergone significant changes. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the reform of the space sector, the establishment of a space base, and the increase in the private participation have started a new revolution. Today, more than 400 space tech startups operate in India, which are innovating in areas such as satellite, launch vehicle, earth observation, and data service. India's first space tech unicorns, Skyroot Aerospace, is a proof of this change.
5: Through the breakthrough of the semiconductor mission and a thriving private space sector, India's journey toward a developed nation is being realized today as an empowered India. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
0: The 12th International Yoga Day 2026 will be celebrated tomorrow globally. The theme for this year is Yoga for Healthy Aging, which emphasizes the importance of yoga for all ages. As part of the celebrations, the Ministry of Culture will organize special International Day of Yoga events at 100 iconic locations across the country, bringing together India's rich cultural heritage and yoga traditions. The main national celebration will be held at Kolkata's historic Red Road under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, where he will lead the nation in the Common Yoga Protocol. Moreover, President Draupadi Murmu will be the chief guest at the state-level program in Jabalpur, Madhya Pradesh tomorrow. Moving on to sports, in men's cricket, the third and final ODI match of the series between India and Afghanistan will be played at the M.H.A. Dhamram Stadium in Chennai this afternoon. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. The hosts have already secured the series with a 2-0 lead and will be aiming to complete a clean sweep of the 3-match series. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra.
7: Thank you, Naresh. US-Iran meet put off over Lebanon clashes. Israel-Hezbollah agreed to a truce but region on edge is a top headline in the Times of India. Yogi vows strict action Ayodhya funds row. Bid to defame says SIT will reveal the truth within 15 days. SP Congress spreading falsehoods is a top headline in the Asian Age. The Supreme Court has declared that every citizen has a fundamental right to walk on a demarcated footpath, holding that this right is primary and takes precedence over the movement of motorized vehicles, as it delivered a far-reaching judgment that could reshape urban planning and road design across the country, reports Hindustan Times. Delhi High Court upholds government order blocking Telegram to secure NEET retest. Government empowered to issue emergency blocking directions under IT Act, writes the Indian Express. In its editorial titled Trump's Versailles and a Chance for Peace, the Tribune writes that there is delicious irony in the fact that President Trump signed the Memorandum of Understanding with Iran at Versailles on June 17. The terms of Trump's surrender at Versailles are a far cry from the conditions that he had unilaterally set for the Iranians. Like the original Treaty of Versailles in June 1919, this one will have a profound psychological impact, not just on the US, but also on Israel, on the Gulf states, and indeed on Iran itself. And finally, an app, Abhigyan, has been launched that will soon enable police and agencies to carry out instant fingerprint-based verification of criminal records using scanners linked to a database of over 1.3 crore suspects and convicts, reports The Hindu. And with that, it's back to you, Naresh.
0: Thank you, Subhadra. But now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agarwal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of series in Chennai this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
8: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं सुनिए, आकाशवाणी ग्वालियर के 90 वर्ष पूर्ण होने के क्रम में ये पॉडकास्ट, जिसका विषय है योग, शिक्षा और कल्याण। इस विषय पर जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलगुरु डॉक्टर राजकुमार आचार्य से बात कर रही हैं डॉक्टर विभूति सिंह। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। हमारे मेहमान हैं जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य। इनसे हम बातें करेंगे इनके विषय में, योगा के विषय में, क्योंकि ये पॉडकास्ट योगा के आसपास ही होने वाला है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
9: नमस्कार कर रहा हूँ आपको।
8: आकाशवाणी ने अभी पिछले ही दिनों 90 वर्ष पूर्ण किए हैं।
9: बधाई आप सबको।
8: और ये माध्यम हर किसी के जीवन में, जो भी वर्तमान में लोग हैं, जुड़ा ही रहा है
9: जी।
8: तो अगर आपके कुछ मेमोरीज हैं रेडियो को लेकर, आकाशवाणी को लेकर, तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कोई किस्सा, कोई कहानी।
9: सबसे बड़ी मेमोरी तो जब दूरदर्शन नहीं था, तब भारत में सशक्त माध्यम था संप्रेषण का केवल आकाशवाणी
8: जी।
9: और आकाशवाणी में हम लोगों को वो एक जो धुन चलती थी, वो नई गुनगुना के सिग्नेचर ट्यून, वो स्मरण में है। और हम लोग जो क्रिकेट मैच जब आते थे, तो सुशील दोषी और अन्य की जो कमेंट्री हुआ करती थी, हम लोग चूंकि उस समय युवा थे, तो हम लोगों के लिए वो बहुत उत्साहजनक और प्रेरणादायी हुआ करती थी। इसी प्रकार गीतों की रचना में एक बिना का गीत माला आती थी, तो बिना का गीत माला में और हम लोगों की रुचि रहती थी, और रुचि इस बात में ज़्यादा रहती थी कि कौन गाने, कौन से गीत जो हैं टॉप चल रहे हैं,
8: किस पायदान पर,
9: किस पायदान पर हैं। ये स्मृतियाँ आकाशवाणी की आज भी और स्मृति में स्थायी रूप से विद्यमान है।
8: आपने कहा आप युवा थे, लेकिन मुझे लग रहा है ये योग का चमत्कार है, आप आज भी युवा ही हैं जिस प्रोफेशन में आप हैं
9: जी।
10: योग ने क्या आपकी जीवन शैली और कार्यक्षमता को कितना प्रभावित किया है और किस रूप में किया है?
9: योग तो शरीर रचना के लिए जो हमारी 10 इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, इस सबको संतुलित करने का माध्यम वास्तव में योग है। योग का अर्थ केवल सुखासन में बैठ जाना, या ओशो ने एक बढ़िया बात कही है कि गर्दन के ऊपर पैर को, टांग को फंसा लेना योग नहीं है। योग गर्दन के ऊपर चलने वाला विज्ञान है, अर्थात योग के माध्यम से हमारे जीवन में जब जीवन शैली की श्रेष्ठता आ जाए, जब जीवन मूल्यों की नैतिकता आ जाए, और जब अपने अंदर एक ऐसा अनुशासन स्वमेव आ जाए जो परिवार को, समाज को और हमारे कार्य क्षेत्र को सीधे तौर पर प्रभावित करे। और मैं भी योग को करता हूँ और योग के कार्यक्रमों में हमेशा सहभागी रहता हूँ। मेरा अपना अनुभव है, जब जब योग और ध्यान के लिए समय निकालता हूँ, उस दिन उन घंटों में एक अलग प्रकार की ऊर्जा, एक अलग प्रकार का आनंद और स्वस्थ शरीर की संरचना और मस्तिष्क में और फील होती है, ऐसा मेरे अनुभव में आता है। और योग के माध्यम से हम अपने जीवन की हर वो शारीरिक क्षमताओं को डेवलप कर सकते हैं जिन क्षमताओं को डेवलप करने के लिए योग को जाना जाता है, क्योंकि सनातन काल से योग को भारतीय संस्कृति में और भारतीय सनातन परंपरा में और स्वीकार किया गया है। इसलिए योग के आज आधुनिकीकरण स्वरूप में अपन पतंजलि को देखते हैं, बाबा रामदेव जी को देखते हैं, इनने उसको जितना आज सार्वजनिक स्वरूप दिया है वो स्वरूप इसके पहले पिछले कई दशकों में कोई नहीं दे पाया है। मुझे याद आ रहा है कि योगी कथामृत के जो राइटर हैं योगेश्वर जी, जो 150 देशों में जिनकी संस्थाएं हैं, उनके द्वारा भी, और योग का जो स्वरूप भारतीय विदेशों में स्थापित किया गया, उसने समाज जीवन को अनेक प्रकार के सुख, शांति और आनंद के अवसर उपलब्ध कराए, ऐसा मेरा योग के बारे में अनुभव आता है।
10: अच्छा, एक प्रश्नकर्ता के रूप में मेरा प्रश्नों का क्रम वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, थोड़ा उसमें विषयांतर हो रहा है, लेकिन आपके उत्तर ने मुझे फिर निर्देशित कर दिया उस प्रश्न की ओर। आप बताएं अपनी पृष्ठभूमि, शैक्षिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि।
9: वास्तव में मैं मूलतः नरसिंहपुर जिले के तहसील करेली का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश में। वही मेरी प्राथमिक और स्कूली शिक्षा हुई, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से स्नातक हुआ, फिर स्नातकोत्तर मैंने इंदौर विश्वविद्यालय से किया है और PhD सागर विश्वविद्यालय से की।
10: विषय भी बता दें।
9: मैं वाणिज्य का विद्यार्थी हूँ, आज भी स्वाध्याय करता हूँ और विषय में रुचि रखता हूँ।
10: वाणिज्य में लेके क्या पसंद है सर आपको?
9: वाणिज्य में लेके मुझे व्यापारिक रचनाओं में जो व्यवसायिक परिवर्तन आ रहा है, आज हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो चौथी इकोनॉमी में आ गया और आने वाले समय में थर्ड इकोनॉमी में आएगा, तो जब प्रधानमंत्री और सरकार ऐसा बोलती है तो ध्यान में आता है कि वास्तव में आज जो देश में नए प्रकार के और डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो चाहे मेक इन इंडिया का मामला हो, चाहे स्वावलंबी भारत की बात हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात हो, इन सब से इकोनॉमी बढ़ेगी और निश्चित नए सेक्टर भारत ने शुरुआत की है और उन नए सेक्टरों में जो निर्यात बढ़ाने की बात है, क्योंकि यदि हम भारत के निर्यात को देखेंगे तो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला ये देश 1000 साल पहले तो 36% वस्तुएं विश्व को निर्यात करता था, बाद में जाके शासन पद्धतियां बदली और देश पर दूसरों का शासन हुआ, उसने बहुत सी विसंगतियाँ निर्माण की, लेकिन अब फिर देश के उद्भव का समय है ऐसा मैं मानता हूँ। और वाणिज्य गतिविधियों के विस्तार से ही हम आर्थिक समृद्धि पाएंगे, लेकिन उस आर्थिक समृद्धि में हमारी संस्कृति और सनातनता विद्यमान रहे। आज जैसे हम बात योग की कर रहे हैं, तो योग की विद्यमानता यदि हमारे व्यक्तिगत जीवन में नहीं है, परिवार जीवन में नहीं है, समाज में योग के प्रति एक स्पष्ट धारणा श्रेष्ठता की नहीं है, तो आने वाले समय में हम जो वैश्विक स्तर पर 21 जून को योग दिवस के रूप में हमको और मान्यता मिली है, उस मान्यता के रक्षण की नैतिक जिम्मेदारी वास्तव में भारत की है। हमको ये विचार करना चाहिए कि कैसे हम सामाजिक रचना में योग को ठीक चलाएं। तो शैक्षणिक जगत में रहते हुए मेरी शैक्षणिक यात्रा चलते हुए मैं बाद में महाविद्यालय में प्राचार्य रहा, जबलपुर विश्वविद्यालय में डीन के रूप में मैंने कार्य देखा, फैकल्टी चेयरमैन के रूप में काम देखा, ईसी मेंबर के रूप में कार्य देखा, और इसके बाद मुझे अवसर मिला, मैं राज्यपाल के द्वारा मैंने रीवा विश्वविद्यालय में 4 साल तक कुलगुरु के रूप में कार्य किया। मध्य प्रदेश में 22 चांसलर को अब कुलगुरु कहा जाता है। ये माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह जी के द्वारा और हम सबको कुलगुरु का

0: सम्मान और दिया गया है। वर्तमान में मैं जीवाजी विश्वविद्यालय में कुलगुरु के रूप में कार्यरत हूँ।
1: अब हम वापस आते हैं योग पर।
0: जी, जी।
1: विश्वविद्यालय में जैसे योग को लेकर ने किन किन पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को शामिल किया है, और अगर आप बताना चाहें तो प्लीज बताइए कि इनके परिणामों को लेकर आपका क्या अनुभव है।
0: एक्चुअल में विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ MA योगा चल रहा है। MA योगा में हमारे जो विद्यार्थी रहते हैं न केवल विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करते हैं बल्कि ये ट्रेनिंग के लिए भी बाहर जाते हैं। हमारा MU है पतंजलि योगपीठ देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से, हमारे विद्यार्थी वहाँ जाते हैं, कभी कभी उनके विद्यार्थी भी हमारे यहाँ आते हैं। बाकी जैसा कि 2026 में हम योग की बात कर रहे हैं, स्वस्थ आयु के लिए योगा, ये स्लोगन और 26 के लिए आया है, तो इसको लेकर विश्वविद्यालय में हमारे जो वर्तमान में विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उनको इस मैटर को लेके और टीचर्स के द्वारा विमर्श किया जाता है और उन पर बातचीत चर्चा होती रहती है। बाकी हमारे यहाँ प्लेसमेंट के लिए भी योग थेरेपी सेंटर का अवसर मिलता है, जो विद्यार्थी पास होते हैं स्कूल कॉलेज से, NEP में एलाइड क्लासेस में योगा है उसमें टीचर्स के रूप में उनको अवसर मिलता है, और हॉस्पिटल में भी आज की तारीख में और योगा के माध्यम से स्वस्थ रहने के कार्य होते हैं, और इन सब का लाभ हमारे यहाँ MA योगा के विद्यार्थियों को मिलता है। हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा प्लेसमेंट हमारे यहाँ से पास आउट विद्यार्थियों को प्राप्त होता है।
1: बहुत अच्छे प्रयास हैं विश्वविद्यालय के।
0: जी,
1: अगला प्रश्न मैं इसी से जुड़ा हुआ मेरा है।
0: जी,
1: कि नियमित योगाभ्यास से, चूँकि आप खुद भी योग करते हैं,
0: जी,
1: तो छात्र छात्राओं की शैक्षिक सफलता, उनका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है क्या? इस संबंध में कोई स्कोर या डेटा आपके पास है?
0: हाँ, निश्चित होता है। डेटा तो विश्वविद्यालय में रिसर्च सेंटर में हमारे यहाँ उपलब्ध है। कई विद्यार्थियों ने इन विषयों को लेकर रिसर्च किया है, क्योंकि जब हम योग के माध्यम से अपने आप को एकाग्र करते हैं तो हमारी स्मृति, जिसे हम मेमोरी कहते हैं, एकदम स्ट्रांग हो जाती है। विवेकानंद के जीवन को जिनने पढ़ा है, तो विवेकानंद जी को एक पाठी कहा जाता था, वो एक बार पढ़ते थे और उनको याद हो जाता था इस कारण, और विवेकानंद जी भी मनुष्य थे, लेकिन योग और ध्यान की स्थिति ने उनके जीवन को अलग प्रकार से एक आध्यात्मिक ऊर्जा दी थी। ऐसे समाज जीवन में बहुत लोग हैं। योगा के माध्यम से विद्यार्थी सबसे अच्छा पाठ्यक्रम की तैयारी करने में, अपनी स्मृति में रट रख के रिविजन को कम से कम करने की स्थिति में आ जाता है, और फिर जब वो एग्ज़ाम में बैठता है तो उस एग्ज़ाम में जब वो लेखन कार्य में रत होता है और मस्तिष्क की एकाग्रता आती है, तो जो उसने पढ़ा है वह शब्द सा लिखने का सामर्थ्य उसको मिल जाता है। साथ ही साथ योगा से मन शांत होता है, विद्यार्थी का रक्त संचार व्यवस्थित होता है, योगा से हमारी प्रतिकार शक्ति स्वास्थ्य की मजबूत बनती है। इन सब के कारण विद्यार्थी जीवन में तो योगा को सर्वश्रेष्ठ ही माना गया है भारतीय संस्कृति में।
1: जी, विश्वविद्यालय में योग को ऐसे क्रेडिट बेस्ड मॉड्यूल
0: जी
1: या डिग्री कोर्स के रूप में,
0: हाँ,
1: भी शामिल करने का विचार है क्या?
0: डिग्री कोर्स में MA योगा ही चल रहा है हमारे यहाँ। UG लेवल पर अभी कोई ऐसे कोर्स नहीं चल रहे हैं। आने वाले समय में एक और थोड़ी व्यवहारिक कठिनाई ये आती है कि आज की शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी ने रोजगार मान लिया है, शिक्षा का उद्देश्य स्किल डेवलपमेंट कम है,
1: करियर
0: चैलेंजेज के रूप में ज़्यादा है। इसके कारण अभी योगा के लिए चूंकि जॉब श्योरिटी कई बार नहीं मिल पाती स्टूडेंट्स को, इसलिए UG के कोर्स अभी प्रारंभ नहीं है विश्वविद्यालय में। आने वाले समय में लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार भी जिस प्रकार से योगा को प्रोत्साहन दे रही है, उसके चलते हम अपने यहाँ भी आगामी समय में, वर्षों में, और UG कोर्स में भी योगा के विविध कोर्सों को चालू करने के बारे में निश्चित विचार करेंगे।
1: उम्मीद है समय के साथ ये अवसर और बढ़ेंगे, जो करियर को लेकर चुनौती रहती है,
0: हाँ,
1: योगा स्टूडेंट्स के साथ,
0: हाँ,
1: वो चुनौती काफी हद तक समाधान मिलेगा।
0: जी, बिल्कुल ठीक बात।
1: अब हमें ये बताएं कि जैसे आज का युवा है, डिजिटल युग का युवा, इसके पास स्ट्रेस, एलिनेशन, एंजाइटी अटैक्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत हैं। इन पर योगा के जो प्रभावी लाभ जितने आपने बताए, इनको पहुंचाने के लिए आपके क्या सुझाव हैं, व्यक्तिगत रूप से जिनसे आपने देखा हो कि वो इफेक्टिव है?
0: अभी मध्य प्रदेश सरकार ने और मेंटल हेल्थ पर सारे विश्वविद्यालयों को काम करने के लिए और एक अलग से कार्य योजना बनाई है। जीवाजी विश्वविद्यालय में भी हम मेंटल हेल्थ को लेके हमने एक नोडल अधिकारी बनाए हैं और एक पूरी टीम इस पर काम कर रही है। हम सारे विभागों में मेंटल हेल्थ को लेके काम कर रहे हैं, उसमें हम योगा को प्रश्रय देते हैं, छात्रों को इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि पढ़ाई के अलावा, विश्राम के अलावा, दैनंदिन कार्यों के अलावा आप अपना थोड़ा सा समय योग के लिए निकालिए, और जब वो योग के लिए समय निकाल रहे हैं जो विद्यार्थी, उनको निश्चित उसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। ऐसी सूचना हमारे मेंटल हेल्थ और के सेंटर के नोडल के द्वारा भी हम सबको दी जाती है। ऐसा एक कार्य प्रयोग हमारे विश्वविद्यालय में वर्तमान में कर रहे हैं।
1: बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। हमारे शहर ग्वालियर के आसपास रूरल एरिया भी है, ऐसे समुदाय जो वहाँ पर हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग और आसपास के और भी लोग, उन तक योग को पहुँचाने के लिए क्या यूनिवर्सिटी कोई आउटरीच या सोशल प्रोग्राम चला रही है?
0: पर्टिकुलर योगा को लेके तो नहीं चला रहे हैं, लेकिन हम जो राष्ट्रीय सेवा योजना है NSS, उसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में और विविध प्रकार के स्किल डेवलपमेंट से लेके और ग्रामीण संरचना के विविध आयामों के नॉलेज को लेके विद्यार्थी अलर्ट हो सकें और कुछ सीख सकें, उसमें भी योगा को जोड़ते हैं। और NSS के कैंप जब लगते हैं, विशेष शिविर 7 दिवस के गाँव में, तब विद्यार्थी सुबह 6 से 7 बजे तक जो शारीरिक व्यायाम करते हैं, उसमें योगा का एक पूरा और पार्ट भी विद्यार्थी NSS के अंतर्गत योगा को जोड़कर करते हैं।
1: अब हम बात करते हैं उन प्रशिक्षकों के बारे में जो योगा सिखाते हैं
0: जी।
1: तो ऐसे योगा कोच जो हैं, उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी कोई कदम उठा रहा है क्या?
0: ये जो टीचर्स होते हैं, उनमें जब हमारे यहाँ कोई प्रशिक्षण वर्ग आते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के अंतर्गत, तब हम इनको स्किल डेवलपमेंट के लिए उन प्रशिक्षण वर्गों से जोड़ते हैं। उसमें जो भी नवाचार आता है, वो नवाचार वो कोर्स में अपने स्तर पर जोड़ते हैं और उसका लाभ फिर उससे विद्यार्थियों को मिलता है। तो अपग्रेडेशन का काम शिक्षकों का समय समय पर निश्चित इसमें होता रहता है।
1: तो कुछ वर्कशॉप वगैरह होती हैं?
0: वर्कशॉप तो नहीं, प्रशिक्षण वर्ग होते हैं।
1: अच्छा।
0: और साल में एकाध प्रशिक्षण वर्ग तो अनिवार्य हो जाता है। कभी कभी जब कोई शासन की योजना से लाभ मिलता है तो और ज़्यादा भी इसके लिए कार्य योजना बनती है। समय समय पर मध्य प्रदेश सरकार भी विविध विषयों को लेके प्रशिक्षण वर्ग और अन्य कार्य योजनाएँ चलाती है। जैसे कुछ संगोष्ठियाँ करने का काम रहता है तो योगा विभाग भी संगोष्ठियाँ करता है, और संगोष्ठियों में विषय वो चुने जाते हैं जो सामान्यतः समाज को और विद्यार्थियों को इस प्रकार से प्रेरणा दे कि योगा से समाज जीवन को या व्यक्तिगत जीवन को कितना लाभ मिलना चाहिए। ये उन संगोष्ठियों के मूल विषय होते हैं जिन पर अपना शोध पत्र और विमर्श और विद्वान लोग रखते हैं।
1: दूसरा अंतिम प्रश्न है मेरा, अंतिम प्रश्न नहीं अभी दूसरा अंतिम, सेकंड लास्ट
0: जी,
1: है
0: जी।
1: विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में योगा के संदर्भ में किन प्रमुख परिवर्तनों की अपेक्षा आप रखते हैं? जो भी कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो सरकार के आदेश पर हो, आपको क्या लगता है कि कौन से परिवर्तन इनसे आ सकते हैं?
0: जी जी, मेरी परिकल्पना है आने वाले समय में हम सभी विभागों में एक निश्चित समय और सप्ताह में कम से कम 2 दिन और जहाँ विभाग में संभव वहाँ 7 दिन एक निश्चित टाइम में हम एक ध्यान के लिए योग के माध्यम से बैठें, और उस ध्यान योग में हम कुछ आध्यात्मिक पुट भी जोड़ें। उस आध्यात्मिक पुट को जब हम जोड़ेंगे तो निश्चित उससे विद्यार्थियों में जो एक शांत भावना आएगी और कार्य के प्रति उनकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपस का द्वेष और एक दूसरे के प्रति जो मन के मैल है वो छूटेंगे, और एक अच्छी सामाजिक समरसता, समाज के सारे विद्यार्थियों का एक दूसरे के साथ आत्मीय संबंध बढ़ने के लिए योग एक माध्यम बने, ऐसी परिकल्पना है। बाकी प्रतिवर्ष हमारे यहाँ हम 21 जून को विश्वविद्यालय स्तर पर सारे विभागों के बच्चों के साथ और नगर की कुछ संस्थाओं और योग आचार्यों के साथ, और प्रातः से लगभग 2 घंटे का एक कार्यक्रम प्रतिवर्ष योग दिवस के दिवस करते हैं। इस बार भी 21 जून आ रहा है और हम उसको करने वाले हैं। उसमें विद्यार्थी भी आते हैं, उसमें टीचर्स भी आते हैं, उसमें कर्मचारी भी आते हैं। नगर के वो लोग जो विश्वविद्यालय में योग कार्यक्रम चलाते हैं वो भी उस कार्यक्रम में सहभागी होते हैं और उसका लाभ उनको मिलता है। ऐसा कार्य विश्वविद्यालय के द्वारा चलता है।
1: और मैं एक बात मैं जोड़ना चाहूँगी जो आपने शुरू में कही थी कि योग का जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको बॉडी के आसपास सीमित करके उसको बहुत छोटा कर देते हैं हम लोग।
0: निश्चित
1: मानसिक स्तर पर जो कंप्लीट बॉडी सोल और माइंड, ये कंप्लीट अलाइनमेंट की बात की जाती है।

0: एक संपूर्ण एकात्मता, अगर मैं सही शब्द का प्रयोग कर रही हूँ।
1: सही है, सुखासन में बैठकर व्यक्ति ध्यान नहीं है। योग का अर्थ है शरीर और मन बुद्धि चित्त को एक रचना में रखकर और श्रेष्ठ विचार चिंतन की ओर ले जाना। और श्रेष्ठ विचार चिंतन की ओर जब व्यक्तिगत रूप में हम ले जाएंगे तो व्यक्ति एक छोटी इकाई होती है, लेकिन जब उसका स्वरूप बदलता है तो वो परिवार इकाई में आता है, फिर समाज इकाई में आता है, फिर राष्ट्र इकाई में आता है। तो हम जब संपूर्ण नागरिक मिलकर यदि योग को विशाल स्वरूप में लाभ के लिए सोचने लगेंगे तो एक साथ एक बड़ा परिवर्तन समाज में दिखाई देने लगेगा, जिससे लोगों का नैतिक बल बढ़ेगा, जीवन शैली की श्रेष्ठता आ जाएगी। ये जो आपाधापी पूर्ण जीवन है और इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया की आज के समय में अशांतता दिखाई देती है, इसका बदलाव होकर हम सब एक दूसरे के साथ और समरसता के भाव में आकर समाज को एक अच्छा वातावरण दे सकते हैं, और उसके लिए योग सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है।
0: परंपरा में भी सर्वे भवन्तु सुखिना
1: कहा गया है,
0: सर्वे संतु निरामय, ये परिकल्पना भी यथार्थ का रूप संभव है कि ले पाए।
1: निश्चित,
0: अगर हर इकाई इस तरह ही सोचे जैसा आपने
1: जी,
0: अभी
1: जी
0: व्याख्यात किया है। कार्यक्रम के ऐसे स्टेज पर हम आ चुके हैं जहाँ मैं चाहूंगी कि आप कोई गीत अपने पसंद का बताएं जो मैं आपकी ओर से अपने श्रोताओं को सुनवा सकूं।
1: गीत मैं बहुत फिल्मी रचना में कभी रहा नहीं हूं, लेकिन फिर भी
0: कोई पुराना याद करके बता दीजिए।
1: पुराना याद करने के लिए जाते हैं तो याद आता है कि राष्ट्रीय गीतों के प्रति मेरी रुचि रही है। उस रुचि में बहुत पर्टिकुलर गीत तो अभी तत्काल में दिमाग में नहीं आ रहा, लंबा समय हो गया है गीत को छोड़े हुए, लेकिन फिर भी यदि गुनगुनाने के लिए आप उसमें उसको बजाएंगे तो मुझे लगता है ये देश वीर जवानों का,
0: अलबेलों का
1: मस्तानों का, ये गीत मुझे प्रेरणा देता है, क्योंकि युवाओं की शक्ति ही इस राष्ट्र के वैभव को और 2047 के भारत में ले जाएगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है।
0: हम आपकी ओर से श्रोताओं को सुनवा रहे हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी ग्वालियर के 90 वर्ष पूर्ण होने के क्रम में ये पॉडकास्ट योग शिक्षा और कल्याण। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलगुरु डॉक्टर राजकुमार आचार्य से बात कर रही थीं डॉक्टर विभूति सिंह। प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया गया।

हल्के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे और पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करते हुए 9,44,00,000 किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। पासपोर्ट आवेदनों के पुलिस सत्यापन के लिए प्रदेश पुलिस को 5,00,000 से कम आवेदन श्रेणी में देश में प्रथम स्थान मिला है। इसके लिए नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश पुलिस को इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस से सम्मानित किया गया। राज्य शासन ने 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिला विकास खंड और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे जिनमें विद्यालयों महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। एमपीआईडीसी मुख्यालय भोपाल में कल रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को लेकर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में देशभर के 40 से अधिक प्रमुख उद्योगों और शोध संस्थानों ने भाग लिया। और भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे से चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले 2-0 की बढ़त के साथ श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तूलिका का नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। श्रोता साथियों, आज हम बात करेंगे कार्यक्रम में सबसे पहले कि हम मदद कैसे करें किसी की। दरअसल हम सब चाहते हैं कि अपने आसपास हमारे जो लोग रहते हैं उनको यदि किसी तरह की मदद की आवश्यकता है तो हम तत्पर रहें। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, हमने देखा है ये भी, कि किसी को मदद की ज़रूरत है और हम मुंह फेर कर चल देते हैं। ये हो सकता है कि हमारे मुंह फेरने के चक्कर में, हमारे मुंह फेरने के पीछे ये कारण हो कि हम ज़्यादा व्यस्त हैं, या हम किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, या फिर जो मदद वो व्यक्ति चाह रहा है वो मदद हम कर नहीं पाएंगे। यदि ऐसा भी है तो भी अकेले मदद ना करके सामूहिक मदद भी की जा सकती है। तरीके बहुत सारे हैं मदद करने के। कभी कभी ऐसा भी होता है इसके उलट कि मदद की आवश्यकता है और हम मदद मांग नहीं पाते, क्योंकि मदद मांगना हमें अपनी हेठी लगता है या वो हमें अपने आत्मसम्मान में चोट कमी समझ में आती है। ये भी हो सकता है कि हमारा गुरूर हमें मदद मांगने से रोक रहा होता है। यही नहीं, मदद के बड़े सारे नियम होते हैं। यदि आप मदद देने और लेने दोनों पर विचार करेंगे ना, तो आपके सामने भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें खुलकर सामने आएंगी। अभी कल ही मैं एक चुटकुला कहीं पढ़ रही थी या देख रही थी, पढ़ तो नहीं रही होंगी क्योंकि आजकल देखने दिखाने का ज़माना है, तो कहीं देखा ही होगा या किसी ने भेजा होगा। दरअसल एक वृद्ध थोड़े परेशान थे, उन्होंने अपने बारे में ये कहा कि मैं सड़क के किनारे खड़ा होकर सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, भीड़ भरी सड़क थी, उनका हाथ पकड़

कर किसी ने सड़क के उस पार पहुंचा दिया। वहां किसी दूसरे ने, थोड़ी देर और खड़े रहे होंगे, किसी ने देखा, उन्होंने सोचा कि सड़क इन्हें पार करनी है, हाथ पकड़कर उन्हें सड़क के वापस इस पार कर दिया। इस तरह वो कम से कम 10 बार इधर से उधर कर चुके थे। देखने में ये चुटकुला लगेगा, लेकिन ये जो बात इसके पीछे छिपी है ना, वो ये कि अनचाही मदद कभी मत कीजिए। पूछिए कि क्या उन्हें मदद की आवश्यकता है, यदि हाँ तो यकीनन मदद कीजिए। बहुत सारे लोग परोपकार करने के चक्कर में मदद करते हैं, खूब सारे कपड़े बांटेंगे, खाने पीने का सामान बांटेंगे और एक ही जगह बांटा जाएगा, फिर वो अधिकता हो जाने की वजह से मदद की गई सामग्री इधर उधर फेंकी हुई मिलती है, तो फिर अफसोस भी होता है कि हमने गलत जगह मदद कर दी। बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक और इसमें ख़ास चीज़ है कि किसी को जब भी कुछ दें तो मुफ्त में मत दीजिए। मुफ्त में दी गई चीज़ का मोल नहीं होता। यदि दो लोगों के बीच में बड़े अच्छे संबंध हैं या आप किसी परिचित को जानते हैं, मित्र को जानते हैं और आप उसे कुछ दे रहे हैं, तो पहली बार और वो चीज़ उसकी मदद की उसके लिए है, उसकी आवश्यकता की चीज़ है, ये जो देने वाली चीज़ है हो सकता है प्रशंसा हो, प्रशंसा भी देने वाली ही चीज़ है। यदि पहली बार दी जाए तो सामने वाला आभारी हो जाता है, दूसरी बार यदि दी गई होती है तो वो अगली बार से आपसे अपेक्षा करेगा, आपकी आपके द्वारा दी जाने वाली इस मदद की या इस प्रशंसा की जो आप मुफ्त में दे रहे हैं, वो इंतज़ार करता रहेगा कि अब कब ये बोलेंगे कि आप बड़े अच्छे लग रहे हो। तीसरी बार वो आपसे अपेक्षा करने लगेगा कि आप उसकी प्रशंसा करें, और चौथी बार वो अधिकार जमाएगा कि आपको तो उसकी प्रशंसा करनी ही है या आपको तो उसे कुछ सामान देना ही है, मदद करनी ही है। पांचवी बार वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा कि आप उसकी मदद करेंगे ही करेंगे, और फिर यदि आप मदद नहीं करते हैं तो वो आपके प्रति नाराज़ हो जाएगा कि आपने मेरी ज़रूरत पर मदद नहीं की। मतलब ये जो 5-6 जो चरण हैं, पहली बार कोई आभारी होता है आपकी मदद से, दूसरी बार आपकी मदद की प्रतीक्षा करने लगता है, तीसरी बार आप ही से मदद की अपेक्षा करेगा, चौथी बार अपना अधिकार मानने लगेगा, फिर आप पर निर्भर हो जाएगा, और आखिर में यदि आपसे मदद नहीं मिली तो आपसे घृणा, आपसे नफरत करने लगेगा। ये बहुत बारीक सी चीज़ है। निर्भरता मदद की किसी को नहीं होनी चाहिए। ये हो सकता है कि आपके एक बार मदद करने पर कोई आत्मनिर्भर हो जाए, इतनी भर मदद करनी चाहिए। चलिए, इस पर और बातें होती रहेंगी और विचार होते रहेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में हमारी निर्भरता बातचीत के साथ साथ गीत पर भी होती है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए, अब हो जाते हैं हम गीत पर निर्भर और आप तक पहुँचाते हैं ये खूबसूरत गीत।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
0: चले
1: ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: एक बार फिर स्वागत है हमारे श्रोताओं का उनके ही अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में, और तुलिका आपके साथ है। श्रोताओं, इस समय गर्मी चरम पर है और विशेष तौर पर यदि हम उत्तर भारत की बात करें तो वर्षा अभी तक आई नहीं है। मॉनसून का आगमन हिंदुस्तान में तो हो चुका है, लेकिन हिंदुस्तान के दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मौसम में बहुत अंतर होता है। उत्तर भारत में मौसम जो है वो बड़ी सारी पुरातन चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ दिनों पहले हमने नौतपा को महसूस किया था, यानी जब वो 9 दिन जब धरती बहुत ज़्यादा तपती है, और ये मानते हैं कि जब नौतपा खूब तपता है तो बारिश अच्छी होती है। वो ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक भी हैं। इसी तरह आने वाले दिनों में उत्तर भारत के विशेष तौर पर स्थानों पर आर्द्रा नक्षत्र का बड़ा महत्व होता है। कहीं कहीं पर इसे स्थानीय भाषा में अद्रा भी बोलते हैं, और ये जो आर्द्रा नक्षत्र है कहते हैं इसके बाद बारिश होती है। आर्द्रा नक्षत्र जून का आखिरी हफ्ता मान लीजिए। बहुत सारे मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं और इसको सेलिब्रेट किया जाता है आर्द्रा नक्षत्र को। ये लगभग 10 दिन का जो हिस्सा आर्द्रा नक्षत्र का होता है, इस दिन इस समय आर्द्रा उत्सव में मनाया जाता है, विशेष तौर पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। खीर पूड़ी और आम खाने की परंपरा है। अब ये कोई भी उत्सव मनाना जो है वो हिंदुस्तान में भोजन के साथ जुड़ा हुआ है। सामूहिकता जो है वो भोजन के साथ हमेशा जोड़ ली जाती है, और भोजन हमारे लिए फील गुड फैक्टर हो जाता है। लेकिन यदि हम इसको आज के समय से जोड़ें तो ये भोजन जो है वो फील गुड फैक्टर तो है, लेकिन भोजन बहुत तेज़ी से हमारा बदल रहा है। हम हिंदुस्तान की जो थाली हुआ करती थी जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हुआ करते थे, उससे थोड़ा धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस थाली के कुछ नियम जो हैं वो क्या हैं। दरअसल भोजन जो है वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, उसका रिश्ता सिर्फ शरीर से नहीं होता कि वो हमारे शरीर की आवश्यकताएं पूरी करेगा, हमें ऊर्जा देगा, हमें मिनरल्स विटामिन्स और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरतें पूरी करेगा। उसमें हमारी संस्कृति भी जुड़ी होती है, उसके प्रति हमारे तमाम सारे भाव होते हैं। सबसे पहले भोजन जो है वो हमें भूख का सम्मान करना सिखाता है। शरीर भोजन मांगता है, कभी कभी मन भी भोजन मांगता है। आप कहते हैं ना, कुछ खाने की इच्छा हो रही है, मन हो रहा है कि ये चीज़ खाई जाए, और कभी कभी आत्मा को भी भोजन तृप्त करता है। महसूस किया है कभी पेट का भरना, मन की शांति का महसूस होना और आत्मा को संतुष्टि प्रदान किया जाना भोजन द्वारा? और इन सब में गड़बड़ कब होती है? जब हम इन तीनों चीज़ों का उत्तर एक ही थाली में ढूंढने लगते हैं कि कोई भोजन हमारा भूख भी मिटाए, मन भी खुश कर दे और आत्मा भी तृप्त हो जाए। ये सब चीज़ें एक साथ नहीं मिलती। थाली को जो भी आपने अपने लिए सर्व किया है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम मोबाइल देखते हुए खाना खा लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए खाना खा लेते हैं, थाली को देखते ही नहीं है। दरअसल भोजन सिर्फ जुबान से नहीं, आँखों से भी खाया जाता है। आँखों से जब हम अपनी थाली देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम कृतज्ञ होते हैं उस किसान के प्रति जिसने इस भोजन को धरती की गोद से उगाया है, उस व्यक्ति के भी आभारी होते हैं जिसने इसे पकाया है। तो ये जो आभार है ना, वो ध्यान से अपनी थाली को देखने पर ही आएगा। भोजन ज़्यादातर लोग सच में पेट भरने के लिए खाते हैं, कि रिचुअल की तरह खाते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट करना है, फटाफट खाया और चल दिए, दोपहर में खाना खाना है तो वो भी खा लिया। लेकिन हमारे शरीर के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज़ हमें किस उम्र में कितनी खानी चाहिए, ये कभी भी हम ध्यान नहीं देते। हमारे शरीर की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए हम कभी नहीं खाते। कभी हम ज़ुबान के लिए खा लेते हैं, कभी मन के लिए खा लेते हैं, कभी साथ के लिए खा लेते हैं, और फिर धीरे धीरे बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि हमने छोटी मोटी उपेक्षाएँ तो की ही हैं अपनी थाली में। हम अभी आपसे बात कर रहे थे ना कि आँखों से भी आप भोजन देखते हैं और तृप्ति प्राप्त करते हैं। भोजन में जो रंग होते हैं ना, वो हमें तृप्ति देते हैं, और रंग हमारी थाली में होना बेहद ज़रूरी है। यदि हमारी थाली रंगहीन है, एक ही रंग है उसमें, तो आपकी थाली बैलेंस्ड डाइट नहीं बताती। अलग अलग रंग होंगे तो अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स आपके शरीर में जाएंगे। यदि आपकी थाली रंगहीन होगी तो आपके शरीर में भी तमाम सारी चीज़ों की कमी हो जाएगी। एक और चीज़, हमारा भोजन प्रकृति से जितना दूर होता जाएगा, जितना कम नेचुरल होगा, उतना ही खतरनाक होगा। आप अपने स्वभाव से, अपने शरीर की बनावट से दूर होते जाएंगे। पैकेट खोलकर गर्म पानी डालकर बना लेना कोई भी चीज़ सुविधा ज़रूर देगा, आपका समय भी बचाएगा, लेकिन उस बचे हुए समय और उस सुविधा से आप करेंगे क्या? यह आपके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं करेगा। सुविधा अभी ले ली, समझिए आपने अपने शरीर से कर्ज ले लिया, जो बाद में शरीर आपसे मांग लेगा। और जब मांगेगा ना, तो आप डेबिट में चले जाएंगे, यानी बीमार पड़े रहेंगे। एक और चीज़ है, जितना आप ठोस आहार ग्रहण कर रहे हैं, उतना ही पानी भी पीजिए। पानी को हम मानते हैं कि सिर्फ हमारी प्यास बुझाता है, लेकिन पानी भी एक प्रकार का पोषक तत्व है। यदि आपके शरीर में कम गया तो अलग तरह की समस्याएं होंगी, ज़्यादा गया तो उससे भी थोड़ी अलग तरह की समस्याएं होंगी। इसलिए पानी को भी बराबर का महत्व दीजिए भोजन के साथ। एक और चीज़ है, भोजन हमें अपने रसोई के प्रति कृतज्ञता पैदा करता है। रसोई एक छोटी मोटी प्रयोगशाला है, न सिर्फ प्रयोगशाला है बल्कि दवा की दुकान भी है। बहुत सारा ज्ञान पीढ़ियों से रसोई में सिमटा हुआ है, कैसे खाना पकाया जाना है, कितनी आंच पर पकाया जाना है कि उसके पोषक तत्व बरकरार रहें, कौन कौन से मसाले किस भोज्य पदार्थ में डाले जाने हैं जिससे उसके गैर पोषक तत्व जो हैं, एंटी न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, वो बैलेंस हो जाएं, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। रसोई से दूर होते जाना अपने स्वास्थ्य से दूर होते जाना है। खाना बनाना सीखना एक अनवरत चलने वाली लंबी प्रक्रिया है। यदि हम खाना बनाना सीखना नहीं चाहते और ये सोचते हैं कि हम कोई YouTube ट्यूटोरियल देख करके खाना बना लेंगे, तो ये समझिएगा कि खाना आप देख कर बनाएंगे, न उसमें आपको गंध महसूस हो रही है, न स्वाद महसूस हो रहा है। आप उस स्वाद को रिक्रिएट नहीं कर पाएंगे जो आप अपनी माँ या दादी के हाथ से खाया करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद ईश्वर की कृतज्ञता नहीं ज्ञापित करते। पहले भोजन से पूर्व भोजन की थाली को प्रणाम करके ईश्वर का धन्यवाद दिया जाता था, और खाना खाने के बाद भी थाली को प्रणाम करके लोग उठते थे, सिर्फ इसलिए कि आज हमें भोजन प्राप्त हुआ है और इस भोजन से हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। इसके लिए भोजन प्रदान करने वाले हर एक व्यक्ति का धन्यवाद है। कृतज्ञता भी पोषण का ही एक स्वरूप है। भोजन केवल शरीर में नहीं जाता, आदत बनता है, विचार बनता है, ऊर्जा बनता है और हमारा जीवन संतुलित रहता है, अनुशासित रहता है। जैसा हम खाना खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, यानी भोजन जो है वो हमारा शारीरिक विज्ञान भी कंट्रोल करता है और मन का विज्ञान भी कंट्रोल करता है। तो इसको ऐसे ही मत समझिएगा, थोड़ा सा माइंडफुल ईटिंग कीजिएगा।

कभी आपने सोचा है कि गाने सुन के क्यों अच्छा लगता है? जी हाँ, हम खुश हो जाते हैं, और हम जब खुश होते हैं तो हमारे दिमाग में एक हार्मोन जो है वो स्रावित होता है, कार्टिसोल कहते हैं, उसका स्तर कम हो जाता है, डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है, हैप्पी हार्मोन बढ़ जाते हैं। हैप्पी हार्मोन बढ़ाने का एक तरीका खाना खाना है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया। एक और तरीका है झप्पी लेना, जादू की झप्पी जिसे कहते हैं। हाँ जी, गले लगने से भी ये जो हैप्पी हार्मोन है वो रिलीज़ होता है। यदि कोई आपका हाथ पकड़ ले, यदि कोई पीठ थपथपा दे, थोड़ा सा टैप कहीं भी, सर पे भी थोड़ी सी टपली लगा देता है ना खुशी से, गाल छू दे, और यदि कोई हग कर ले, ज़ोर से गले लगा ले, झप्पी दे दे, तब तो सोचिए कितना ही आनंद आता है। इस आनंद की यदि हम बात करें तो हम आपको बता दें कि गले लगाने के लिए हमारे हिंदुस्तान में एक संत हैं, 2 करोड़ लोगों को उन्होंने प्यार से गले लगाया है, चाहे उनसे गले मिलने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये मलयाली संत हैं और इनका नाम है माँ अमृतमयी। इनके बारे में ढूंढिएगा और पढ़िएगा, लोग इनसे गले मिलने के लिए आते हैं और गले मिलकर खूब रोते हैं, और रोकर अपनी सारी भावनाएं वहीं बहाकर और अपने जीवन में खुश होकर चले जाते हैं। आज से नहीं, लगभग 25 सालों से अमृतमयी माँ लोगों को गले लगाती हैं। उनका अब तो एक आश्रम बन गया है जहाँ लोगों को आने की रहने की सुविधाएं हैं। आप भले माँ अमृतानंदमयी के पास न जा पाएं, लेकिन हाँ, आप दूसरों के लिए इस तरह का टूल प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने दोस्तों को, मित्रों को, बच्चों को गले लगाइए, देखिए आपको भी अच्छा लगेगा और जिसे आप गले लगाते हैं उसे भी अच्छा लगेगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, गले लगाने और गले पड़ने में अंतर है।

और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुड मॉर्निंग ग्वालियर कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुहास व्यास का शास्त्रीय गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग बिलास खानी तोड़ी में ये ख्याल।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुहास व्यास का गाया राग बिलास खानी तोड़ी। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। 10 बजते हैं। अब जिले की चिट्ठी भोपाल से होगी।
1: भोपाल का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख है फिरोज खान का, वाचन स्वर नवनीत चौबे के।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख फिरोज खान, वाचन स्वर नवनीत चौबे। सिवनी जिले में मानसून के आगमन का इंतजार करते हुए किसान खरीफ फसलों की तैयारी में लग गए हैं। पिछली रबी फसल में अच्छी पैदावार मिलने से किसानों में उत्साह है। पिछले वर्ष जिले में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोनी हुई थी। इस बार खेती का रकबा और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों को नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए जिले में कृषि रथ रवाना किया गया है। यह रथ सभी विकास खंडों की ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेगा। कृषि वैज्ञानिक और विभागीय अधिकारी किसानों को उन्नत खेती, जैविक कृषि और सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही फसल विविधीकरण और मृदा स्वास्थ्य पर भी मार्गदर्शन दिया जाएगा। गंगा दशहरा के अवसर पर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन लखनवाड़ा के वैन गंगा घाट पर हुआ। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आरोह 2026 का समापन उत्साह के साथ हुआ। जिले भर के 2500 से अधिक खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस दौरान नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलाया गया। इसी क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, किसानों और नागरिकों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण और युवाओं की उपलब्धियों पर अपने विचार साझा किए। फिट इंडिया अभियान के तहत विश्व साइकिल दिवस पर सिवनी में संडे ऑन साइकिल रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। प्रतिभागियों ने नियमित साइकिल चलाने का संकल्प लिया। खेल जगत से एक अच्छी खबर आई है। एशिया कप में भारतीय अंडर 18 महिला हॉकी टीम को कांस्य पदक दिलाने वाली सिवनी की खिलाड़ी नौसीन नाज का सम्मान किया गया। उन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 12 गोल किए थे। कलेक्टर ने उन्हें सम्मानित करते हुए 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी जागरूकता बढ़ रही है। दल सागर तालाब में आयोजित श्रमदान अभियान में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने मिलकर सफाई की। कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण और हरित सिवनी बनाने का संकल्प लिया गया। इस बीच प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर जन परामर्श प्रक्रिया शुरू हो गई है। सिवनी के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित बैठक में नागरिकों से सुझाव लिए गए। जन सुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से जिले के लोगों की समस्याओं का निराकरण भी लगातार किया जा रहा है। मई माह के पहले सप्ताह से अब तक करीब 800 आवेदनों पर सुनवाई की गई है। भूमि विवाद, आवास, पेयजल और आर्थिक सहायता जैसे मामलों पर आवेदन प्रस्तुत हुए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिले में सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं। मई माह के पहले सप्ताह से अब तक 12 सड़क दुर्घटनाओं में 17 लोगों की जान गई, वहीं 22 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा डूबने और आग की घटनाओं में भी 2 लोगों की मृत्यु हुई। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सिवनी लगातार आगे बढ़ रहा है। साहित्य प्रेमियों को जोड़ने के लिए जिले में नियमित रूप से काव्य गोष्ठियां और विचार मंचों का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में एक कवि सम्मेलन और मुशायरा आयोजित किया गया। खेलों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच जिले में क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन भी जारी है। धनोरा ग्राम में आयोजित DPL क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रोमांचक रहा। मंडला की टीम ने लखनादौन को 3 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल सिवनी के फुटबॉल स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देश पर कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिवनी विकास खंड के केकड़वानी आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता कौशल्या सरोआम और सहायिका लीलाबाई यादव ने अपनी मेहनत और समर्पण से पोषण वाटिका विकसित कर एक मिसाल पेश की है। जून 2024 से शुरू की गई इस वाटिका में आम, पपीता, केला, सहजन, टमाटर, पालक और अन्य फल सब्जियां उगाई जा रही हैं। यहाँ तैयार होने वाले फल बच्चों और उनके परिवारों को वितरित किए जाते हैं, जबकि सब्जियों का उपयोग आंगनबाड़ी के पोषण आहार में किया जाता है। जिले में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सिवनी जिले के रामगोपाल कहार को 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। रामगोपाल ने बताया कि यह आर्थिक सहायता उनके वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत को मजबूती देगी। सिवनी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे शिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख था फिरोज खान का, वाचन स्वर थे नवनीत चौबे के। ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। आज के इस कार्यक्रम का विषय है, क्यों होता है हृदयाघात, इससे कैसे बचें। डॉक्टर पुनीत रस्तोगी से इस विषय पर बात कर रही हैं आभा गुप्ता।

0: नमस्कार। सेहत की बात तरानों के साथ कार्यक्रम लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आज का हमारा विषय है, क्यों होता है हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक और इससे कैसे बचा जा सकता है। विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पुनीत रस्तोगी। आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार आबा जी, नमस्कार। आपने बहुत अच्छा विषय चुना है। इस समय हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है,
0: यानी कि सारे मामले दिल से ही जुड़े हुए
1: हैं। पहले ये माना जाता था कि जवानी में हार्ट अटैक नहीं होता। अब हार्ट अटैक की कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है। हम लोगों के पास ऐसे मरीज हैं जिनकी उम्र 1917 साल है, जिन्हें हार्ट अटैक हो चुका है।
0: तो डॉक्टर साहब शुरुआत से शुरुआत करते हैं कि दिल किसकी संरचना क्या है, कैसे कार्य करता है, उसके बाद जो जानकारी आप हमारे श्रोताओं को देंगे निश्चित रूप से उनको समझ में आएगी। कहा जाता है कि दिल यानी कि हार्ट जो है वो शरीर में पंप होता है, पंप की तरह कार्य करता है। तो क्या इसकी संरचना है, ये पंप की तरह किस तरह कार्य करता है?
1: आपने बिल्कुल सही कहा, एक मुट्ठी के बराबर का स्ट्रक्चर होता है जो कि सीने के बीचों बीच होता है। इसके चार चैम्बर होते हैं
0: जी।
1: एक चैम्बर में शरीर का गंदा खून आता है
0: जी।
1: उससे पंप होके निचले चैम्बर जिसे वेंट्रिकल कहते हैं वहाँ जाके फिर ये फेफड़े में जाता है या ऑक्सीनेट होके और वापस लेफ्ट साइड के एट्रियम में आके फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आके और उसके बाद ये पूरे शरीर में एओर्टा के द्वारा पंप होता है। एओर्टा के में से ही धमनियाँ निकलती हैं जो कि हृदय की मांसपेशियों को सप्लाई करती हैं
0: जी।
1: इसकी जो सबसे अनोखी चीज होती है, ये ऐसा ऑर्गन है जिसको कंटिन्यूस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है
0: जी।
1: और जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये लक्षण देने लगता है।
0: अच्छा, यानी कि दिल ठीक तरह से कार्य करता रहे इसके लिए पर्याप्त
1: ऑक्सीजन मिलना जरूरी है। ये ऑक्सीजन कैसे मिलती है उसे
0: जी।
1: ये ऑक्सीजन कॉर्नरी आर्टरी के द्वारा मिलती है
0: जी।
1: तो दो कॉर्नरी आर्टरीज होती है मेन, एक लेफ्ट और एक राइट। राइट जो है वो राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है
0: जी।
1: और लेफ्ट जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के पार्ट को सप्लाई करती है और साथ में एट्रिया को।
0: बिल्कुल, और ये ऑक्सीजन हम श्वसन क्रिया से ग्रहण करके
1: और इसके द्वारा जो है ये मांसपेशियों को सप्लाई करती है
0: जी।
1: इस क्रिया में जो ये धमनियों में खून का बहाव हो रहा है
0: जी।
1: अगर किसी भी तरह अवरोध उत्पन्न हो जाता है
0: जी।
1: तो ऑक्सीजन मिलना उस हिस्से को मांसपेशियों को कम हो जाती है जिसके कारण हार्ट अटैक होता है।
0: अच्छा, हार्ट अटैक क्या होता है ये आपने बताया डॉक्टर साहब, लेकिन ये किस वजह से होता है और किन किन परिस्थितियों में हो सकता है और किस उम्र में होता है? हालांकि आपने बताया कि कम उम्र में भी हो रहा है लेकिन फिर भी इसकी कुछ उम्र होती है।
1: इसका अपन ऐसे मान के चलें कि पैदाइशी हार्ट अटैक भी धमनियों की अलग जगह से निकलने की वजह से हो सकता है
0: जी।
1: जैसे धमनी एओर्टा से निकलती है जो कि ऑक्सीजनेटेड खून ले जाती है, अगर वो धमनी एक पल्मरी आर्टरी से निकल जाए जो कि अनऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है तो उससे पैदाइशी जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिल कमजोर होता है और हार्ट अटैक के रूप में एक हिस्सा लेफ्ट वेंट्रिकल कम काम कर रहा होता
0: अच्छा।
1: है तो एक पहली बीमारी ये हो गई।
0: ये मतलब जन्म से ही होती। इसकी वजह
1: पैदाइशी
0: अच्छा।
1: मतलब जब हार्ट बनता है तो कुछ एबनॉर्मलिटी एम्ब्रोलॉजिकल होती है जिसकी वजह से वो धमनी दूसरी जगह जुड़ जाती है। पहला कारण ये हुआ। दूसरा कारण कुछ ऐसी बीमारी होती हैं बच्चों में
0: जी।
1: जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस से होती हैं, जो कि जैसे बॉडी में जो अपने प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज हैं वो अलग तरीके से काम करने लगे
0: जी।
1: उसमें एक कावासाकी डिजीज होती है। कावासाकी डिजीज में भी बच्चों को 5 से 12 साल तक की उम्र में हार्ट अटैक हो सकता है।
0: अच्छा।
1: इसमें धमनियाँ फट जाती हैं, डिसेक्शन हो जाता है धमनियों के अंदर, एक ये कारण होता है। कम उम्र में और कारण होता है, जैसे किसी को वंशागुणत कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो माँ बाप में,
0: हेरिडिटी
1: इसको हम लोग कहते हैं फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया। अगर ये बीमारी होगी तो उसके अंदर धमनियों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमने लगता है और उसकी वजह से धमनियों में रुकावट चालू हो जाती है।
0: अच्छा।
1: तो ऐसे बच्चों को कम उम्र में 12, 13, 14 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक हो सकता है।
0: अच्छा, ये तो रेयर हार्ट अटैक होते हैं जो अभी आपने बताया। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आगे बढ़ें उससे पहले दिल जो है हम सब श्रोताओं का चाह रहा है कि गीत सुन लिया जाए, खास आपकी पसंद का, क्योंकि हमने श्रोताओं से वायदा किया है कि सेहत की बात करेंगे लेकिन तरानों के साथ।
1: नहीं नहीं बिल्कुल, मैं तो आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले आप उन्हें वो गीत सुनाइए
0: जी,
1: अंदाज का जिंदगी एक सफर है सुहाना,
0: यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जी हाँ,
1: हर आदमी को ये मानना चाहिए कि अगर दिल आपका मजबूत रहेगा तो आपका जिंदगी का सफर बहुत अच्छा कटेगा।
0: जी, तो श्रोताओं इस गीत को सुनिए इस संदेश के साथ। जिंदगी

0: बहरहाल गीत हमारे श्रोताओं ने सुना और गीत का आनंद भी लिया कि कल क्या होगा ये किसी ने नहीं जाना है, लेकिन आज जो हो रहा है वो तो हम जानते हैं और वो हमारे हाथ में है। तो अपने इस आज को यानी कि वर्तमान को हम सुधार लें, तो कौन सी दिनचर्या है जिसकी वजह से दिल पर ज्यादा जोर पड़ता है और हार्ट अटैक के कारण बनती है?
1: मैं युवाओं से दो चीजों का निवेदन करूंगा और चाहूंगा कि युवा जो है वो इसका पालन करें
0: जी,
1: क्योंकि जिस तेजी से हृदय रोग बढ़ रहा है उसको रोकना बहुत जरूरी हो गया
0: जी।
1: अगर रोका नहीं गया तो 2025 में हिंदुस्तान जो है वो हार्ट अटैक के मरीजों का वर्ल्ड कैपिटल हो जाएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा।
0: तो श्रोताओं आप ये बात सुन रहे हैं डॉक्टर साहब की, लेकिन इसे दिल पर ना ले, दिमाग की डायरी में नोट करें क्योंकि दिल पर बात लेने से दिल पर जोर पड़ता है।
1: देखिए इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है
0: जी।
1: माँ बाप जो है उनके खान पान पे विशेष ध्यान दें बचपन से।
0: बिल्कुल।
1: एक तो नाश्ता करा के बच्चों को स्कूल भेजना बहुत जरूरी है।
0: अच्छा।
1: इससे कई बीमारियों को आप शुरू से ही जन्म देना चालू अच्छा। कर देते हैं। अगर आप पुराने जाएं तो नाश्ते में बच्चे गेहूं या चने का रोटी खा के जाते थे, आजकल अधिकतर जो है वो ब्रेड खा के जाते हैं
0: या नूडल्स खा के जाते हैं।
1: तो ये तो आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है,
0: जहर है।
1: तो हाँ हरी सब्जी आप जरूर दें। अगर आप काम करने वाले माँ बाप हैं तो आप तैयारी रात में करके रखें और सुबह, जिससे आपका समय बचत हो। ये आपको पहली चीज देखना जरूरी है
0: जी।
1: सुबह बच्चे नाश्ता करके जाएं
0: जी।
1: ये जो फास्ट फूड खाने लगे हैं, जो जंक फूड खाने लगे हैं, आप ये ध्यान रखिए, अगर आप टीवी देख के खाना खाएंगे तो आप जरूर ज्यादा खाना खा जाएंगे
0: और ओबेसिटी को निमंत्रण
1: आप निमंत्रण दे रहे हैं। और ये जान लें कि जो आप बचपन में खा रहे हैं वो कोलेस्ट्रॉल आपकी धमनियों में जमना चालू हो गया।
0: अच्छा।
1: ऐसा नहीं है कि आप बड़े होके बंद करेंगे।
0: वो भी ये सोच के नजरअंदाज कर देते हैं कि बच्चा खाएगा पिएगा ठीक रहेगा,
1: तो वो जो है जमना चालू हो जाता है। तो ये मान के चलें कि बच्चे को मोटा ना होने दें,
0: यानी खान पान का श्रोताओं बहुत असर पड़ता है सेहत पर, दिल की सेहत पर, जो बचपन से ही देखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं युवावस्था की, क्योंकि युवावस्था में काफ़ी सारे वर्कलोड भी होते हैं युवाओं पर, पढ़ाई का भी होता है, करियर का भी होता है, तो उसमें तनाव भी रहता है और खान पान भी अनियमित हो जाता है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें मैं जो सबसे हाई रेटिंग दूंगा वो दूंगा तंबाकू का सेवन और धूम्रपान
0: जी।
1: एक बात मैं और बताना चाहूंगा, जिनके माँ बाप धूम्रपान करते हैं वो ये मान के चलें कि जिस कमरे में बच्चे सो रहे हैं अगर एयर कंडीशन कमरा है तो उसमें धूम्रपान ना करें, क्योंकि आपके बच्चे जो आप धुआं निकाल रहे हैं वो ऑलरेडी उसको अंदर ले रहे हैं और एक तरह से वो स्मोकिंग कर रहे हैं। युवा पीढ़ी का जो मुख्य कारण सामने आया है उसमें दो चीजें आई हैं
0: जी।
1: एक तो उनका मोटापा
0: अच्छा।
1: जो खान पान से संबंधित है,
0: दूसरा बैठकर कार्य करना।
1: तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो आया है कि तंबाकू का सेवन
0: जी।
1: इतनी कम उम्र से चालू हो गया है और उसका मुख्य कारण है गुटके में तंबाकू का प्रयोग होना और दूसरा सिगरेट और बीड़ी का चलन होना। ये जो तंबाकू और जो मोटापा है ये मुख्य कारण है
0: जी।
1: तीसरा कारण आप देखिए, आजकल बच्चे घर से नहीं निकलते, मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं, सारे टीवी इंटरनेट कनेक्टेड आ गए, आप उस पे गेम्स खेल रहे हैं। तो ये होना चाहिए कि बच्चे को फोर्सफुली आपको जबरदस्ती घर से बाहर 2 घंटे खेलने के लिए भेजना ही चाहिए। एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि स्कूल के अंदर उनको जो पीरियड्स गेम्स के मिलते हैं वो लिमिटेड होते हैं।
0: बिल्कुल सही बात।
1: तो डेली कसरत बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, यानी कि खान पान का ध्यान रखना चाहिए और व्यायाम की भी बहुत ज़रूरत है और वो शुरुआत से यानी बचपन से ही आदत डालनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपने दो कारण तो बता दिए और किस उम्र में होता है ये भी बताया। आगे बढ़ेंगे हम श्रोताओं, लेकिन अब बारी है एक और गीत सुनने की। तो डॉक्टर साहब कौन सा गीत आप अपनी यादों के खजाने से हमारे श्रोताओं के लिए निकाल रहे हैं?
1: आप इसमें उन्हें अर्थ का गीत

0: तो श्रोताओं, ये गजल आपने सुनी। एक बहुत अच्छी कहावत सर आजकल चल रही है डॉक्टर साहब कि दिल अगर खोला होता अपनों के सामने तो क्यों उसे टेबल पर खोलना पड़ता।
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं
0: जी।
1: अब आजकल लाफिंग क्लब्स और क्लैपिंग क्लब्स चालू हो गए हैं
0: जी।
1: लोग खूब खुल के हंसते हैं, जोर जोर से ठाके लगा के सुबह हंसते हैं। ताज्जुब होगा कि ठाके लगा के हंसने में आपकी शरीर की सारी मसल्स एक्टिव हो जाती हैं।
0: बिल्कुल।
1: और उससे एक हार्मोन निकलता है एंडोर्फिन नाम का। ये देखा गया है कि कैंसर मरीजों को अगर खुश रखा जाए तो उनका दर्द कम हो जाता है। वो एंडोर्फिन लेवल्स बढ़ने से जो कि पेन थ्रेशोल्ड को एक्टिवेट करता है,
0: कम करता है। तन मन दोनों ही प्रफुल्लित होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो खूब हंसी है श्रोताओं। अच्छा, एक बात जो मेरे दिमाग में आ रही है, ये कहा जाता रहा है कि अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है कि महिलाओं को हार्ट अटैक या हृदयाघात कम होता है पुरुषों की तुलना में, ऐसा है क्या?
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन जो कि उनका HDL लेवल बढ़ाता है।
0: अच्छा।
1: जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी वजह से इन लोगों को हृदयाघात कम होता है।
0: अच्छा।
1: लेकिन अब ये जो है इसका जो अंतर है वो कम होता जा रहा है। उसके मुख्य कारण कुछ ये हैं, एक तो दवाइयों का जो सेवन करती हैं औरतें प्रेगनेंसी रोकने के लिए।
0: अच्छा।
1: दूसरा मुख्य कारण ये है कि मोटापा बहुत तेजी से औरतों में बढ़ रहा है। तीसरा, खान पान जो बदल गया है
0: जी।
1: इन तीनों की वजह से अंतर जो है वो पुरुषों और महिलाओं में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये अंतर मीनोपॉज के बाद बिल्कुल खत्म हो जाता है। उतनी मात्रा में ही इनको हार्ट अटैक होता है औरतों को जितना कि आदमियों को होता है। लेकिन एक बात आप जान लें, औरतों में हार्ट अटैक के बाद इलाज में ज्यादा मुश्किल होती है।
0: अच्छा।
1: बजाय आदमियों के। इनमें अगर एंजियोप्लास्टी हम लोग करते हैं तो स्टेंट में रीस्टेनोसिस औरतों में ज्यादा होता है आदमियों की अपेक्षा।
0: अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मधुमेह या डायबिटीज की जो बीमारी है वो भी आजकल जो आंकड़ा है उसका बढ़ते ही जा रहा है, तो मधुमेह के रोगियों में हृदयाघात क्या ज्यादा संभावना रहती है?
1: बहुत ज्यादा संभावना रहती है। इसको ऐसा मान के चलें कि ये दोनों भाई बहन होते हैं।
0: अच्छा।
1: जिसको डायबिटीज हो गई उसको हृदयाघात की संभावना होनी होनी है।
0: अच्छा।
1: अगर आप अपनी डायबिटीज कंट्रोल नहीं रखेंगे
0: जी,
1: क्योंकि उससे ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल
0: जी
1: बढ़ जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो प्रोसेस होता है इससे दिल की धमनियों में रुकावट होकर चर्बी जमती है वो बढ़ने लगता है। चूंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, ये भी एथेरोस्क्लेरोसिस चर्बी के जमने को बढ़ाती है
0: जी।
1: अगर आप डायबिटिक हैं तो ये मान के चलें कि अपना शुगर बिल्कुल कंट्रोल रखें, डेली आप कसरत करें और अपना ट्रेडमिल टेस्ट कराते रहें।
0: अच्छा।
1: मशीन पे दौड़ के, जिससे ये मालूम रहे कि आपको हृदयाघात की संभावना कितनी है।
0: यानी कि विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह से आप दवाइयों का सेवन करें और अपना चेकअप करवाते रहें समय समय पर, यदि आप मधुमेह या डायबिटीज के शिकार हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हृदयाघात के बारे में कहा जाता है कि इसके लक्षण में तेज दर्द होता है या घबराहट होती है, या कुछ और लक्षण भी इसके हो सकते हैं?
1: देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं हरदम ये बताना चाहता हूँ कि लोगों में एक गलत धारणा है कि हार्ट अटैक में सीने के बीचों बीच दर्द होता है। ये बिल्कुल गलत धारणा है।
0: अच्छा।
1: अगर अपन परसेंटेज लेके देखें तो 60% लोग ऐसे होते हैं जिनके सीनों के बीचों बीच दर्द होता है। बाकी और तरीके जो वो होते हैं वो अपने समझना जरूरी है। जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है या किसी आदमी को डायबिटीज होती है तो उनके सीनों के बीचों बीच दर्द नहीं होता।
0: अच्छा।
1: उनके जबड़ों में दर्द हो सकता है। अधिकतर ऐसे लोग जो हैं वो दांत वाले डॉक्टर पर चले जाते हैं। राइट कॉरोनरी आर्टरी की रुकावट में जबड़ों में दर्द होता है। गर्दन में ऐसा लगता है कि गले में घुटन महसूस हो रही है।
0: अच्छा।
1: पीछे दोनों पुष्ट के पीछे जो हाथ होते हैं इनके पीछे बीचों बीच दर्द होता है।
0: अच्छा।
1: जब सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बंद होती है। दोनों बाजुओं में दर्द आता है तो लोग सर्वाइकल स्पोंडाइलोसिस के लिए न्यूरोसर्जन के पास चले जाते हैं। हरदम याद रखिए, एक साथ दोनों कंधों में दर्द कभी नहीं होगा।
0: अच्छा।
1: वो केवल हृदय की बीमारी में ही होता है। नस दबती है तो केवल एक हाथ में दर्द आता है अधिकतर। बड़ा ही रेयर होता है कि आपके दोनों हाथ में दर्द हो। अगर कोई पुरुष या महिला जिसकी उम्र 55 से ज्यादा है
0: जी,
1: अगर वो घबराहट बता रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास ले आए
0: जी।
1: अधिकतर ये देखा गया है, उन्होंने कहा साहब गर्मी होगी, सर्दी होगी, मौसम खराब है, कुछ खा लिया है। इससे टाले ना। घबराहट एक ऐसा लक्षण है जो मरीज को ये सचेत कर देता है कि उसे हार्ट अटैक होने वाला है।
0: अच्छा। तो श्रोताओं, आपने डॉक्टर साहब की बात ध्यान से सुनी होगी और ये बात आपको डराने के लिए नहीं है बल्कि सचेत करने के लिए है। तो और कुछ गंभीर बात करें उससे पहले एक गीत डॉक्टर साहब आपकी पसंद का अपने श्रोताओं को हम सुनवाते हैं।
1: अब एक शोर का गीत सुनवाइए, जीना जी, चलने का नाम,
0: जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। ये गीत भी बड़े अच्छे अच्छा संदेश देते हैं। चलते रहेंगे तो कोलेस्ट्रॉल शायद ना बढ़ेगा,
1: ना बढ़ेगा।
0: डॉक्टर साहब भी यही कहना चाहते हैं। तो आइए श्रोताओं, फिल्म शोर का ये हिट गीत सुनते हैं।

0: आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ, और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीत रस्तोगी। और आज की हमारी बातचीत का विषय है, क्यों होता है हृदयाघात और इससे कैसे बचा जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अभी लक्षणों के बारे में बताया कि कौन से लक्षण प्रकट हो तो लग सकता है कि हृदयाघात होने वाला है मरीज को, तो ये जो लक्षण प्रकट होते हैं उसका बाद कितना समय होता है कि हम डॉक्टर के पास लेकर मरीज को जा सकें और मरीज की जान बच सके।
2: एक इस्कीमिक प्री कंडीशनिंग करके कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है, किसी आदमी को थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहता है तो हार्ट जो है उसके एकस्टम्ड हो जाता है, उसको मालूम पड़ता है कि कम ब्लड मिल रहा है। ऐसे लोगों को समय मिल जाता है डॉक्टर के पास पहुंचने में। यंग आदमी जिसको अचानक क्लॉट बनता है उसके पास बिल्कुल समय नहीं होता पहुंचने के लिए। लेकिन जो बुजुर्ग हो जाते हैं जिनको थोड़ा थोड़ा दर्द होता है तो उनका हार्ट इसके लिए कंडीशन हो जाता है। उसको तो आदत पड़ जाती है तो वो जनरली पहुंच जाते हैं। आप न्यूज में सुनते हैं कि उसे दर्द हुआ और तुरंत ही अचेत हो जाते हैं। तो ये जो होता है कि कंडीशनिंग हार्ट की नहीं होती, अचानक जो धमनी में खून प्रॉपर बह रहा है एकदम उसे बंद कर दिया जाए तो हार्ट को इतना समय ही नहीं मिलता, एरिथमिया हो जाता है और वो एकदम। इसलिए जो लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं उनके अंदर धमनियों में कोलेट्रल्स डेवलप हो जाते हैं, उन लोगों में रिस्क कम रहता है।
1: हमने डायबिटीज की बात की कि डायबिटीज के रोगियों को हृदयाघात का खतरा ज्यादा रहता है। अगर मैं उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर की बात करूं जो आजकल देखने में बहुत ज्यादा आता है, तो इसका क्या रोल रहता है हृदयाघात में?
2: देखिए, ये सब मुख्य कारण होते हैं हृदयाघात के, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, मोटापा और धूम्रपान।
1: अच्छा,
2: ये मुख्य कारणों में आते हैं।
1: अच्छा,
2: जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है
1: जी,
2: तो हार्ट पे लोड बढ़ने लगता
1: है। अच्छा,
2: चूंकि उस हार्ट पे लोड बढ़ता है तो हार्ट को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है और ये धीरे धीरे एथेरोस्क्लेरोसिस करने लगते हैं।
1: अच्छा,
2: या एक रेयर बीमारी होती है जिसमें कि एओर्टा फटने से धमनी में चला जाती है, जिसको हम डिसेक्शन ऑफ एओर्टा कहते
1: अच्छा,
2: हैं, उसमें भी हार्ट अटैक हो सकता है। जहां से कॉर्नरी आर्टरी निकल रही है धमनी फट के अगर वहां तक पहुंच जाती है,
1: ये रेयर केसेस
2: होते हैं। तो ब्लड प्रेशर तो आप हरदम कंट्रोल रखें। एक बात और जान लें, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो संभवतः आपको आने वाले समय में डायबिटीज भी हो जाएगी, ऐसा देखा गया है। तो आप हरदम अपने आप को तंदुरुस्त रखें, वो भोजन का सेवन करें जो आपके लिए जरूरी है।
1: जो उच्च रक्तचाप के रोगी हैं क्या वो व्यायाम कर सकते हैं?
2: बिल्कुल, ये गलत धारणा है कि उच्च रक्तचाप के रोगी व्यायाम नहीं कर सकते। आप वॉकिंग कर सकते हैं, बस एक चीज का ध्यान रखें कि आप वजन नहीं उठा सकते।
1: अच्छा,
2: ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल पे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं।
1: जी, बहरहाल आपने बताया कि कौन से लक्षण होते हैं हृदयाघात के, कारण क्या होते हैं, कैसे बचा जा सकता है। एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि जब मरीज को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं उनके घर के लोग और उसको पता चलता है कि उसके कहीं वाल्व में अवरोध है या उसे हृदयाघात हुआ है, तो मानसिक उसकी जो अवस्था है वो भी बिगड़ जाती है। उसे लगता है अब तो मेरे हृदय में चीरा लगेगा या सर्जरी होगी, तो वो और ज्यादा घबरा जाता है।
2: देखिए, हार्ट अटैक जिसको उम्मीद नहीं होती अचानक आने पर, ये बिल्कुल नॉर्मल रिस्पॉन्स है। हम लोग ये करते हैं कि उसको हरदम समझाते हैं कि इसका इलाज संभव है और कोई अब महंगा इलाज नहीं है। अगर मरीज प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करके होता है, जिसमें कि हम हार्ट अटैक में स्टेंट डायरेक्ट डाल देते हैं, अगर उन 90 मिनट के अंदर हमारे पास मरीज आ जाता है, अगर मरीज देर से आता है तो हम उसको खून पतला करने की दवा दे देते हैं। उसमें काफ़ी अच्छी दवाएं उपलब्ध हैं जो 3 घंटे तक दी जा सकती हैं, उससे धमनी बिल्कुल खुल जाती है। बाद में 2 दिन बाद उसकी एंजियोग्राफी करके जरूरत है तो स्टेंट लगाया जा सकता
1: है। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के बाद जो मरीज होते हैं अपनी सामान्य जीवन जी सकते हैं।
2: बिल्कुल सामान्य जीवन जी सकते हैं, बस एक ही चीज देखना होता है उसमें कि वे दवाइयों का सेवन लगातार करें और उनकी दिल की ताकत कितनी बची है।
1: अच्छा।
2: कभी कभी क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाता है, मरीज को मालूम नहीं पड़ता, वो काम करता रहता
1: अच्छा,
2: है, बाद में आता है, दिल उसका कमजोर हो जाता है।
1: अच्छा।
2: जैसे आप ये मान के चलें कि जो इन्फीरियर वॉल के हार्ट अटैक होते हैं उसमें पेट में दर्द होता है, अपचन होता है, उल्टी हो जाती है, मरीज सुस्त है, खाने पीने से हुआ, घर में रहता है, गैस की दवाएं अपने मन से खाता रहता है, और 2 दिन बाद जब जाता है तब मालूम पड़ता है उसका हार्ट काफ़ी डैमेज हो गया, हो सकता है वाल भी लीक करने लगा हो। तो इसलिए कोई भी लक्षण अगर आपको हो जो आपको लगता हो कि नॉर्मल नहीं है तो नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें।
1: अच्छा,
2: मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा। सब लोगों के पास कार या व्हीकल होता है,
1: बिल्कुल,
2: आप उसका सर्विस कराने जाते हैं
1: जी।
2: आप अपनी बॉडी को मानिए, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कार दैट यू हैव बीन गिवन बाय द गॉड, भगवान ने आपको इससे बढ़िया चीज नहीं दी। एक साल में एक दफे उसकी पूरा इन्वेस्टिगेशन कराएं, उसकी ओवरऑयलिंग कराएं, उसकी सर्विसिंग कराएं। जान है तो जहान है,
1: बिल्कुल जान है तो जहान है। और आप अपनी महंगी कारों की और महंगी गाड़ियों की जितनी हिफाजत करते हैं उतने उससे ज्यादा अपने शरीर
2: की हिफाजत,
1: क्योंकि जब आपका शरीर सुरक्षित रहेगा तभी तो आप गाड़ी पे बैठ पाएंगे।
2: इसीलिए आप ये ध्यान रखें, अगर आपको वो इशिकिया का गाना याद है, दिल तो बच्चा है
1: जी, दिल की ख्वाहिशें भी पूरी करते रहना चाहिए। तो श्रोताओं, ये गाना राहत फतेह अली खान की आवाज़ में इश्किया फिल्म से, आइए सुनते हैं।

0: जी हाँ श्रोताओं, हम सब के अंदर एक बच्चा हमेशा मौजूद रहता है और शायद उस बच्चे को मौजूद रहना भी चाहिए क्योंकि वही हमें जिंदा दिल बनाता है और जिंदा दिली स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है।
1: देखिए, जो आदमी जिंदगी में जिंदा दिल रहते हैं और जिंदगी भरपूर जीते हैं उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती।
0: बिल्कुल।
2: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी ग्वालियर और इस समय आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत रस्तोगी। डॉक्टर साहब, अपनी बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब,
0: नींद ना आना नींद का कारण है क्या?
1: बहुत मुख्य कारण है
0: जी।
1: जैपनीज ने सबसे पहले इसकी स्टडी की और ये पाया
0: जी
1: कि जो लोग 8 घंटे से कम सोते हैं उनको हृदयघात की संभावना, ब्रेन स्ट्रोक की संभावना बहुत बढ़ जाती है।
0: अच्छा,
1: एक चीज आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो लोग कम सोते हैं उन्हें डायबिटीज की संभावना भी उतनी अधिक बढ़ जाती है
0: जी।
1: तो एट ए स्ट्रेच आप कम से कम 6 घंटे रात में सोएं। अभी एक स्टडी आई है, वो कहते हैं जो लोग दोपहर में सोते हैं उन्हें ब्लड प्रेशर हो सकता है।
0: अच्छा,
1: लेकिन जितनी पुरानी अनुसंधान है वो ये कहते हैं कि अगर आप 1 घंटे रेस्ट करेंगे दोपहर में तो आप ये मान के चलिए कि आप 50% बीमारियां दूर कर देंगे। ऐसे मान के चलिए कि आपको 1000 किलोमीटर ट्रेवल करना है, 500 किलोमीटर पे गाड़ी का इंजन आपने बंद करके रिलैक्स कर दिया, ऑयल सब ठीक हो गया गाड़ी का, रीस्टार्ट की, देन यू कैन ट्रेवल अनदर 500 किलोमीटर।
0: बिल्कुल। तो ये हमारा शरीर भी श्रोताओं मशीनरी है, बस इतना है कि इसमें जज्बात हैं, भावनाएं हैं, हम हंसते हैं, रोते हैं और गुस्सा भी करते हैं। बहरहाल, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें बताई जिनसे कि हृदयाघात से बचा जा सकता है और बचपन से ही उन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि हम अपने बच्चों को देखें कि वो क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और अपने आप पर भी ध्यान दें, सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और सुनने में आती है कई बार कि दिल का साइज बड़ा होना, क्या ये भी अपने आप में एक बीमारी है क्या? वैसे तो बड़े दिल का होना अच्छी बात है।
1: देखिए, लोग ये कहते हैं कि बड़े दिल का आदमी है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि किसी को वाकई में मुहावरे के तो ठीक है, लेकिन वाकई में दिल बड़ा हो,
0: चिकित्सकीय रूप से किसी का दिल बड़ा
1: बड़ा नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बीमारी कहते हैं
0: जी,
1: और ये काफी खराब बीमारी होती है, इसका इलाज भी नहीं है। पेसमेकर लगा के काम करने की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। कुछ लोग जिनको मायोकार्डाइटिस होती है जल्दी इलाज चालू होता है, 1-2% वापस भी आ सकते हैं, वरना अधिकतर लोग इसमें वापस नहीं आते।
0: इसकी वजह क्या होती है?
1: वजह इसकी जनरली वायरल इन्फेक्शन से हार्ट में सूजन आ जाना, उसकी वजह से मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, उसको हम लोग वायरल मायोकार्डाइटिस के नाम से कहते हैं। उसके अंदर ये दिल फैल जाता है और दिल में सूजन आ जाता है।
0: तो चलते चलते हम एक गीत आपकी पसंद का अपने श्रोताओं को और सुनवाना चाहेंगे।
1: मैं एक गीत बहुत पसंद करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि मान लो आपको हार्ट अटैक हो भी जाए, उसका इलाज हो जाए, तो आप ये 3 इडियट्स का गाना सुने, ऑल इज वेल।
0: सही बात है, और वैसे भी कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आइए सुनते हैं श्रोताओं ये गीत।

0: डॉक्टर साहब हम भी यही कहेंगे कि ऑल इज वेल होना ही चाहिए। चलते चलते मैं आपसे कुछ पंक्तियों में बहुमूल्य टिप्स आप हमारे श्रोताओं को दीजिए ताकि वो हृदय की बीमारी से बच सके, स्वस्थ रहें, जिंदगी का आनंद ले सकें।
1: मैं आपको तीन लाइन बताता हूँ, हरी वरी एंड करी। हरी तेजी जल्दी ना करें, हरी का नाम लें भगवान का नाम।
0: अच्छा
1: वरी चिंताओं से मुक्त रहें, करी का सेवन ना करें, तली हुई चीज ना करें, हरी वरी एंड करी।
0: वाह।
1: चौथी चीज जो ये है, अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ें, एक टाइम साइकिल चला के जाएं अपने दफ्तर। अगर आपका दफ्तर 2 किलोमीटर तक है, सुबह ज्यादा धूप है तो लौटते समय पैदल आएं
0: जी।
1: एक तरफ से आप वॉकिंग करें,
0: बिल्कुल, क्योंकि इस तरह से आपको व्यायाम के लिए
1: अलग से समय नहीं निकालना पड़ेगा। वॉक करें। दूसरा, घर का सामान लेके जरूर आएं, उससे आप जब सामान उठाएंगे तो उससे भी कसरत होगी, वेट लिफ्टिंग। ये बात आप ध्यान रखें कि आप गाड़ी से उतरेंगे, चढ़ेंगे, आप हर चीज में एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप जरूर काम करें,
0: व्यस्त रहें मस्त रहें। तो श्रोताओं, डॉक्टर साहब ने कुछ पंक्तियों में पूरी दिनचर्या आपको बता दी कि आपको खाना किस तरह का खाना है, एक्सरसाइज करनी है, चिंताओं से दूर रहना है, गहरी नींद सोना है। तो बहरहाल ये आपने कार्यक्रम सुना, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। बस इसके साथ ही आज ये कार्यक्रम हमें समाप्त करना है। हालांकि बातें बहुत सारी हो सकती थी और भी, लेकिन समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। तो श्रोताओं, सेहत की बात तरानों के साथ आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत रस्तोगी। आप गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय में हृदय रोग विभाग में विभागाध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला हमारे श्रोताओं के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

क्यों होता है हृदयाघात, इससे कैसे बचें, इस विषय पर कार्यक्रम सेहत की बात तरानू के साथ में डॉक्टर पुनीत रस्तोगी से बात कर रही थी आभा गुप्ता। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और आनंद बख्शी को सुनते हैं फिल्म चरस।

0: फिल्म का अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में, फिल्म हाथी मेरे साथी। श्रोता, इस गीत को हम आपको सुनवा नहीं पा रहे, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:58 हुए हैं। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। जाओ,
1: आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखा गया है, जो सभी आयु वर्ग के लिए योग के महत्व पर बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज इंदौर में ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन करेंगे। लगभग 2,935 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा 48 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर इंदौर व उज्जैन के बीच आवागमन को और अधिक सुगम एवं तेज बनाएगा। पासपोर्ट आवेदनों के पुलिस सत्यापन के लिए प्रदेश पुलिस को 5,00,000 से कम आवेदन श्रेणी में देश में प्रथम स्थान मिला है। इसके लिए नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश पुलिस को इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस से सम्मानित किया गया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले ही 2-0 की बढ़त के साथ श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फिल्म लेकिन का ये बहुत प्यारा संगीत। स्वर थी लता मंगेशकर की, गीत लिखा था गुलजार ने और संगीत था हृदयनाथ मंगेशकर का। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम। स्वर है उदित नारायण के, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत निर्देशन है उत्तम सिंह का।

कार्यक्रम का अगला गीत राहत फतेह अली खान की आवाज़ में। ये गीत रचना है फैज़ अनवर को और इसे संगीत में बनाया है साजिद वाजिद ने। फिल्म है दबंग।

लीजिए अब सुनिए राहत फतेह अली खान की आवाज में फिल्म किंग सिंग इज किंग का ये गीत। गीत लिखा है मयूर पुरी ने और संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और ये है आकाशवाणी भोपाल। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रावण से। ये गीत गाया है नंदिनी श्रीकर और साथियों ने। शब्द रचना है पंछी जालौनवी की और संगीत है अभिजीत नलानी का।

कार्यक्रम का अगला और बहुत खूबसूरत गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इसे संगीतमय बनाया है उत्तम सिंह ने।

डुप्लीकेट। आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनाते हैं इस फिल्म का गीत। कुमार सानू की आवाज़ में शब्द रचना है जावेद अख्तर की और संगीत है अनु मलिक का।

आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म मोहरा का गीत। स्वर है पंकज उदास और साधना सरगम के। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत है बिजू शाह का।

पेश है फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बागी से। स्वर है अमित कुमार और अनुराधा पोडवाल की, शब्द रचना है समीर की और संगीत है आनंद मिलिंद का।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष विश्वभर में लगभग 2,500 स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कल जबलपुर में होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों, विकास खंडों और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में देशभर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मनाया जा रहा है। 17 से 26 जून तक इस अभियान में जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में प्री मानसून के चलते आज 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुँचने का अनुमान है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे से चेन्नई में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सरिता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पहला गीत सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से, सुमधुर आवाज़ लता मंगेशकर की।

रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव। इसी गीत को सुनना चाहा है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश इन सभी श्रोताओं की है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। छत्तीसगढ़ बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर श्रीमती सविता, बेबी स्वाति, माही, पूजा और इनका पूरा परिवार। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजेश, राजदीप, राजेश और राशि राजेश। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म महबूबा का ये बहुत प्यारा सा गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। ये गीत रचना की है आनंद बख्शी ने और इसे संगीतमय बनाया है राहुल देव बर्मन ने।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम तक लिख भेजी है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मनसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। इसी गीत को सुनना चाहे घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं मंजिल फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत, जिसमें सुमधुर आवाज़ है लता मंगेशकर की। ये गीत लिखा है योगेश ने और इसकी धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में हम तक फरमाइश लिख भेजिए आप सभी श्रोताओं ने। छत्तीसगढ़ भाटापारा धतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने इसी गीत को पसंद किया है। महादेव घाट अमलेश्वर से टोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने इसी गीत को पसंद किया है। राजा रामनगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन और चीकू सल्लू ने। उपाध्याय नगर देवास से पुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा और शिवम वर्मा ने इसी गीत के लिए हम तक फरमाइश लिख भेजी है। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, सुनीता, संगीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। श्रोताओं, आप सभी ने सुनना चाहा है इस फिल्म का गीत जिसका नाम है दिल का क्या कसूर। स्वर हैं अलका याग्निक और कुमार सानू के। ये गीत लिखा है अनवर सागर ने और अनवर सागर के लिखे गीत को संगीत में बनाया है नदीम श्रवण ने।

इसी गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक भुवन मोहिनी का दूसरा भाग।

0: पिछली कड़ी में आपने सुना कि धार नगरी के महाराज द्युमत्सेन ने राजकुमार विजयश्रवा और नर्तकी भुवन मोहिनी के बीच प्यार की बातें जानकर भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया। राजकुमार भुवन मोहिनी के वियोग में पड़ गया और उसके 3 महीने के अथक श्रम के बाद भुवन मोहिनी का एक सुंदर चित्र बनाया। एक दिन राजमाता से उसकी मुलाकात हो गई। राजमाता ने विजयश्रवा पर ताने कसे। फिर क्या था, विजयश्रवा महल छोड़कर निकल पड़ा। रास्ते में अरण्यक ने बताया, भुवन मोहिनी इंद्रप्रस्थ गई है, तो वह उससे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिया। क्या वो भुवन मोहिनी से मिल सका, जानने के लिए सुनते हैं धारावाहिक भुवन मोहिनी की दूसरी कड़ी।
1: आह, भुवन मोहिनी, ऐसा एक भी क्षण नहीं होता जब तुम मेरी दृष्टि के सामने नहीं होती। तुम मेरा परित्याग करके किस लोक को चली गई हो?
2: मैं स्वप्न लोक की छाया हूँ राजकुमार, एक छलावा बनकर तुम्हारे जीवन में समाई हुई हूँ। तुम मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। मेरा चिंतन करना भूल जाओ। देखो, मेरे कारण तुम्हारे जप तप और जीवन के सारे शुभ कार्य व्यर्थ हो जाएंगे। मैं तो वायु तरंगिणी बनकर अंतरिक्ष में अशांत होकर उड़ती फिरती हूँ। किसी श्रापवश अप्सरा का जीवन पाकर भूलोक में अवतरित हुई हूँ। फिर भी मुझे अपने पूर्व जीवन का पूर्ण स्मरण है राजकुमार। मैं तुम्हारी भी पूर्व जीवन से परिचित हूँ। तुम देवलोक से भ्रष्ट होकर भूलोक में आए हो। वहां भी तुमने मुझे प्राप्त करने का प्रयास आरंभ किया तो देवगण तुमसे असंतुष्ट हो गए। तुम्हारे आकर्षण में मैंने भी देवताओं की अवहेलना आरंभ कर दी और देवता हम दोनों से रुष्ट हो गए और देवलोक से निष्कासित कर दिया। तुमने राजराजेश्वर के महल में जन्म लिया और मैंने अपने पूर्व जीवन के अनुकूल एक अप्सरा के गृह में

0: इसलिए अपने पूर्व जीवन में लौट चलने के लिए आवश्यक है कि मेरे रूप की ज्वाला में विदग्ध ना बनो। जाओ जाओ ना, मुझे सर्वदा के लिए भूल जाओ।
1: भुवन मोहिनी, तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती हो? कैसा था ये दिवा स्वप्न? एक मृग मरीचिका के सदृश? क्या वास्तव में भुवन मोहिनी मेरे जीवन में छलावा ही सिद्ध होगी? ये कौन था जो स्वप्न के बहाने पूर्व जन्म की कथा का स्मरण दिलाकर शून्य में विलीन हो गया? क्या वास्तव में इस स्वप्न की बातें सत्य हैं? क्या यह सच है कि भुवन मोहिनी पूर्व जन्म में एक अप्सरा और मैं देवलोकवासी था? क्या नारी का आकर्षण देवत्व के पद से भ्रष्ट करके भूलोक का जीवधारी बनाता है? क्या भूलोक में नारी का आकर्षण भ्रष्ट नहीं करता? यदि करता है तो फिर इस जन्म के पश्चात मुझे और क्या बनना पड़ेगा? देवत्व से पतित होने पर मनुष्यत्व का पद मिला, किंतु यदि मनुष्यत्व से भी पतित हुआ तब किस योनि में जाना होगा? आह, मैं क्या करूं? कौन मेरे संदेहों का निराकरण करेगा? अरण्यक, अरण्यक!
2: युवराज, क्या हुआ?
1: क्या बात है, रथ रुका हुआ क्यों है?
2: अश्वों को विश्राम देना अनिवार्य था युवराज।
1: ओह ठीक है, विश्राम के उपरांत संध्या में ही यात्रा पुनः आरंभ होगी।
2: संध्या में ही?
1: हाँ, सारथी से कह दो हमारी यात्रा अनवरत तब तक चलती रहेगी जब तक इंद्रप्रस्थ नहीं आ जाता।
2: जो आज्ञा युवराज। क्या हो गया युवराज को? अरे सारथी, सारथी!
3: क्या है रण्यक, अभी अभी तो विश्राम हुआ, तनिक एक नींद तो पूरी कर लेने दो।
2: हाँ हाँ, तुम सो।
4: क्या बात है रण्यक, कोई चिंता की बात है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैंने कहा ना तुम सो जाओ।
4: झपकी आई ही थी कि तुमने जगा दिया, रात्रि में फिर से यात्रा करनी है?
2: रात्रि में नहीं, संध्या काल में ही।
4: संध्या काल में ही? तब तो चलो बात ही करते हैं। बताओ क्या बात हो गई?
2: सारथी, तुम्हें पता है कि हमारे स्वामी कहां जा रहे हैं?
4: हाँ, तुम ही ने कहा था कि इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं।
2: क्यों जा रहे हैं ये बताओ।
4: तुम ही ने मना किया था, अब तुम ही पूछ रहे हो। फिर भी बताता हूं, जहां तक मैं जान पाया हूं, भुवन मोहिनी को निकाले जाने के कारण ही राजकुमार भी राज्य को छोड़ रहे हैं, सम्राट और साम्राज्ञी को मानसिक कष्ट देने के लिए।
2: तुमने सही जाना, परंतु सारथी, अब तुमसे कहूं कि ना कहूं, बिना कहे भी तो नहीं रहा जाएगा।
4: आराम मिलेगा, कहकर देखो।
2: सारथी देखो तो, कितना नैतिक पतन हो गया है। एक क्षुद्र नर्तकी के लिए युवराज का सिंहासन त्याग देना, कौन इसे उचित कहेगा?
4: बात तो ठीक कही तुमने, परंतु हो सकता है भुवन मोहिनी का मूल्य युवराज अधिक समझते हो राज सिंहासन की तुलना में।
2: छी, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो, यह तो घोर सर्वनाश है, घोर सर्वनाश। राज राजेश्वर का भौतिक सुख त्याग कर रूप की वासना में जीवन को होम कर देना निराह मोह नहीं है तो क्या है? सारथी, तुम मेरी सहायता करो।
4: कैसी सहायता?
2: किसी भी प्रकार से राजकुमार को पतन की गर्त में जाने से हमें बचाना होगा।
4: हमें?
2: वरना सम्राट द्युमत सेन के बाद राज सिंहासन का भगवान ही स्वामी है। सोचो, अगर सम्राट द्युमत सेन के बाद युवराज सिंहासन पर न बैठे तो साम्राज्य का क्या होगा?
4: हाँ,
2: एक राजा के बिना देश कैसे चलेगा? बोलो। हे भगवान, मैं तो सोच के ही परेशान हो गया। पश्चिम और उत्तर से शक और हूड़ जातियां आक्रमण कर देंगी, जिसका सामना छोटे छोटे राज्य नहीं कर सकेंगे। परिणाम क्या होगा ज्ञात है, परतंत्रता। राष्ट्र की प्रजा असहाय की तरह

0: हाँ लूटी जाएगी। सीमा प्रांत की असहाय नारियां विजेताओं की विलास का साधन बन जाएंगी। राष्ट्र की पतिव्रता देवियां कुल कलंकनी कहलावेंगी सारथी, और विश्व की सर्वश्रेष्ठ नारियां भुवन मोहिनी की ही भांति तुच्छ बनकर राष्ट्र के सर्वनाश का कारण बनेंगी।
1: तब क्या हो रण्यक?
0: तुम मेरी सहायता करो।
1: कैसे?
0: सुनो, इंद्रप्रस्थ पहुंचने पर इससे पहले कि युवराज और भुवन मोहिनी की भेंट हो, हम उससे मिलकर सब कुछ बता दें।
1: किससे मिलकर?
0: अरे भुवन मोहिनी से।
1: उससे क्या होगा? भुवन मोहिनी विजय श्रवा को भुला देगी?
0: अवश्य, उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करना होगा। यदि वो सबके लिए अपने सुखों का त्याग कर सकी तो अच्छा ही है, अन्यथा राष्ट्र पर आने वाली विपत्ति को हटा देने के लिए आवश्यक होगा भुवन मोहिनी का वैयक्तिक बलिदान।
1: तात्पर्य?
0: यह मैं नहीं जानता, किंतु इतना तो मैं कह सकता हूं कि भुवन मोहिनी स्वयं राष्ट्रहित को प्रधानता देगी। देना भी चाहिए, राष्ट्र का हित सर्वोपरि है सबके लिए।
1: तो फिर साफ साफ बताओ हमें क्या करना होगा।
0: जैसे भी संभव हो भुवन मोहिनी से विजय श्रवा को अलग रखने का प्रयास करना होगा।
1: अरण्यक, संध्या हो गई है।
0: होने दो।
1: अरे हमें प्रस्थान करना है।
0: अरे हां, परंतु ध्यान रखना इस बात का। चलो दैनिक चर्या करके प्रस्थान किया जाए।
1: हां हां चलो
2: चलो चलो, शीघ्रता करो। युवराज, प्रस्थान की आज्ञा है ना?
3: हां हां, शीघ्रता करो।
2: जो आज्ञा। चलो चलो।
0: मित्र सो रहे हैं, सो जाइए।
3: कहां जा रहा हूं, किस उद्देश्य से जा रहा हूं, क्या होगा परिणाम?
4: केवल सर्वनाश, अधिक कुछ नहीं।
3: हाँ, सर्वनाश?
4: हां, क्या तुम सचमुच उस प्रणयिनी को प्यार करते हो जो तुम्हारी दृष्टि से निर्वासित है?
3: हां।
4: क्या तुम्हें भुवन मोहिनी के अक्षय यौवना होने पर विश्वास है?
3: हां।
4: क्या तुम्हारा आज वाला अनुराग रंजित हृदय अपरिवर्तनशील है?
3: हां।
4: क्या उसकी रूप की झांकी आज जैसी कल भी रहेगी विजयश्रवा? क्या दो दिन में फूल की तरह मुरझा जाने वाला सौंदर्य अपनी सहस्त्र किरण कांति से तुम्हारी रंगीली वासनाओं को चमकाता रहेगा? क्या रुग्णावस्था झुलसकर इस सौंदर्य को कुरूप न बना देगी? क्या बुढ़ापे में आज का स्निग्ध मनोरम और आकर्षक शरीर झुर्रियों की लटकन से घृणित वृत्तियों को न उकसाएगा? क्या स्वयं तुम भी आज की ही भांति तरुण, स्वस्थ और बलिष्ठ रहोगे? बंद करो ये प्रश्नों की श्रृंखला। अरे जीवन स्वयं ही अनित्य है, तो फिर भुवन मोहिनी का सौंदर्य कैसे अनित्य नहीं होगा?
5: सब कुछ नश्वर है, सब कुछ अनित्य है। यह जीवन अनित्य, यह शरीर अनित्य, यह सृष्टि अनित्य और इस सृष्टि के सारे व्यापार अनित्य।
3: किंतु इस अनित्यता का भय ही तो सत्यम शिवम सुंदरम की खोज में जीव को अग्रगामी बनाता है। इस अनित्यता में ही तो जीवन का शाश्वत सत्य है, उससे इस अनित्य शरीर को क्यों वंचित रखा जाए? इस लघु जीवन में पानी की बूंद बूंद की भांति जहां सारे व्यापार स्वयं प्रेरित होकर चल रहे हैं, मैं बाधा क्यों दूं? जब परिवर्तन ही सृष्टि का अटल नियम है, तब भुवन मोहिनी का मधुमय यौवन कैसे स्थायी रहेगा?
5: इसीलिए तुम्हें शीघ्रता है।
3: हां, इसीलिए, ताकि इस अनित्य यौवन को स्वप्न की भांति विलीन होने के पूर्व भोग लूं, अन्यथा फिर तो केवल पश्चाताप की घड़ियां ही शेष रह जाएंगी। यौवन को यौवन की ही प्यास होती है, यौवन को यौवन के जल से ही तृप्त करना होता है, मात्र यौवन के जल से।
0: युवराज, आप इंद्रप्रस्थ पहुंचने वाले हैं।
3: शुभ सूचना दी तुमने अरण्यक। अच्छा बताओ, तुम सब लोग मुझे यहां क्या कहोगे? स्मरण है ना?
0: अवश्य स्वामिन, हम लोग यहाँ पर आपको श्रेष्ठीवर कहकर पुकारेंगे।
3: श्रेष्ठीवर? हाँ, मैं श्रेष्ठीवर हूँ यहाँ इंद्रप्रस्थ में।
0: मित्र, कितने दिनों बाद आपकी उन्मुक्त हंसी सुनी, बहुत अच्छा लगा।
3: सुनो अरण्यक, सारथी को कह दो कि रथ को यमुना के तटवर्ती किसी सुरम्य उपवन में छिपा कर रख दे।
2: अरे सुनो सारथी, रथ को यमुना तट पर किसी सुरम्य उपवन में छुपा कर खड़ा करना।
6: ठीक है अरण्यक।
0: आइए युवराज। अरे वाह युवराज, आपने वस्त्र बदल लिए, आप तो विशुद्ध श्रेष्ठीवर ही लग रहे हैं।

0: साधु साधु, अरण्यक कितना सुंदर वन है। अपने रथ को यहीं पर कहीं खड़ा करवाओ, लगता है कोई आ रहा है। अरण्यक, उससे पूछो किसका उपवन है ये।
1: अरे भाई सुनो, कौन हो तुम?
2: उपवन का माली हूं महोदय, आप लोगों का परिचय?
1: बस ये समझ लो कि हमारे मालिक बहुत बड़े श्रेष्ठी हैं।
2: श्रेष्ठी हैं?
1: हाँ, और व्यापार के उद्देश्य से इस नगरी में आए हैं। अच्छा, इस सुंदर उपवन के स्वामी के बारे में तनिक बताओ।
2: ये उपवन चंद्रवंशी महाराज आदित्य सेन का है, जो इंद्रप्रस्थ से मिले जुले एक बड़े भूभाग के महाराजा हैं, और आजकल इस उपवन का उपयोग उनकी एकमात्र राजबाला चंद्रहासिनी के मनोविनोद के लिए किया जाता है।
1: अच्छा, तो क्या अपरिचितों का निवास निषेध है?
2: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, किंतु ये आवश्यक है कि उपवन में निवास करने वाला व्यक्ति या तो इंद्रप्रस्थ से दूर का निवासी हो, या फिर वो किसी राजवंश का हो, अथवा किसी श्रेष्ठ वंश का लक्ष्मी पुत्र हो। साधारण लोग यहां नहीं रह सकते।
1: भला ऐसा क्यों?
2: इसलिए कि यदि उपवन की कोई हानि हुई तो दंड स्वरूप सहस्त्र मुद्राएं देनी पड़ती हैं।
1: अच्छा।
2: और ये तो तुम जानते ही होगे कि ये दंड कोई राजवंशी या श्रेष्ठी ही दे सकता है।
1: हाँ, ये तुमने सच कहा। सुनो, तनिक इधर तो आओ।
2: क्यों?
1: ये लो 50 स्वर्ण मुद्राएं।
2: 50 स्वर्ण मुद्राएं किस लिए?
1: अरे तुम्हारा पुरस्कार। और विश्वास मानो, हम लोग इस उपवन की एक पत्ती को भी नष्ट नहीं करेंगे, और यदि भूल से ऐसा हो भी गया तो तुरंत उसका दंड भी भर देंगे।
2: मुझे विश्वास हो गया। जानते हो,
1: हाँ,
2: अभी हाल ही में राजकुमारी यहां से लौट कर गई हैं।
1: अच्छा,
2: ये जो पर्णकुटी देख रहे हो ना,
1: हाँ,
2: विशेष रूप से उन्हीं के लिए बनवाई गई थी।
1: अरे वाह वाह, ये पर्णकुटी तो किसी राजप्रासाद से कतई कम नहीं है।
2: बिल्कुल, और इसकी सारी सजधज अभी भी जो की त्यों है।
1: सुनो माली, क्या हमारे मालिक इस पर्णकुटी में निवास कर सकते हैं?
2: तुम्हारे मालिक श्रेष्ठ वंशी है ना?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: परंतु वो कब तक रहेंगे यहाँ?
1: माह दो माह। अब चिंता मत करो, जब चाहोगे चले जाएंगे।
2: तब तो ठीक है, आप लोग अपनी व्यवस्था कर लीजिए, किसी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो मुझे बताइए। हाँ,
1: अवश्य श्रीमान, अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अरण्यक, तुमने अद्भुत कार्य किया। इंद्रप्रस्थ में ऐसे सुंदर आवास की मैंने कल्पना भी नहीं की थी।
1: आपकी प्रसन्नता ही मेरे जीवन का ध्येय है मित्र। अब आप विश्राम करें और हम लोग शेष व्यवस्थाएं करते हैं।
0: हाँ अवश्य।
1: चलो, युवराज तो विश्राम करने गए, ये सारथी कहां गया? सारथ, सारथ,
3: मैं यहां घोड़ों के पास हूं अरण्यक।
1: हाँ हाँ, देखो हम लोग इंद्रप्रस्थ आ गए।
3: रथ को मैं हिलाया हूं।
1: हमें अब अपनी योजना पर अमल करना है।
3: वो भी मुझे स्मरण है।
1: राष्ट्रहित के लिए किसी भी स्थिति में राजकुमार विजय शर्मा से नर्तक

0: मोहिनी का मिलाप नहीं होना चाहिए।
1: अधिक तेज मत बोलो, घोड़े उछलने लगेंगे।
2: अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
3: महाराज आदित्य सेन की जय हो।
4: आइए महामाते ओंकार देव, बैठिए।
3: क्या बात है महाराज, आप कुछ चिंतित दिख रहे हैं। क्या राजकाज के बारे में चिंतित हैं?
4: नहीं महामाते, आपके होते हुए हमें राजकाज की चिंता कभी नहीं हुई और न होगी, परंतु हमें राजकुमारी चंद्रहासिनी के विवाह की चिंता है। उनके लिए कोई उपयुक्त वर न मिलना हमारे लिए तनाव का कारण बना है। कोई भी राजवंशी राजकुमार चंद्रहासिनी के रूप गुण विद्या बुद्धि के अनुरूप ठहर ही नहीं पाता।
3: महाराज क्षमा चाहता हूँ आपको बीच में रोकने के लिए। आपके यमुना तट स्थित उपवन में धारा नगरी से आए हुए एक श्रेष्ठी वर ठहरे हुए हैं।
4: तो क्या हम अपनी राजकुमारी का विवाह एक श्रेष्ठी से करेंगे?
3: क्षमा चाहता हूँ महाराज, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई।
4: हाँ बोलिए।
3: उस श्रेष्ठी के अंग प्रत्यंग की कमनीयता, उसका रूप गुण प्रभाव और आकर्षण, उसका तेजस्वी ललाट, विशाल नेत्र, वृषभ कंध, उन्नत ग्रीवा, चौड़ा वक्षस्थल, केहरी कटी, उसके चक्रवर्ती राजराजेश्वर होने के संकेत देते हैं।
4: अच्छा,
3: वो श्रेष्ठी आसपास के ग्रामीण जनों में कौतूहल का विषय बना हुआ है।
4: यदि ऐसा है तो उसे पहचानना कोई कठिन काम नहीं है। यह काम भुवन मोहिनी कर सकती है।
3: भुवन मोहिनी,
4: जिसे धारा महाराज ग्युमत सेन ने निर्वासित कर दिया था और हमने अपने यहाँ शरण दे रखी है।
3: अच्छा अच्छा, वो नर्तकी?
4: हाँ वही, भुवन मोहिनी धारा नगरी के सम्राट ग्युमत सेन की प्रमुख गायिका रही है और वो वहाँ के प्रधान सामंतों और श्रेष्ठियों को अवश्य पहचानती होगी।
3: अवश्य देव, यह कार्य उसके द्वारा सरलता से कराया जा सकता है।
4: भरत।
5: आज्ञा महाराज।
4: जाकर भुवन मोहिनी से कहो कि हमने उन्हें याद किया है।
5: जो आज्ञा।
4: परंतु महामात्य, यदि वो कोई राजवंशी हैं तो इस तरह श्रेष्ठी बनकर आने की क्या आवश्यकता है? कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है?
3: यह बात विचारणीय है महाराज, परंतु इसका निराकरण भी उसकी पहचान होने के बाद ही किया जा सकता है।
5: महाराज, देवी भुवन मोहिनी उपस्थित होने की आज्ञा चाहती हैं।
4: हाँ हाँ, आज्ञा है।
5: आइए देवी।
6: महाराज आदित्य सेन को प्रणाम।
4: नर्तकी भुवन मोहिनी, राजसभा तुम्हारे बिना सुनी ज्ञात होती है। तुम्हें सर्वदा मेरे आने के पूर्व ही राजसभा में उपस्थित होना चाहिए।
6: अपराध क्षमा हो देव, दासी के अस्वस्थ होने के कारण ही

0: तुम अभी राजकुमारी के साथ उस उपवन में निवास नहीं कर रही थी?
1: देव, उस समय कोई नहीं था।
0: तो ठीक है, कल वहां जाकर गुप्त रूप से पता लगा कर आओ कि उस राजोद्यान में स्थित पर्णकुटी में ठहरने वाला कौन है। यद्यपि वह अपने को धारा नगरी के सर्वश्रेष्ठी का पुत्र बताता है, परंतु हमें शंका है, उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी चाहिए।
1: जो आज्ञा महामात्य, कल राजकुमारी दीपरागिनी सिद्ध करने वहां पुनः जाने वाली है, मैं भी चली जाऊंगी। महाराज, राजकुमारी ने अपने पिछले निवास काल में दीपरागिनी का विशेष अभ्यास किया था महाराज, कल उसी का महोत्सव है।
2: अच्छी बात है,
0: किंतु वहाँ उस अपरिचित व्यक्ति के होते हुए क्या बाधा उत्पन्न नहीं होगी नर्तकी?
1: नहीं महामात्य, अब वो पर्णशाला में नहीं, राजोद्यान के प्रासाद में अपना कार्य करेंगी, और जहाँ तक संभावना है वो व्यक्ति पर्णकुटी में ही रुका होगा।
0: हाँ हाँ, पर्णकुटी में ही रुका है, तुम उसके बारे में पूरी जानकारी ले आना।
1: जी महामात्य।
2: भुवन मोहिनी, चलो, माना कि आज तुम कुछ अस्वस्थ हो, फिर भी तुम्हारा नृत्य और गायन देखे बिना हम भी अस्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए चलो अपना नृत्य और गायन प्रस्तुत करो, परंतु उसके बाद महामात्य ने जो आदेश दिया है उसको अवश्य पूरा करना।
1: जो आज्ञा दी।
3: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आपने सुना धारावाहिक भुवन मोहिनी का दूसरा भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
4: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उड़ीसा के पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रूट पर आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष विश्व भर में लगभग 2,500 स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कल जबलपुर में होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों, विकासखंड और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। नीट परीक्षा के लिए भोपाल में कुल 32 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 21 जून को 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षार्थियों से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की गई है। नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि नीट परीक्षा के चलते शहर के कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रदेश में प्री मानसून के चलते आज 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुँचने का अनुमान है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच अब से कुछ देर बाद 1:30 बजे से चेन्नई में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब महिलाओं के लिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

बारिश की बूंदें भले ही कितनी छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे प्रयास चाहे कितने ही छोटे हों, जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इस सुंदर से विचार के साथ हाजिर हूं मैं कल्पना मिश्रा, आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा के साथ। स्वीकारिए मेरा नमस्कार। बहनों, यूं तो सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं लेकर आती है, जिससे उनका समाज में स्तर ऊंचा हुआ है। वैसे ही एक योजना

0: पारित की गई, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण विधेयक भी कहा जाता है, जो कि एक ऐतिहासिक भारतीय कानून है और ये लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी कि एक तिहाई आरक्षित करता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, महिलाएं अगर किसी देश में प्रगति कर रही हैं, तो मैं समझता हूं कि वह समाज, वह राष्ट्र प्रगति कर रहा है। उनकी ये सोच साकार हुई और ये विधेयक बनाया गया। बहनों, इसकी विशेषताओं पर बात करें तो यह कानून सीधे तौर पर लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही कुछ आरक्षित सीटों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसकी जो समय सीमा है वो 15 वर्षों के लिए प्रभावी होगी, परंतु इसके बाद इसे आगे बढ़ाने के लिए संसद द्वारा नया निर्णय लिया जा सकता है। बहनों, यह कानून परिसीमन प्रक्रिया और नई जनगणना के बाद लागू होता है। यह संविधान संशोधन विधेयक सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान पेश किया गया था। दोनों सदनों द्वारा भारी बहुमत से पारित होने के बाद यह 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया और भारत सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है, जो कि महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। बहनों, आज हैं हमारे बीच संध्या तिवारी जी, जो कि शांति कुंज हरिद्वार महिला मंडल की कार्यकर्ता समाज सुधारक हैं, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही हैं। तो आइए इसी विषय पर इनसे बातचीत करते हैं।
1: आपका हमारे कार्यक्रम महिला सभा में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: आप इस संस्था से कब से जुड़ी हैं और इसका उद्देश्य क्या है, वो आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: इस संस्था में जुड़ने का सौभाग्य बचपन से ही प्राप्त हुआ। मेरे माता पिता गायत्री परिवार से जुड़े और उन्होंने मुझे प्रेरणा के रूप में इस गायत्री परिवार के साथ जोड़ा। संस्था का उद्देश्य मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण है। वास्तव में देखा जाए तो धरती का देवता मनुष्य ही है, पर उसके पूर्व मनुष्य मनुष्य बने और मनुष्य से ऊपर उठ करके देवता बन जाए, इसके लिए ये ऋषि प्रणीत योजना है, जिसे गायत्री परिवार के नाम से जाना जाता है, युग निर्माण योजना के नाम से जाना जाता है और विचार क्रांति अभियान के नाम से जाना जाता है। युग निर्माण योजना कहने का तात्पर्य यह है कि इस योजना में मूलभूत 3 सूत्रों को लिया, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। इन तीनों के निर्माण से ही विश्व निर्माण संभव है, जो हमारी संस्कृति में एक नारा है, वसुधैव कुटुम्बकम, और उसके पूर्व आत्मवत सर्वभूतेषु। इसी को हमारा मिशन कहता है, आत्मकल्याण से लोक कल्याण। आत्मवत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम, पहले अपनी आत्मा का के उत्थान के साथ। यदि केवल आत्मा के उत्थान के साथ बहुत लोग गुफा कंदरा में बैठ करके तपश्चर्या इत्यादि करते हैं, वो आवश्यक है, लेकिन समाज में भी एक प्रकार की तपश्चर्या होती है। समाज के लिए अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर व्यक्ति जब तक लोक कल्याण या परमार्थ भाव के साथ नहीं चलेगा, तो ये समाज का उत्थान संभव नहीं है। मिशन का ये उद्देश्य है। धरती पर स्वर्ग का अवतरण से तात्पर्य कि धरा एक सुखी, समृद्ध, सानंद, उत्साह पूर्ण जीवन जीने की स्थिति में प्रत्येक मनुष्य रहे। धरती का स्वर्ग का अवतरण का तात्पर्य यह है। ये दोनों सूत्र लेकर के मिशन चल रहा है। वैसे देखा जाए तो मिशन का बड़ा व्यापक उद्देश्य है। लघु से विभू तक की यात्रा ये मिशन करने की प्रेरणा देता है कि छोटे से बड़े कैसे बने, और छोटे छोटे जीव जंतुओं से लेकर के, जो हमें दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म स्तर के जीव जंतुओं से लेकर के ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, सारा का सारा कैसे उत्कृष्ट बने, इन विचारों को लेकर के ये मिशन चल रहा है।
1: जी दीदी, आपके विचार बहुत ही महान है। तो आप हमें ये बताइए कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली।
2: जैसा कि आपको गायत्री परिवार के बारे में जानकारी होगी, गायत्री परिवार ने नारी जागरण का बीड़ा उठाया और उस नारी जागरण के बीड़े के साथ, जिसको हम महान 27 बीड़ा को उठाए उसे हम

0: पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी बोलते हैं, उन्होंने ऐसे समय पर नारियों को के उत्थान का मौका दिया जब नारियां केवल चार दीवारी के अंदर बंद थीं, शोषित थीं, दमित थीं, उनको कहीं स्वतंत्र जीने का या अपने आप को उठाने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। ऐसे समय पर परम पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया कि हमको नारियों को, महिलाओं को ऊपर उठाना है, और उन्होंने उसके लिए जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो पहले कभी था आदिम जमाने में, आदिकाल में ये था कि हमारे यहाँ स्त्री पुरुष दोनों बराबर थे, महिलाएं भी वो सारा काम करती थी जो पुरुष करते थे, पर वो बीच का काल जो हमारा गुलामी का काल आया, परतंत्रता का काल आया, उस काल में महिलाओं का पतन हुआ, उनके जीवन का पतन हुआ, और एक प्रकार से देखा जाए तो पूरी तरह वो घर की चार दीवारी में बंद करके उन्होंने एक प्रकार से उनका जीवन ही बंद हुआ। ऐसे समय पर परम पूज्य गुरुदेव ने बहनों को लेकर के, नारियों को लेकर के, छोटी छोटी कन्याओं को लेकर के एक क्रम शुरू किया, उन कन्याओं को प्रशिक्षण दे करके जिन्हें उनने देवकन्या नाम दिया। देवकन्याओं के माध्यम से पूरे देश में जन जागरण का क्रम संपन्न कराया। वो देवकन्याएं साधना भी करती थी और उस साधना कर श्रेष्ठ विचारों को जन जन तक फैलाने का काम यज्ञ माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से करती थी। एक बार वो देवकन्याओं की टोली आई, उन देवकन्याओं की टोली के साथ मुझे रहने का, बातचीत करने का, उनको देखने का, निकट से देखने का मौका लगा और मेरे अंदर प्रेरणा जागी कि मैं भी ऐसा ही काम करूंगी।
1: जी जी जी।
0: और उस प्रेरणा के साथ मैंने इस मिशन को और पक्के से चुना और चुन करके गुरुदेव माता जी को अपना गुरु बनाया, इस संस्था को अपना लक्ष्य बनाया, और लक्ष्य बना करके इस संस्था में मैं कितना मैं कर पाई मैं इसको नहीं कह पाऊंगी, लेकिन प्रयास मेरा ये कि इस संस्था में मैं पूरी तरह अपने आप को झोंक करके काम करती रही और अभी तक मैं काम कर रही हूँ।
1: जी जी जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दीदी। आपको हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो आखिर में आप अपने सुंदर विचार उन तक पहुँचाएंगी तो हमें बहुत खुशी होगी।
0: सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमें आप तक पहुंचने का मौका मिल रहा है। ये अपनों से अपनी बात है, कई बार अपनों से अपनों तक पहुंच नहीं पाते, इससे ये सशक्त माध्यम है, इस सशक्त माध्यम का मौका मुझे मिला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। पर एक निवेदन तो मैं करना चाहती हूँ कि हमारा देश भारत, ये देश सोने की चिड़िया और जगत गुरु रहा है, हम सबको मिलकर के, चूँकि उस क्रम में एक प्रकार से देखा जाए देश पटरी पर आ चुका है, जगत गुरु बनने की पूरी संभावनाएं, पूरे आसार, पूरी किरण दिखाई पड़ रही है, थोड़ा सा हम लोग मिलकर के इस दिशा में हम अपने देश को धक्का लगाएं और आध्यात्मिक देश होने के नाते हम सब अपनी साधना को या अपने आध्यात्मिक या आत्मिक उत्थान को देखते हुए हम अपने आप को साधना की ओर ले जाएं, क्योंकि हमारा देश साधना की धुरी पर खड़ा है। आपको एक निवेदन और करना चाहूंगी, जब हमारा देश परतंत्र था तो दो धड़े काम कर रहे थे, एक धड़ा बाहर जो सीधा देश की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में भाग ले रहा था, और एक धड़ा अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप में काम कर रहा था, जिन्हें हम ऋषि कह सकते हैं, जिन्हें हम साधक कह सकते हैं। एक बल था साधना का बल, उन लोगों ने, ऋषियों ने, साधकों ने, सिद्धों ने, संतों ने, तपस्वियों ने साधना का बल देश को दिया, और उस बल के सहारे लोगों ने प्रत्यक्ष लड़ाई लड़कर के देश को आजाद किया। वही क्रम हम सब मिलकर के करें, अपने साधना के बल को मजबूत करें, अर्थात हम साधना की धुरी पर खड़े होकर के अपने आप को, अपना निर्माण करें, व्यक्ति निर्माण जिसको कहा है, व्यक्ति निर्माण करें, और साधना के बल पर ही यदि हमारा स्वयं का निर्माण हो तो परिवार निर्माण सहज हो जाता है। हम बने तो हमारा परिवार बना, व्यक्ति एक इकाई है, परिवार उस इकाई के सहारे परिवार बनता है, और इस परिवार के सहारे समाज बनता है, और समाज के सहारे पूरे विश्व का निर्माण होता है। तो निवेदन ये है कि हम मिल करके इस दिशा में सार्थक प्रयास करें, और सार्थक प्रयास कर पूरी आशा और पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में हम उस विश्व में जी सकेंगे, धरती पर जहाँ स्वर्ग दिखाई देगा, उस स्वर्ग में हम सब सुखी, सानंद, समृद्ध, आत्मीय भाव से जी सकेंगे।
1: जी जी जी।
0: अपनत्व भाव से जी सकेंगे, एक दूसरे के साथ जी सकेंगे।
1: जी। दीदी, आप एक पंक्ति में अपनी संस्था के बारे में कुछ बताइए।
0: एक पंक्ति में यदि संस्था के बारे में कहा जाए तो एक ही देश है मनुष्य का, कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। दूसरा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। संस्था केवल हर व्यक्ति से, हर मनुष्य से यही चाहती है।
1: दीदी आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और साथ ही इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं से साझा की, हमें भी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: रास्ते मुश्किल नहीं, सोच कमजोर होती है। रास्ते मुश्किल नहीं, सोच कमजोर होती है, इरादा मजबूत हो तो मंजिल भी झुकती है।

बहनों, महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में है, मतलब कि कोई ऐसा काम उनसे अछूता नहीं है जिसमें उनकी भूमिका ना रही हो। और सरकार का बहुत बड़ा योगदान है इस काम में। अब जैसे एक और योजना है, विज्ञान ज्योति योजना। यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक समानता लाना है, जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है और लड़कियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और मैथ में शिक्षा और कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम आसपास के सरकारी स्कूलों की छात्राओं को विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रति प्रेरित करेगी और उन्हें जानकारी देगा। और इसका उद्देश्य कक्षा 9 से कक्षा 12 तक मेधावी छात्राओं पर ध्यान केंद्रित करना, विशेष रूप से ग्रामीण और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं पर, ताकि वैज्ञानिक क्षेत्रों में लैंगिक असमानता को कम किया जा सके। यह कार्यक्रम की विशेषता यह भी है कि यह वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है, मतलब प्रमाणित तथ्य के आधार पर समस्या का समाधान करना, कैरियर के अवसरों को बढ़ावा देना, जैसे लड़कियों को जेई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। साथ ही साथ अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाता है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का पूरक माना गया है। बहनों, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम इतना प्रभावशाली साबित हो रहा है कि कक्षा 11वीं और 12वीं में विज्ञान विषय चुनने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी है। गणित और विज्ञान विषय में रुचि बढ़ने के साथ साथ इन विषयों पर समझ बेहतर हुई है। हम देख रहे हैं कि जेई और नीट और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी है। लड़कियों में इंजीनियरिंग, चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में कैरियर बनाने को लेकर और भी ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ा है। तो इस तरह यह योजना महिला उत्थान के लिए प्रभावशाली साबित हो रही है। अब आइए मनोरंजन की तरफ चलते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में प्यारा सा गीत। फिल्म है दो कलियां।

अभी हमने दो कलियां फिल्म का गीत सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। बहनों, इस चिपचिपाहट और उमस भरी गर्मी में स्किन प्रॉब्लम होना तो लाजमी है, जैसे एक्ने की समस्या, पिंपल्स होना और सन टैनिंग। अब ऐसे में हमारी बहनें ना जाने कितने महंगे प्रोडक्ट यूज करती हैं, परंतु एक बार ऐसा प्रोडक्ट आप घर पर बनाकर तो देखिए जो कि सस्ता और आसानी से बनने वाला है, जिसे हम घर पर रखी हुई कुछ चीजों से बना सकते हैं। तो सबसे पहले चावल हम लेंगे, कम से कम 4 चम्मच के लगभग। चावल कोई सा भी चलेगा, मोटा पतला कैसा भी। इन चावल को हम अच्छी तरह से 3 से 4 पानी में धो लेंगे। याद रखिए, इस क्रीम को बनाने के लिए पहले तो सफाई का विशेष ध्यान देना होता है। अब चावल धोकर आधे घंटे के लिए रख दीजिए। आप सोच रही होंगी कि हम चावल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो चावल की तासीर ठंडी होती है, स्किन वाइटनिंग की प्रॉपर्टीज होती है इसमें, इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं चावल के। तो क्रीम बनाने के लिए जो भीगे हुए चावल हैं उन्हें एक पतीले में ज्यादा पानी डालकर धीमी आंच में पका लेते हैं। चावल में पकने के बाद थोड़ा पानी होना चाहिए, थोड़ा ठंडा करके मिक्सर में पीस लीजिए। अब इसमें आप करीब 3 टेबल स्पून कच्चा दूध डालकर मिक्स कर लीजिए। अब सिंगल लेयर वाली चाय छन्नी से चम्मच की सहायता से इस पेस्ट को छान लीजिए। मोटा हिस्सा ऊपर रह जाएगा और महीन क्रीमी हिस्सा नीचे आ जाएगा, जिसकी हमें क्रीम बनानी है। इसमें विटामिन ई की 1 कैप्सूल डालेंगे, फिर 2 टेबल स्पून नारियल तेल, 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, और अगर ऑलिव ऑयल नहीं है आप आलमंड्स ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इन सभी चीजों को चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, तो इस तरह क्रीम बन जाएगी। अब आप इसे 15 से 20 दिनों के लिए एक कांच की एयर टाइट डब्बी में स्टोर करके रख सकती हैं। याद रखिए, इसे फ्रिज में ही रखना है, और जब इस्तेमाल करना होगा थोड़ी देर पहले इसे फ्रिज से बाहर निकाल लीजिए। इस क्रीम को चेहरे ही नहीं बल्कि हाथों में, पैरों में भी यूज कर सकती हैं। हल्के हाथों से इसे लगाकर मसाज करिए, रात के समय लगाकर मसाज करिए, सुबह फिर वॉश कर लीजिए, तो इसका और बढ़िया इफेक्ट दिखेगा और हर तरह की स्किन वाले लोग इसे लगा सकते हैं। इससे स्किन सॉफ्ट और दाग धब्बों से रहित होगी, तो आप इसे ट्राई जरूर करिएगा। अब चलते चलते एक और गीत सुन लें। फिल्म है रामपुर का लक्ष्मण, आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये हमारे आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत बन्ना गीत से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, और आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है, और आज आप सुन रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए कुछ लोकगीत। पेश है परछन गीत, आवाज़ ज्योति तिवारी की।

ज्योति तिवारी के गाए इस सोहर गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रकाश तिवारी के गाए कुछ भजन और गीत।

0: ना किसी के
1: हम न रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे।
2: आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भी आपने सुना काला पानी फिल्म का गीत शब्द रचना थी मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत एस डी बर्मन का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और आज हम और कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म नया दौर से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की और संगीत ओ पी नैयर का।

0: लता मंगेशकर के गाए गाइड फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, मैं पश्चिम बंग दिवस पश्चिम बंगाल के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य और समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। ये दिवस राज्य इतिहास में बना रहेगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अमूल्य भूमिका का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री मनोज खट्टर ने आज इंदौर जिले के सावेर में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की लागत 2935 करोड़ रुपए लंबाई पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा
2: कि आज एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जिसमें मुख्य रूप से दो बड़े शहर मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर, इसका जोड़ने वाला जो एक राष्ट्रीय राजमार्ग है ग्रीनफील्ड मार्ग है, नए मार्ग का कुल लंबाई 40 किलोमीटर से ऊपर जो बनना है, हमारी और की दूरी आने वाले समय में दो नगरों का साझा व्यापार, इसमें शिक्षा, इसमें हमारी चिकित्सा, हमारे के सब विषय बड़े स्तर पर होने वाला है।
1: इसके पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने उज्जैन में कान डायवर्जन क्लोज एक्ट परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। ये परियोजना माँ छिपरा के जल को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर शहर में परीक्षा के लिए कुल 32 केंद्र बनाए गए और निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारकों और वाहन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। परीक्षार्थियों से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुंचने की अपील की गई है। वहीं नर्मदापुरम में परीक्षा और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य शासन ने 21 जून को मनाए जाने वाले योग दिवस के लिए जिलेवार कार्यक्रमों की मुख्य तिथि सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिला विकासखंड पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालय और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। भारत सरकार ने इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी है। आज भोपाल में बड़ा तालाब के बोट क्लब से लेकर टीटी नगर स्टेडियम तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों और नागरिकों ने भाग लेकर स्वस्थ एवं संतुलित जीवन संदेश दिया। मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को इस वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश कर रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ आकाशवाणी के उद्घोषकों द्वारा लिखी गई अनाउंसर्स पुस्तक का विमोचन आज भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगा। प्रधान संपादक उत्तम श्रीवास ने बताया कि इसमें 21 राज्यों के 41 उद्घोषक शामिल हैं। समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक डॉक्टर अमिताभ पांडे होंगे, जबकि अध्यक्षता विविध भारती मुंबई के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक करेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि सामान्य मानसून 15 जून के आसपास करता है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 48 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग 26 जून आने वाले मामले की अनुमति दे दी है।

0: आकाशवाणी में थोड़ी देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार के उत्पादन बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अंतिम एक दिवसीय मन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
2: उड़ीसा के आदिवासी पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहुंच गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो दहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों से बातचीत के उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के देशों में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू 68वें जन्मदिन के मौके पर गाँव में साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब राजनपुर में उड़ीसा सरकार के 2 साल होने के आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उड़ीसा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: मदन सिंह देव जी, प्रगति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश सिंह खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा उड़ीसा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
3: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तो

0: बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री जी में जनता सहकारी बैंक के भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 उत्पादन बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति के समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन पर्याप्त चिकित्सा उचित नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। संबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी होने वाली नीट 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित विदेश के शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 5,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन से विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
2: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और विशेष सत्र का आयोजन आज किया। लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल मनाने की चीज नहीं है बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
3: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बहुत अच्छे की तरह
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
4: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
5: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताज़ा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम अकेले हम अकेले तुम फिल्म के गीत से। आवाज शैली शैलेंद्र की, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत अनु मलिक का है। और पसंद करने वाले हैं आप सब डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से इसे पसंद कर रहे हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। इस गीत की एक पसंद हमें मिली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास, मानिकपुरी दतरंगी से भागवत वर्मा। और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया की। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म अकेले हम अकेले तुम का गीत, आवाज़ शैली शैलेंद्र की।

और कार्यक्रम के अंत में सुनिए दम लगा के हईशा फिल्म का गीत, फिल्म का गीत पपोन की आवाज़ में। शब्द रचना वरुण ग्रोवर की और संगीत अनु मलिक का है। पसंद करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा।

0: अभी आपने सुना पप्पून की आवाज़ में दम लगा के हईशा फिल्म का ये गीत। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पिछले घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर पश्चिम बंगाल के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य और समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इंदौर जिले के सांवेर में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। कॉरिडोर की लागत 2935 करोड़ रुपए, लंबाई 48 किलोमीटर है। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए कुल 32 केंद्र बनाए गए हैं और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। राज्य शासन ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिला विकासखंड और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है और आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर आकाशवाणी के उद्घोषकों द्वारा लिखी गई अनाउंसर्स डायरी पुस्तक का विमोचन आज भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेब पर सभा समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सांतकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुगली पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा दोपहर 3:55 पर। सांतकालीन सभा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:15 पर और रात 8:35 पर। पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ का 6वां भाग आप सुनेंगे शाम 6:00। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण समय है 7:45। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष आप सुनेंगे रात 8:00। 9:30 पर आप सुनेंगे चित्र भारती और रात 10:00 संगीत के अखिल भारती कार्यक्रम में सुनिए विवेक कर्माही का गायन। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय दोपहर के 3:02 हुए हैं। हमारी ये सभा मीडियम वेव पर अब समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम लोक संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए लोकगीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत और आज हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम का अगला गीत परचन गीत, आवाज ज्योति तिवारी की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। कार्यक्रम है सुगम संगीत और अभी आपने सुनी तुलसीदास की रचना आवाज थी प्रकाश तिवारी की। अब सुनिए ब्रह्मानंद की रचना आवाज एक बार फिर प्रकाश तिवारी।

अभी आपने सुनी ब्रह्मानंद की रचना, आवाज थी प्रकाश तिवारी की। आइए अब सुनते हैं प्रकाश तिवारी की आवाज में एक गीत, शब्द रचना नीरज की।

प्रकाश तिवारी जी के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म जो जीता वही सिकंदर के गीत से। आवाज उदित नारायण और साधना सरगम की, शब्द रचना मजरू की और संगीत जतिन ललित का।

जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में। गीत लिखा था मजरू ने और संगीत जतिन ललित का था। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म आशिकी से, आवाज़ कुमार सानू और अनुराधा पोटवाल की। गीत लिखा है रानी मलिक ने और संगीत नदीम श्रवण का है।

अभी आपने सुना कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में आशिकी फिल्म का गीत। शब्द रचना थी रानी मलिक की और संगीत नदीम श्रवण का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए अब सुनते हैं परदेश फिल्म का गीत, हरिहरन कविता कृष्णमूर्ति आदित्य नारायण शंकर महादेवन की आवाज़ में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत नदीम श्रवण का है।

परदेश। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, आदित्य नारायण, शंकर महादेवन की आवाज में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत नदीम श्रवण का। आकाश

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए रोजा फिल्म का गीत हरिहरन की आवाज में। शब्द रचना है पीके मिश्रा की और संगीत ए आर रहमान का।

रोजा फिल्म का गीत शब्द मान का। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुगली पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण अब आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव जोशना श्रीवास्तव।
1: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया। The resolve to make the country a Viksit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world-class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day, because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of

0: will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
1: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी और उससे ज़्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपये देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
0: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, टू मेक द इनकम्स ऑफ द फार्मर्स गो डबल एंड ट्रिपल, when the country develops, we have to take care of every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution. We have to take everyone along. And today's event

0: कम ट्रू।
1: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुविंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
0: Absolutely, to see these ministers that the people are waiting for and the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow, he had made a promise, and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that, yes, we are on a mission mode. We as a country, as a people, we are going towards the fact that we have to make this country developed. We have to make a Viksit Bharat till 2047. That's exactly the aim of the Honorable Prime Minister. More than 1 crore farmers are expected to connect to the main event via video conferencing at the Krishi Vigyan Kendra as the KVK's ICAR institutes and universities, farmer producer organizations, agriculture mandis, PM Kisan Samriddhi Kendras, Prime Minister, Primary Agricultural Cooperative Society and State District Gram Panchayat level, village level functions. With the release of the 23rd installment, the total disbursement under the scheme will exceed 4.4 lakh crore since its inception on the 24th of February 2019. Siddharth, we have to agree to the fact that yes, everything that might be happening around the globe, this promise never loses its importance.
1: बिल्कुल, तो अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इससे पहले हम सुन लेते हैं अंग्रेजी में समाचार।

0: 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है। ये 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
1: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट, दीज वर द वर्ड्स ऑफ दिस ग्रेट मैन हु गेव विजन टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल दैट यस, we as part of India have to make India a Soni ki chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion, wherein we remember all those great years during the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास, राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
1: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, and this will be a government, which will be a government of double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise, we see many promises together. We see an actual execution of the digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity and limited credit flow. Imagine, we are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers, it's not just the money that is going to the farmers, it is also

0: fertilizers. It is also the good quality of seeds. It is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है। और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा। 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है? प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एग्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी। तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट।
0: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी। एंड आई वांट टू से दैट इट वोंट जस्ट बी द प्रोक्योरमेंट ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन इन अ वेरी स्मूथ एंड अ वेरी फंक्शनल वे, बट द होल लाइन ऑफ क्रेडिट. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government, and that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Vikasit Bharat.
1: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है। और एक सरकार की एक जो नई पहल है, देश में जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको ख़त्म किया जा रहा है ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके। आप ऐसा सोचिए कि वैभव, किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है, उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज़्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इससे जोड़ें, ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए, और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में, जहां जहां किसानों को, चाहे हम किसान की सॉइल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो। आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से, आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, द वर्ड दैट यू हैड यूज्ड दिस वर्ड अर्लियर एज वेल, व्हिच इज सशक्त बनाना, that is to make the farmer brothers and sisters empowered. How do you make them empowered exactly? That is the question, and that was probably the question in the mind of the Honorable Prime Minister when he had introduced the Digital India Mission. Because imagine a farmer sitting in one corner of a village somewhere, completely disconnected what is going on in the world, but he knows and he trusts the government, and then he realizes that now is a scheme wherein he will be getting a direct transfer. What happens? You go and you get a mobile phone. If you do not have a mobile phone, or if you do have a mobile phone, you learn how to get those applications. That is a new chapter, a new phase in the lives of those farmers. You do not have to depend on anyone else. Now you are self-empowered, you are self-reliant. Aap atmanirbhar hain ki aap swayam wo faisla le paaye, aap swayam us device se. Using that mobile phone, you can do whatever you wish to. You can get that direct transfer, you can check your bank account, you can be a part of the Digital India Mission. You can be a part of the banking system, of the financial system. You can get all those benefits together. And how exactly does that help you? It helps you to be a farmer of the 21st century. It helps you to biodiversify. It helps you to not just get stuck in the rut like the farmers of the yesteryear governments who were just stuck because they did not have the credit support. They did not have the support of the raw materials. They did not have the support of logistics. Imagine the kind of work that is being done through infrastructure, through the line of credit, through raw materials, through credit providing to the farmers. Drone Didi ka apne zikr kiya. How important is that for women now who are earning lakhs and lakhs through a technology that was not even visible a few decades back? What is this drone? What is this thing flying in the air?
1: Even is tarah ki jo takniki hai Vaibhav, aaj se ek dik, jaisa ki tumne kaha ki ek dashak pehle is tarah ki parikalpana bhi aap nahi kar sakte the ki iske madhyam se aap kuch kar sakte ho. Aur digital, jaisa ki aaj PM Kisan ke tahat desh bhar ke 9 crore 44 lakh se adhik kisanon ke khaton mein jo paise pahunchne wale hain 18,880 करोड़ रुपए, तो ये भी डिजिटल होता जा रहा है. और इस बीच हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं.

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाज़ें उनको अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: The Honourable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, and the Chief Minister of West Bengal, Sri Suvendu Adhikari, people craning their necks. Now, the national anthem and the national song.

राष्ट्रीय मूल्य, इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं, हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, किससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर

उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है हम संकल्प लें अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालत हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही लटकाया गया आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है।

अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन, और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट माने शेष काज शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी, गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के 4 जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार,
और जारगाम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थाम्बे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें, और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि
यहां से जो संदेश

0: जाएगा, उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो, आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने। इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं, तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 5:33 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लक से। सलीम मर्चेंट की आवाज़, शब्बीर अहमद के लिखे बोल और संगीत है सलीम सुलेमान का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म विवाह से। उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ें हैं। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

जावेद अख्तर का लिखा यह गीत आप सुन रहे थे फिल्म दिल चाहता है से। आवाज़ें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। संगीत था शंकर एहसान लॉय का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में। गुलजार की शब्द रचना, शंकर एहसान लॉय का संगीत और फिल्म का नाम है बंटी और बबली।

श्रोताओं, फिल्म बंटी और बबली के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस अंतराल के बाद।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
8: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। 9,44,00,000 से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के रायरंगपुर जिले के दांडबोस में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक भव्य सार्वजनिक समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर ओडिशा की जनता के लिए 47,600 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया।

0: भगोरिया नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, शाम के 6 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। नमस्कार श्रोताओं, फिल्म संगीत लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और बारिश के मौसम की तो बात ही निराली है दोस्तों, है ना। श्रोताओं, बारिश लगभग हर जिले में पहुंच चुकी है और जहां नहीं पहुंची है वहां भी बस पहुंचने ही वाली है। तो श्रोताओं, क्यों न इस बारिश के मौसम का लुत्फ उठाया जाए और सेलिब्रेट किया जाए इस त्यौहार को। तो आइए, इसी उपलक्ष्य में हम सुनते हैं ये गीत जो हमने लिया है फिल्म लगान से।

उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, शान, किशोरी गोवारीकर और साथियों की आवाज़ में ये गीत आपने सुना फिल्म लगान से। जावेद अख्तर के लिखे बोल और संगीत था एआर रहमान का। श्रोताओं, आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गुरु से। श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की आवाज़ें हैं। गुलजार की शब्द रचना और संगीतबद्ध किया है एआर रहमान ने।

फिल्म बाघी का गीत अभी आप सुन रहे थे मीत ब्रोज और मोनाली ठाकुर की आवाज़ों में। कुमार के लिखे बोलों को संगीत दिया था मीत ब्रोज ने। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म नमक हलाल से। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, अनजान के लिखे बोल और बप्पी लहरी का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म चुपके चुपके से, आनंद बख्शी के बोल और एस डी बर्मन का संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए अब ये अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म छलिया से। मुकेश की आवाज़, बोल लिखे हैं कमर जलालाबादी ने और संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

संतोष आनंद का लिखा गीत सुनिए फिल्म प्यासा सावन से। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ें हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म मंजिल का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। योगेश के लिखे इस गीत को संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवाते हैं ये गीत फिल्म अजनबी से। आनंद बख्शी के लिखे बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, और इस गीत में आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

चलती का नाम गाड़ी। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। मजरू के लिखे इस गीत को संगीत दिया SD बर्मन ने। श्रोताओं, फिल्म संगीत का अगला गीत आइए अब सुनते हैं। यह है फिल्म लोफर से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत हम सुनेंगे, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: श्रोता, मोहम्मद रफ़ी के गाए ऐसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी भोपाल।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर
1: पर पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों ने योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सामान्य योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे से शुरू होगा। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथूला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। जत्थे में 2 संपर्क अधिकारियों और 1 चिकित्सा अधिकारी सहित 41 तीर्थयात्री और 4 सहायक कर्मचारी शामिल हैं, जिससे इस दल की कुल संख्या 47 हो गई है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 123 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और इस समय होता है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं, आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं के लिए दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा। 7:45 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। रात्रि 8 सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:35 पर। कार्यक्रम चित्र भारती का प्रसारण 9:30 पर किया जाएगा और संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विवेक करमाहे का ठुमरी और दादरा गायन रात्रि 10:00। श्रोताओं, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल यानी रविवार 21 जून 2020

2026 को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, कल सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। सुबह 11:40 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 7:20 और सुबह 10:30 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का आनंद आप लेंगे सुबह 8:30 पर। सुगम संगीत के अंतर्गत 9:15 पर आप सुनेंगे अनीता यादव के गाए बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर सुनिए सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण। सुबह 10:05 पर सुनिए कार्यक्रम सामुदायिक गायन शिक्षण पाठ। श्रोताओं, सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत किया जाएगा।

फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने का प्रसारण सुबह 11 बजे किया जाएगा। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी का तीसरा भाग आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1 बजे सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी के योगदान से प्रसारित किए जाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 12:15, दोपहर 2 बजे, शाम 5:33 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की होगी। शाम 6 बजे आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग विशेषज्ञ सपना अग्रवाल से सुनीता सिंह की बातचीत और शाम 6:30 से आप सुनेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य मैनचेस्टर में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। और रात्रि 8 बजे सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष वन्य जीवन। श्रोताओं, ये थे कल यानी 21 जून 2026 रविवार को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7:10 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ
2: जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: TLI है ना,
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सूनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने 9,44,00,000 से किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। इंदौर में 2,935 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का हुआ भूमि पूजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में होंगी शामिल। और भोपाल इंदौर समेत 38 जिलों में आंधी गरज चमक और बारिश के का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान

0: सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। 9,44,00,000 से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बार पश्चिम बंगाल दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज भाजपा सरकार में विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है।
1: सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है, बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरांग में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी आबादी द्वारा दशकों से झेली जा रही अभावग्रस्तता की जगह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका और सामाजिक उन्नति के नए अवसर मिल रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इंदौर जिले के सावेर में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। कॉरिडोर की लागत 2,935 करोड़ रुपए, लंबाई 48 किलोमीटर है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकास का पर्याय बनेगा, इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों को व्यापक लाभ मिलेगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना से मेट्रोपोलिटन रीजन के विकास को भी नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हित के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में दूध, फल और सब्जियां लेकर मोटरसाइकिल से परिवहन करने वाले किसानों के लिए हेलमेट वितरण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
2: मोटरसाइकिल से दूध, फल, सब्जी लेकर के गांव से जो किसान निकलते हैं, उनकी जिंदगी की कीमत भी होना चाहिए, इसलिए हमने अभियान चालू करने का निर्णय लिया है। क्या हम हेलमेट का अभियान चलाएंगे? हेलमेट से व्यक्ति की जान भी सुरक्षित रहती है। प्रतीकात्मक रूप से इंदौर प्रशासन द्वारा कुछ हेलमेट वितरण का कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा, ताकि हमारे लोगों की जान भी बचे। सुना चाहिए कि उनका आशीर्वाद माननीय मोदी जी के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा।
0: इसके पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने उज्जैन में कान्हा डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। यह परियोजना माँ छिप्रा के जल को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन के बाड़ी में आयोजित प्रदेश स्तरीय जन कल्याण शिविर में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। श्री चौहान ने भोजपुर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 31 नई ग्रामीण सड़कों को मंजूरी दी। साथ ही उन्होंने राज्य के किसानों के लिए मूंग खरीदी की औपचारिक स्वीकृति और कम बारिश की आशंका के मद्देनजर केंद्र व राज्य सरकार के साझा कंटिजेंसी प्लान का ऐलान किया।
3: भारत सरकार से मूंग खरीदी की अनुमति मांगी है और आज ही बाड़ी की इस पवित्र धरती से मूंग खरीदी की स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार को दी जाएगी, ताकि किसान भाई अपने मूंग को बेच सकें। यह मूंग अपनी तीसरी फसल है और इसलिए मूंग किसान की मेहनत है, उस मेहनत के पूरे दाम दिए जाएंगे, किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी।
0: नीट यूजी पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसी विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। परीक्षार्थियों से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुंचने की अपील की गई है। जबलपुर जिले में परीक्षा के लिए 23 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10,426 परीक्षार्थी शामिल होंगे। समाचारों में अब वक्त एक छोटे से विराम का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों पुनः स्वागत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। यह विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। समारोह सदर के गैरिसन ग्राउंड में सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा। योग दिवस कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह मुख्य अतिथि होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने गरीबों किसानों महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में जानकारी देंगे।
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है।
0: केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सकीय औचित्य नहीं और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग दर्द निवारण ऐंठन और कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। प्रदेश में मानसून 25 जून के आसपास प्रवेश कर सकता है। फिलहाल प्री मानसून गतिविधियों के चलते मौसम में बदलाव बना हुआ है और आज भोपाल इंदौर समेत कई जिलों में आंधी गरज चमक और बारिश होने के समाचार मिले हैं। मौसम विभाग ने आज सीहोर और आगरमालवा जिले समेत 38 जिलों में आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। वहीं रीवा सतना मऊगंज स्थिति सिंगरौली मैयर उमरिया शहडोल नीमच मंदसौर रतलाम उज्जैन झाबुआ अलीराजपुर बड़वानी धार और खरगोन जिलों में तेज धूप और उमस बने रहने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में नृत्य गायन और वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जा रहा है। शहडोल जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर बीते 2 दिनों में 3 लोगों की मौत हो गई है। झाबुआ में 5 और 15 वर्ष की आयु वाले बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए स्कूलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। आगरमालवा में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कल मास्टर वॉलंटियर्स को जिला स्तरीय नशा मुक्ति जन जागरूकता प्रशिक्षण दिया गया और झाबुआ कलेक्टर ने जिले में खुले और अनुपयोगी बोरवेलों से बच्चों और पशुओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनन वारे सभी किसान भैया बहनन का बिजलता बहन की दुई हाथ जोड़ के ने भरी राम राम। और हमारे जो है फुल बगिया कार्यक्रम सुनवे बारे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी जीजी की तरफ से खूब ही खूब लाड़ प्यार। काहे कि आज है शनिवार, तो शनिवार को उनको मन पसंद कार्यक्रम आते हैं फुल बगिया। तो अपने प्यारे प्यारे बच्चे नन्हे मुन्ने से तो चर्चा बाद में करें हैं, पहले अपने किसान भैया से चर्चा करते हैं रोजाना की तरह। तो भैया हरो, आप सभी को जो है स्वागत है चौपाल कार्यक्रम में। और भैया हरो, आज विश्व जो है शरणार्थी दिवस है, जो कि हर वर्ष 20 जून को मनाया जाते हैं, यानी कि आज के ही दिन। और इसे विश्व रिफ्यूजी दिवस के नाम से भी जानो सो जाते हैं। भैया हरो, विश्व शरणार्थी दिवस हमें मानवता, दया और सहयोग का महत्व सिखाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, हर आदमी को सुरक्षित और सम्मानजनक जीने को अधिकार है। हमें शरणार्थी के प्रति सहानुभूति रखनी है और उनकी सहायता के लिए महत्वपूर्ण तत्व होवे जरूरी है। भैया हरो, यह दिवस उन लाखों लोगों के सम्मान में जो है मनाया जाता है जो युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न, मानव अधिकारों के उल्लंघन या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपना घर और देश छोड़कर मजबूर होते हैं। ऐसे लोगों को ही शरणार्थी यानी रिफ्यूजी कहते हैं। इसे पहली बार भैया हरो 2001 में मनाया गया था। अब कछु भैया सोच रहे होंगे कि शरणार्थी कौन होते हैं। तो भैया हरो, शरणार्थी वे लोग होते हैं जो अपने देश में युद्ध, हिंसा, धार्मिक या राजनीतिक उत्पीड़न तथा अन्य गंभीर खतरों के कारण सुरक्षित जीवन नहीं जी पा रहे हैं। जब ही तो वे दूसरे देशों में शरण जाके लेते हैं। और भैया हरो, यह दिवस मानवता और करुणा का संदेश भी देता है। यह शरणार्थियों की कठिन परिस्थितियों को समझने में जो है सहायता करता है। सरकार और सामाजिक संगठनों को उनकी मदद और सहायता के लिए प्रेरित भी करता है। और भैया हरो, शरणार्थियों को जो है जैसे भोजन पानी की समस्या, खाने पहनने की कमी और शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, रोजगार अवसरों की कमी, सामाजिक भेदभाव, तो भैया हरो इनकी जो है कमियों को दूर करवे के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जैसे कि सेमिनार और रैलियों का आयोजन करना, उनके द्वारा जैसे धन और संसाधन जुटाए जा रहे हैं, तो उनको सभी तरह की जो है सुख सुविधाएं देवे को जो है प्रावधान है, मदद भी दी जा रही है। तो भैया हरो, ये तो चर्चा भई अपनी विश्व रिफ्यूजी दिवस पर यानी विश्व शरणार्थी दिवस पर। और अब भैया हरो, जैसे अब देखो मौसम तो अच्छो है ही रहे, आप और देख ही रहे, समझ ही रहे हैं कि मौसम कितने जो है काहे कि अब तो मानसून आ ही गए हैं। तो हम तो जे ही सभी किसान भैया काहे कि वो भी तैयार बैठे हुई हैं अपने खेतन की तैयारी करके, और देखो शासन भी सभी प्रकार से उनको सहायता मदद कर रही है, हारी बीमारी में भी मदद कर रही है। तो भारत सरकार द्वारा जो है अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं और उनको लाभ भी जनता को मिल रहा है कि नहीं। और इनसे कहा है कि कई तरह की जैसे समस्याओं में कमी आ रही है। पहले कहा है कि व्यक्ति अनेक समस्याओं में जो उलझा रहता था और ना समय पे कौन काम कर पातो और ना कई दिक्कतें लगी रहती थी, हारी बीमारी ही उन्हें लगी रहती, ना ही अच्छे से अपनों इलाज करा पातो। तो ये सभी बातों को जो है ध्यान में रख कर भाई जो है भारत सरकार ने एक ऐसी योजना

योजना जो है चलाई गई है वो है आयुष्मान भारत योजना। वो है ये एक सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है। और भैया हरो जाको जो है उद्देश्य भी, मुख्य उद्देश्य जो है कम जैसे आय वाले हैं लोगों के, जैसे स्वास्थ्य बीमा कवरेज तक मुफ्त जो है पहुंच प्रदान होवे, जैसे जो कि। और भैया हरो जाको 1 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में जाकर लागू करोगा हतो। तो स्वास्थ्य है जीवन का सार, स्वास्थ्य है जीवन का सार, इसके बिना है सब बेकार। तो बिल्कुल बात सांची है भैया। और भैया हरो इसकी जो है शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से जो है स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के उद्घाटन में जो है करी गई थी। और ई के मुख्य दो घटक हैं भैया हरो, स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र, और भैया हरो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। और ई के अंतर्गत जैसे 1.5 लाख स्वास्थ्य लगभग कल्याण केंद्र खोले गए हैं, और जिनमें जैसे मातृ स्वास्थ्य सेवाएं, नवजात शिशु सेवाएं और बुजुर्गों के लिए चिकित्सा सुविधाएं देने की भी सुविधाएं बताई जा रही हैं। और लगभग यह है 1200 करोड़ भैया हरो रुपए आवंटित करे गए हैं। तो आयुष्मान भारत योजना बहुत ही कारगर योजना है और भारत सरकार की ऐतिहासिक पहल है। और यह कमजोर वर्ग के जो गरीब परिवार के लोग हैं, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक ठाक नहीं है, उसी कारण अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभान्वित और आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है अपना गंभीर से गंभीर बीमारी को इलाज करा सकते हैं। चाहे देखो कितने को बड़ी बीमारी हो गए, जैसे कि कैंसर है, हृदय रोग है, या जो है किडनी को बदलना आदि जो है भैया हरो। तो भैया जो तो चर्चा थी अपनी आयुष्मान भारत योजना पर, और भैया हरो अब चलत हैं अपने नन्हे मुन्ने की ओर, काय के बेबी अपनी फुलबगिया कार्यक्रम को इंतजार बेसब्री से कर रही हुई हैं। तो परवा से पहले लेते हैं तनिक विराम।

तो फुलबगिया कार्यक्रम सुनवे बारे हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को जीजी की तरफ से खूब ही खूब लाड़ दुलार और प्यार भरा नमस्ते। बेटा हरो चुन्नू मुन्नू सीला गुड़िया कुसुम आप सभी लोगों की जो है देखो आप लोग सभी की दिनचर्या ठीक ठाक चल रही हुई है, चल रही है कि नहीं। अब आप लोगों की पढ़ाई लिखाई है और भैया देखो बच्चों समय पर हो रही है कि नहीं। काहे कि देखो बच्चों विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का होना बहुत ही ज़रूरी है और महत्वपूर्ण भी है। और जो बच्चे देखो अनुशासन का पालन करते हैं भी आगे चलकर बहुत ही तरक्की के शिखर पर पहुंचते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जिज्जी अनुशासन का पालन का होते है? तो बच्चों देखो अनुशासन का अर्थ है सभी कार्यों को समय पर करना, जैसे कि समय पर उठना सुबह जल्दी और नियमों का पालन करना, स्कूल जाना समय पर, पढ़ाई लिखाई करना है समय पर, जो है गृह कार्यों को पूरा करना और समय पर नहाना धोना खाना सोना और अपने शिक्षकों का जैसे अपने गुरुओं का

आदर करना, अपने माता पिता को प्रणाम करना, बड़ों की सीख मानना, समय पर ध्यान करना, प्रार्थना करना और बच्चों के जो साथ अपने जैसे मित्र हैं उनके साथ प्रेम भाव रखना, अच्छी बातों को ग्रहण करना। तो बच्चों, इनसे सीखना अपने मन के जैसे विचारों को सही और ईमानदारी से पूरा काम करना, अच्छे मित्रों की जो है संगति करना, जीवन में आलसी ना बनना और ना होना। जो बच्चे जैसे आलस करते हैं, अपने माता पिता और शिक्षकों की बात नहीं मानते, असत्य बोलते हैं, हैं वे हमेशा पीछे रहते हैं और जीवन में कभी भी जो है सफलता नहीं प्राप्त करते। और कोई भी जैसे उनको प्यार भी नहीं करते ऐसे बच्चों को। और जो बच्चे अच्छे अपने बड़ों का, माता पिता का आदर सम्मान करते हैं, उनकी कही हुई बात को ग्रहण करती हैं, मानते हैं, उन्हें सभी प्यार करते हैं और ऐसे बच्चे खूब ही तरक्की करते हैं और ऊंचे ऊंचे पदों पर जाते हैं, हैं आगे बढ़ते हैं, अनुशासन से रहते हैं, समय का पालन करते हैं, सभी कार्यों को समय पर पूरा करते हैं। ऐसे बच्चे कभी भी जैसे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो उनमें घबराते नहीं हैं, कितनी भी जैसे मुश्किलें हों उनका सामना आसानी से करते हैं। और जब ही तो बच्चों देखो, अनुशासन जीवन जीने का आधार है जो हमें लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करता है, आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है बच्चों। और बेटा हरो देखो, तनाव और भटकाव को कम करता है और बेटा हरो हमें जैसे गलत रास्ते से बचाता है, नैतिक मूल्यों में संतुलन बनाए रखता है। जो भी अपनी जैसे गलत रास्ते पे जैसे उन नैतिक मूल्यों का भी जो है संतुलन तो बनाता ही है और भी जैसे शांति बनाए रखता है, ज्ञान जैसे ज्ञान सभी हमें जैसे इसी से प्राप्त होता है। तो बच्चों, इसी बात पर अब आपको जो सुनवाते हैं प्यारो सो गीत, ज्ञान का दान फिल्म अपने अपने से।

0: हाँ तो बच्चों देखो, गीत के बाद हम पुनः हाजिर हैं अपने फूल बगिया कार्यक्रम में। तो बच्चों देखो, गीत जो है आप और अन्य जरूर पसंद आ हुई है, क्योंकि देखो आप लोगों ने सुना होगा कि जो कहावत अपने बड़े बुजुर्गों से, माता पिता से, कि पहलो सुख निरोगी काया और करें योग रहें निरोग। तो बच्चों बात भी बिल्कुल साँची है कि नहीं? और अभी जैसे अपनी चर्चा भी हो रही थी कि समय पर जो है सब काम करना, अनुशासन का पालन। तो बच्चों यदि अपन का स्वस्थ और निरोग रहना है तो जीवन में योग भी बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। तो इसी बात पे बच्चों अधिक जानकारी के लिए सुनवा रहे हैं जो वार्ता। वार्ता है हमारी बच्चों के जीवन में योग का महत्व। तो वार्ताकार हैं श्रीमती माधवी माहौलिया। तो आओ बच्चों सुनते हैं जो वार्ता।
1: बाल अवस्था मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। यही वह समय होता है जब व्यक्तित्व, सोच, आदतें और चरित्र का निर्माण होता है। इस दौरान शरीर और मन दोनों तीव्र गति से विकसित होते हैं। ऐसे में यदि बच्चे योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो न केवल वे शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक एकाग्र, शांत और आत्मविश्वासी बन सकते हैं। योग बच्चों के जीवन को संतुलित, अनुशासित और उन्नत बनाने का श्रेष्ठ माध्यम है। योग सिर्फ वयस्कों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी उतना ही जरूरी है। यह एक प्राचीन भारतीय विद्या है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना। योग आत्मा और परमात्मा का, शरीर और मन का, विचार और कर्म का एक समन्वय है। यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक, मानसिक और नैतिक जीवन पद्धति है। आज के बच्चे कई प्रकार से मानसिक तनाव, परीक्षा का दबाव, प्रतियोगिताओं की दौड़, सोशल मीडिया का आकर्षण और जीवन की असंतुलित दिनचर्या से घिरा हुआ है, जिसके कारण न केवल उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है बल्कि एकाग्रता, नींद और निर्णय लेने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है। योग इस स्थिति में अमृत के समान कार्य करता है। योग के नियमित अभ्यास से शरीर लचीला, चुस्त, मजबूत बनता है, जिससे थकान, मोटापा, पीठ दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याएं दूर रहती हैं। बच्चे लंबे समय तक पढ़ाई कर पाते हैं बिना थके। योग विशेष रूप से प्राणायाम, ध्यान के माध्यम से मन को शांत करता है। यह चिंता, अवसाद और मानसिक दबाव को कम करता है जिससे बच्चे अधिक स्थिर और सकारात्मक सोच रख पाते हैं। पढ़ाई में सबसे जरूरी है एकाग्रता। योग से मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है और विचारों की चंचलता घटती है। इससे याद रखने की क्षमता और समझने की क्षमता बढ़ती है। योग केवल शरीर को ही नहीं जीवन शैली को भी अनुशासित करता है। इसका अभ्यास करने वाला बच्चा नियमित दिनचर्या, समय का सदुपयोग और संयमित जीवन जीना सीखता है। इसके अलावा योग से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है जिससे वह कम बीमार पड़ते हैं। पर्याप्त और गहरी नींद सभी बच्चों के लिए आवश्यक है। योग विशेष रूप से शवासन और अनुलोम विलोम नींद को बेहतर बनाते हैं। योग आत्मचिंतन और आत्मविकास की भावनाओं को जन्म देता है। बच्चे दूसरों से ईर्ष्या या हीन भावनाओं के बजाय स्वयं को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। योग से शरीर और मन मजबूत होते हैं जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। कठिन समय में भी बच्चे धैर्य और संतुलन बनाए रखते हैं। योग के कुछ उपयोगी आसन ताड़ासन, जिसमें बच्चे सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को ऊपर की ओर खींचें और एड़ियों को उठाएं। इससे बच्चों के कद में बढ़ने में सहायता होती है और शरीर को संतुलित करता है। वृक्षासन, इसमें बच्चे एक पैर को उठा के दूसरे पैर की जांघ पे रखें और हाथों को जोड़कर सिर के ऊपर ले जाएं। इससे बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है और वह संतुलन बनाना सीखते हैं। भुजंग आसन, भुजंग आसन में बच्चे पेट के बल लेट जाएं और हाथों की मदद से ऊपरी शरीर को ऊपर उठाएं। इससे बच्चों की रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है और पीठ दर्द में भी राहत मिलता है। बालासन, यह बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा आसन होता है। घुटनों के बल बैठ करके झुक जाएं और माथे को जमीन पर लगाएं। इससे मन शांत रहता है और थकान दूर होती है। बटरफ्लाई आसन, पैरों के तलवे को मिलाकर बैठ जाएं और घुटनों को पंखों की तरह ऊपर नीचे हिलाएं। इससे जांघों की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और पाचन में यह सहायक होता है। इसी के साथ हम कई और प्राणायाम और कई आसन होते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें हम एक नाक से सांस लेते हैं और दूसरी से छोड़ते हैं और फिर यही क्रिया दोहराते हैं। इससे हमारे और बच्चों के भी फेफड़े मजबूत होते हैं, एकाग्रता और मन को शांति मिलती है। पद्मासन, यह प्रसिद्ध ध्यान की मुद्रा है, जिसमें पैरों को मोड़कर कमल की तरह बैठते हैं। वज्रासन, इसे डायमंड पोज भी कहा जाता है। इसमें घुटनों के बल बैठा जाता है। सुखासन, नाम की तरह ही सुख देने वाला, यह एक सरल बैठकर करने वाला आसन है, जिसमें पैरों को क्रॉस करके बैठा जाता है। शवासन, इसे शव मुद्रा भी कहा जाता है, जिसमें पीठ के बल लेटकर शरीर को पूरी तरह से आराम दिया जाता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण आसन हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार, जो कि 12 आसनों का एक क्रम है, और शीर्षासन, जिसमें सिर के बल खड़े हुआ जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि योग आसनों का अभ्यास किसी योग्य शिक्षक के माध्यम से या उनके मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, खासकर शुरुआती तौर पे। आज के समय में योग का महत्व और भी बढ़ गया है, जब टेक्नोलॉजी के कारण बच्चे घंटों मोबाइल में, लैपटॉप में और टीवी के सामने बैठते हैं, तो योग ही एक ऐसा माध्यम है जो उन्हें पुनः सक्रिय, ऊर्जावान और मानसिक रूप से स्वस्थ बना सकता है। विद्यालय में योग शिक्षा को अनिवार्य बनाना इसी दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है। हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह दिन बच्चों को प्रेरणा देता है कि वह योग को केवल एक दिन की गतिविधि ना मान के अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। स्कूलों, कॉलेजों में योग शिविर और प्रतियोगिताओं के माध्यम से योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। यदि बचपन में ही योग की आदत डाली जाए तो वह जीवन भर के लिए वरदान की तरह साथ देता है। योग बच्चों के जीवन के लिए एक अमूल्य उपहार है। ये ना केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक विकास, आत्मनियंत्रण, एकाग्रता, अनुशासन और सकारात्मक सोच को भी बढ़ावा देता है। जब बच्चे योग को अपनाते हैं तो वह ना केवल अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, बल्कि एक संतुलित, नैतिक और सफल जीवन की नींव भी रखते हैं। प्रत्येक बच्चे को चाहिए कि वह प्रतिदिन योग का अभ्यास करें, अपने जीवन को सुंदर, सशक्त और सफल बनाएं।
0: हाँ तो बच्चों, देखो अभी अपन ने सुनी थी वार्ता। वार्ता थी बच्चों के जीवन में योग का महत्व। तो जानकारी दे रही थी श्रीमती माधवी माहौलिया। तो बच्चों देखो, कितेक नौनी वार्ता आप और ने सुनी थी। और देखो, कल 21 जून है और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाएगा, हैं। और बच्चों देखो, अब आप लोगों को बात बताएं कि पशु पक्षी, पालतू जानवर कितेक प्यारे लगते हैं कि नहीं। और ये लगते हैं कि इनके साथ खेलें, कूदें, प्यार करें, तो इसी बात पर सुनते हैं बच्चों जो प्यारो सो गीत।

तो बच्चों कितना आनंद आओ है ढक्का लगाने में, और खूब ही आनंद के साथ देखो, ऐसे ही देखो अपने जीवन में, हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए, खूब खेलना, खूब कूदना, खूब स्वस्थ रहना, निरोग रहना, और योग करना, और खूब सब बड़ों की बात मानना, और पढ़ाई लिखाई भी करना। तो बच्चों देखो आप और इनको जो है फुलबगिया कार्यक्रम कितने अच्छो लगो हुई है। तो अब इसी बात पे देखो अब लेते हैं आप औरन से विदा और अपने किसान भैयन की ओर चलते हैं। तो अब जीजी की तरफ से खूब ही खूब लाड़ दुलार और नमस्ते।

हाँ भैया यारो, देखो हमें पता है कि आप और हैं चौपाल कार्यक्रम में, हम और इंतज़ार कर रहे हुई हैं कि बहन अब कब तक आए। तो देखो हम हो रहे हैं तो हमेशा चौपाल कार्यक्रम आप किसान भैया के लिए नहीं तो लेके आते हैं, आते के नहीं, सभी प्रकार की जो है योजनाएं सुनाते हैं, सभी प्रकार की जो है चर्चा भी करते हैं आप औरन से। अब भैया आज तो आप और खूब ही खुश हो हैं, काय माला माल हो गए हो। काहे कि देखो किसान सम्मानीय 23वीं किस्त भी आ गई है। तो आज तो खूब खुशी के साथ जो है खूब ही पकवान बन रहे हुए। तो देखो काहे के भैया आरो, हम तो चौपाल कार्यक्रम इसी तरह आप और सुनत रहिए, आनंद लेते रहिए सभी प्रकार की। और अब भैया देखो सभी स्रोतन से लेते हैं विदा, काहे कि चलवे की हो रही है बेरा। और भौजी भी इंतजार कर रही हूँ, इसका संजय बिहारी को समय है गवे। और देखो हार केतन से भी आए हुई हैं भैया हमारे। तो सभी भैयन को हम तो जय कहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ और निरोग रहें भैया हरो, और जय प्रकार से मस्त रहें। तो अब अपनी बहन विजयलता को दियो इजाज़त, सभी भैयन को राम राम, जय जवान जय किसान।

0: आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और

0: गरीब युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां, तो इन चारों जो वर्ग है उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये चार वर्ग है, इनको सशक्त करके कैसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम।
1: थैंक यू सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है, सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।
1: सोनू जी देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का, जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा, तो उसमें देखिए 2-3 चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो 2 चीजें सुलभ हुई हैं महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई। खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
0: जी।
1: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं बुनते, आप स्वेटर भी बुनते, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा, मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई है
0: जी।
1: तो इस तरह की जो योजना है। और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही हैं, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किश्तों पर, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेके पीजी तक बच्चियां जो हैं वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा। जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं।

0: ये बहुत इंपॉर्टेंट सशक्तिकरण का
1: ये बहुत
0: है।
1: हाँ, सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए, आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है, 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
0: बिल्कुल,
1: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात उन महिलाओं की जो कि अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करते, अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि एनडीए खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं। तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना, उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिजेंट में लेडी नहीं लीड करती,
0: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो जाता।
1: अब आप देखिए, अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है। तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है, जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती है, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं एलपीजी, तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर किया, और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
0: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है, फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की, कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, सो जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने, और जिस तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलुओं को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजंस जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं।
2: देखिए, सबसे बड़ी बात यह है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
0: जी।
2: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
0: जी।
2: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है, और सबके अपने अपने खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर की ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, आईटी से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं, तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर MBBS के देख लें तो 55,000-56,000 की होती थी, 140 करोड़ के देश में केवल 56,000 MBBS आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32,000 के आसपास थी, वो लगभग 65-70,000 हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई हैं। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, MBBS कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी हैं, तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास थी आजादी के बाद, 2014 तक खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सीटें जो है MBBS की वो 50,000 और बढ़ने वाली है। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके लिए है। ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो है वो ओपन स्कूलिंग करते थे, ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई है, वो डबल हो गई है, ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा, जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कंपटीशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था
0: और ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया।

0: जैसे आयोजनों के
1: खेलो इंडिया, वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उन पे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लायक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं, वो सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारे युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो आईटीआई हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है आईटीआई करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए, अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आईटीआई है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग है, वहां कहां प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहां पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था। अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहां कहां हैं, कहां कहां गैप है, कहां क्या डिमांड है, दे सकते हैं, तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है
0: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
1: उसने जो 10+2+3+2 का जो पूरा का पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको बीए करना है, फिर 2 साल पीजी करना है, फिर एमफिल करना है, ये करना है, उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है। अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता, तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो 2 साल पढ़ा हो वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो कहा होता मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री में पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स में अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले।
0: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
1: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं।
0: बिल्कुल,
1: कि आप जो करना चाहे करो, युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको कि जो जो करना चाहे, जहां करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत
0: तो
1: नहीं।
0: सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है, आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
1: बिल्कुल निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वो अब बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं, 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है। 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है वो, तो वो एक अवसर। और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
0: स्टार्टअप
1: इंडिया द्वारा कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है, इसमें और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं, IIT हैं, IIM, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहां उनके टीचर जो मेंटोर हैं, वहां पे एक इकोसिस्टम बन रहा है, वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी, यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है। लाखों यूथ जो है वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसे अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
0: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के

0: करण का रंजन जी, जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
1: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तो होता है इनपुट कॉस्ट, कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे, तो कुछ फसलों पर थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में, तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी, आज भी वही है,
0: बहुत बड़ा समर्थन है।
1: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला, वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है लगभग, मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती थी। या और किसान अधिकांश जो राज्य हैं उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको कोई अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
0: 6,000 प्रति वर्ष,
1: 6,000 के हैं, तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है, और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना हो तो बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक अगर आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रेवोल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, वो आप देखिए हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि उसमें 10-12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है, और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है,
0: जैसे अभी सर्जना जी बता रही हैं,
1: तो वो भी तो वहीं बन रही हैं, जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है, और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनकी गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट नहीं बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है, जो मतलब जो सीधे से किसान से नहीं जुड़ा है, किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान ले कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं, जो 55-60 करोड़ लोग हैं वो कहां से 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है, और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं, कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करें, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
0: बिल्कुल।
1: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त कर,

0: किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, अगर हम खासतौर से वंचितों की बात करें, जो इन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हुए हैं।
2: वर्ग में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्म सम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, तभी वनवास, जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखिए कि जो उनके हीरो रहे हैं, बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि जितने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको, बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं, तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन पत्तों को हम, नीलू जी या आप, जंगल में जाके नहीं पहचान सकते। उनको पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं, प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग्स खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज़ ज़्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए, हमारे प्रधानमंत्री जी, फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए, उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब,
1: हाँ, उन्होंने सम्मान दिलाया है पूरे,
2: श्री अन्न उसको नाम दिया, जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न, और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ी है उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा, जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए, तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए
1: जी।
2: और जब ये MSP की बात होती है, तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है किसान को, जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो जाके खरीद ले, नहीं खरीद लीजिए जाके जितना रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे चार कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी, पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था, जहाँ पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है, तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं, तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया, जो नए 4 लेबर कोड आए हैं, कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कब वेज ये बिल्कुल काम नहीं करवाओगे
1: जी।
2: तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है।
1: हाँ।
2: फिर दूसरा, अगर महिला आपके यहाँ काम कर रही है तो आप उसको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री आपकी करेगी
1: जी।
2: तो ये भी एक अच्छी बात है। अब सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है कि

0: वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने के, लेकिन ये भी हाँ। 1 रुपए में जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को, तो आप सोचिए महिलाओं को, तो ये भी
1: बहुत बड़ा,
0: हम इसको एक अगर देखें तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं महिलाओं के लिए, अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के समझ के जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में जनधन खाते खोले गए, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया,
1: और एक तरह से जो हमारी ट्रेडिशन है हमारे देश की, वो भी अलाइव,
0: मतलब कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो MSME आप देखिए ना, MSME सेक्टर में कितनी चीजें जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ,
1: और एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में अब हो रही हैं, उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है, और भी जो मॉर्टेलिटी रेट है,
0: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की अगर हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान
1: जी,
0: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है
1: जी, जी।
0: ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है एक BPL जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेश मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, इसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा, और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं,
2: 25 करोड़
0: लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे, और डिजिटल पेमेंट देखिए आप, सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत,
1: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही हैं वो पूरे देश में है,
0: सब्जी वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहा है वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला
1: जी,
0: टिक्की वाला,
1: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशियरीज जो हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC फार्मर्स हैं, और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
2: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ, जहां मैं अभी गया था पिछले दिनों, जगदलपुर गया था, जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग, नक्सली प्रभावित था, नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल जला दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहां के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी, और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे, कि जो कैंप लगे थे, नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था, वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, जैसे इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा, अब वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था, अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग, बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए, और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं, अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है,
1: एक अवेयरनेस क्रिएट
2: हुई, अवेयरनेस नहीं, सोच का अंतर ये है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी, इनको हमारे डेवलपमेंट जो होते हैं, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहें, जहां हैं जैसे जी रहे हैं रहें, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं और उनके जो चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
1: विकास और उनके बच्चे पढ़े भी, अगर वो चाहे शिक्षा वहां पे पहुंची।
2: एकलव्य स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि आदिवासी बच्चे।
1: अच्छा, आप जो सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशंस है उन लोगों की और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे हैं।
2: वो यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी तो केरल कहें कि वहां बहुत साक्षरता है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले जो हो गए छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं। तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों में छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक हैं, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो कि अंत्योदय, जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
1: सर्जना जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
0: देखिए, मुझे जो सबसे अच्छा दो तीन चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास
1: जी,
0: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चलें। ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो, ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़ कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ, अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा। लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ी हूँ, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए, हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगी। और एक और सोचिए, पर्यावरण की दृष्टि में रामासर, जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब वो 100 होने वाली है। 99 तो हो ही चुकी, हो गई शायद 100 हो गई।
1: और ये सब चीजें युवाओं को भी प्रेरित करती है कि हमारा कितना।
0: रामासर लेक जो है, पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना, विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी, नीलू जी, आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो 4 स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
0: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष का प्रसारण अभी किया जा रहा था।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म दिल्ली 6 से।

जावेद अली और कैलाश खेर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे प्रसून जोशी का लिखा यह गीत फिल्म डेली सिक्स से। इस गीत को संगीत दिया था AR रहमान ने। श्रोताओं, डेली सिक्स के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं। और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है, आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत

0: नींव रखी है।
1: We have been able to achieve that in the first
2: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
1: They are all designed in India now.
0: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violations.

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं।

शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के

दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने

0: अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीम शान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये
1: जो गाना बना गा।
0: और दूसरा गाना था

सन 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने।

शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर।

पाकिस्तानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती।

सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए।

1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला। जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

प्रिय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10,00,000 रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55,00,000 रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है, जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम, जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है, जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा, जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में

0: कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख कर के लता दीदी स्वयं वहाँ आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

के बाद उन्हें कुछ और गाने मिले जैसे मियां बीवी राजी बात एक रात की।

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हों या शांति में, सुख में हों या दुख में, परिवार के साथ हों या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हों या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज़ देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी, तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मन मुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।
2: फिर कोई

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: नमस्कार। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक करमहे का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार। इन टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर विवेक करमहे।
0: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदीप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
0: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक

0: ल्हास कशालकर विदुषी गिरिजा देवी श्री ओंकार दादरकर एंड श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर An A-grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
1: Dr. Vivek Karbahe apni gayan ki shuruaat raag shri se kar rahe hain. Vilambit rachna tilwada taal mein nibaddh hai jiski bool hai vari jaun re tum pe. Drut rachna teen taal mein hai jiski bool hai chalo re bhai ram siya darshan. Aapke saath harmonium par sangat kar rahe hain रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा
0: डॉक्टर विवेक करमहे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विद राग श्री द विलंबित कंपोजिशन इज सेट टू तिलवाड़ा ताल विद द लिरिक्स वारी जाऊं रे तुम पे द द्रुत कंपोजिशन इज इन तीन ताल विद द लिरिक्स चलो रे माई राम सिया दर्शन Accompanying him on the harmonium is Ravindra Killedar and on tabla is Nishant Sharma.

0: नागश्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसकी बोल है कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Raag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Raag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektaal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektaal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Man Lalchai. And the Drut composition set to Teen Taal has the lyrics Rang Na Daro Shyamji.

0: डॉक्टर विवेक करमही के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Raag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपये जारी किए। प्रधानमंत्री ने

कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:53 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।